राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
5: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
4: Polling has begun for by-elections to 3 assembly

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
7: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

एक नई सुबह, एक नई ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। 8:23 हो रहे हैं जी स्टेशन क्लॉक में, और फिलहाल आज 30 जुलाई की तारीख हो गई है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को श्रवण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले एक महीने जो है लगातार सावन की मस्ती में सब झूमने वाले हैं। झमाझम बारिश तो हो ही रही है नो डाउट, लेकिन आज का मौसम बहुत औसम हो रहा है भाई। लग रहा है कि आज सूर्य देवता नाराज हो गए, सुबह इतनी तेज गर्मी है बहुत। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सा अपना ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग, और ऑफ कोर्स ये आता है एफएम मुरादाबाद पे। चलिए आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। लेकिन उससे पहले मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आज की सुबह, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। एंड अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कोई अच्छा थॉट, अच्छे

विचार तो आपका मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे। बस आज इतना ही कहना चाहते हैं कि जैसे आपके आसपास लोग होते हैं ना, वैसे ही आपकी एनर्जी और आप बनते चले जाते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, आपका ऑरा पॉजिटिव रहे, तो अपने आसपास का सर्कल थोड़ा सा सही रखिए। जब आपका सर्कल अच्छा होगा ना, तो आपके आसपास सब कुछ बहुत बेहतर होगा। हाँ जी, फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला एक खूबसूरत गीत के साथ। उसके बाद लौट कर आएंगे तो आपसे करेंगे और भी ढेर सारी बात। सावन की शुरुआत हो गई तो एक ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह, इसी गाने के साथ करेंगे अपने सफर की शुरुआत। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ढेर सारे संदेश भी आपके पहुंच रहे हैं। ऑफ कोर्स अच्छे गाने तो मैं आपके लिए प्ले कर ही रहा हूं आज की सुबह। इनको सुन के आपको सच में जो है आनंद आ जाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए निकाल कर लेकर आते हैं हर सुबह। मतलब कुछ अच्छे गाने होते हैं जिनको सुन के सच में आपकी बॉन्डिंग थोड़ी झकास और बिंदास हो जाती है। जैसे कि ये गाना अभी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपके रेडियो सेट पे। फिर अभी आएंगे तो आपके मैसेज को शामिल करेंगे।

देखिए मौसम बहुत ही खूबसूरत है और मौसम आ गया है सावन का, मौसम आ गया है बारिश का, हरियाली का, खूबसूरती का, और मौसम आ गया है खुद को थोड़ा सा और ज्यादा रिचार्ज करने का। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा ये मौसम है। आपको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद को, और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा जो है समय हो रहा है 8:39। ऑफकोर्स यार, समय जितना खूबसूरत होता है ना, उससे खूबसूरत कोई चीज़ होती नहीं है। और ये जो जब आपका समय खूबसूरत होता है ना, तो सारी चीज़ें आपकी खूबसूरत हो जाती है। आज गुरुवार की सुबह में आप सभी का स्वागत करते हैं। 30 जुलाई हो गया है जी, अब ये जुलाई का महीना भी टाटा गुड बाय करने को है। सिर्फ एक दिन बचा है कल का। तमाम सारे श्रोता साथी जुड़े हैं मेरे साथ। हमारे पास मैसेज आ रहा है पल्लवी जी का, ये लिखती है, हेलो आनंद जी, सुप्रभात। सबसे पहले हमारे तमाम सुनने वाले रेडियो साथी को हमारी ओर से सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। थैंक यू सो मच मैम। शिखा हमारे साथ जुड़ गई है मानसरोवर से, इन्होंने भी लिखा है, आनंद हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? आई एम वेरी वेरी गुड जी, एंड आपको भी हर हर महादेव, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है रिंकू जी का, इन्होंने भी सावन की खूब सारी बधाइयां पहुंचाई हैं, लिखा है कि महादेव सभी की इच्छाओं को पूरा करें। क्या बात है। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है आज की सुबह, इन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और जो प्रभु में आस्था रखते हैं, जो खुद पे यकीन रखते हैं, उनके सारे काम सफल होते हैं। वेरी नाइस। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है रोहित खुराना का, इन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग पहुंचाया है और साथ में लिखा है आज के दिन की मंगल मंगल शुभकामनाएं। क्या बात है यार, आज सारे लोग मंगल शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये मेरे साथ अमित वर्मा जुड़ गए हैं हेमगिरी कॉलोनी से, लिखते हैं आनंद भाई दिल से दिल तक वाला गुड मॉर्निंग है आपको। वेरी गुड मॉर्निंग है सर आपको भी। चलिए श्रोताओं बात कर लेते हैं 30 जुलाई के इतिहास के बारे में। तो उत्तर का भीषण ब्लैकआउट आज ही के दिन हुआ, और आपको बता दें पहला फुटबॉल विश्व कप, और एक और खास चीज आज के दिन हुई जो आज के दिन को और भी स्पेशल बना देती है। हाँ जी, आपको बता दें आज के दिन जो है पहला फीफा विश्व कप जीता था 1930 में आज के दिन। और एक और खास चीज, आज के दिन 1966 को इंग्लैंड ने फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पश्चिम जर्मनी को हराकर पहली बार ये खिताब जीता था, श्रोताओं अपने नाम किया था। भारत की पहली विधायक और प्रसिद्ध समाज सुधारिका जी का जन्म, लक्ष्मी रेड्डी जी का जन्म हुआ था आज के दिन सन 1886 को, श्रोताओं। और आपको बताते चलें विश्व मानक तिरस्कारी विरोध दिवस ये आज के दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 30 जुलाई सन 2013 को हुई थी श्रोताओं। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम आपके साथ साझा कर रहे थे। फिलहाल 8:41 का समय हो रहा है, आप सुन रहे हैं आनंद को। एंड इसी बीच कुछ और महान पर्सनालिटी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में जरूर हम आपको बताएंगे। आप भी अपने मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। बहुत ही खूबसूरत सा स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर को आप प्लीज सेव कीजिए और हमें मैसेज कर सकते हैं आप।

चलिए श्रोताओं, इसी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और अभी लौट कर आएंगे तो कुछ और खास और महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इसी स्टेशन पर। आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल ये थर्सडे की सुबह है, आज 30 जुलाई हो गई है। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। सुन रहे हैं प्यारी प्यारी बातें और प्यारे प्यारे गाने। चलिए थोड़ी देर में लौट कर आते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IPM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

0: क्या बात है, खूबसूरत ट्रैक, हर दिल जो प्यार करेगा। 90s का बड़ा ही सुपर हिट गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे आनंद के साथ। 8:56 हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सभी का खूबसूरत सा वेलकम करते हैं और आपके ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। एक बड़ा प्यारा मैसेज हमारे पास आया है दीपक जी का, इन्होंने लिखा है, जिनका प्रेम पत्र से कुछ नहीं होता वो बिल पत्र पर ध्यान दें, आपको आपका मन चाह पार्टनर जरूर मिलेगा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहें। वाह वाह, ये जो आपने लिखा है ना, मुझे समझ में नहीं आया दीपक जी आपने लिखा क्यों है आखिर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खैर आपने अच्छा ही लिखा है। जो भी लिखा है, सुबह सुबह आपने एक फनी बात कर दी है, उसके लिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास ढेर सारे संदेश लगातार पहुंच रहे हैं। ये ललिता कश्यप जी लिखती हैं, सावन की रिमझिम जो है फुहारे शुरू हो गई हैं, भोले के दरबार जो है, ये बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने लिखा है और ये सावन की शुभकामनाएं दे रही है। लिखती है, सावन की हर बूंद यही पैगाम सुनाए, भोले बाबा का आशीर्वाद हर घर में खुशियां बरसाए, हर हर महादेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी लाइन, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखती हैं आनंद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, हमेशा ऐसे ही अच्छे गाने सुनाते रहिए। नवीन नगर से मैसेज कर रहे हैं और आपके तमाम सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। जी बिल्कुल, आज सावन है, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे इसके जवाब जरूर दीजिएगा। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे के रीजन भी डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अगर आपको अपने फोन में कुछ चेंज कराने का मौका मिले, आपके फोन में आपको कुछ तब्दीली कराने का मौका मिले, या कुछ आप चाहते हैं कि मेरे फोन में मेरे मुताबिक ये चीज होनी चाहिए, तो आप अपने फोन में क्या चीज एक्स्ट्रा लगवाना चाहोगे, क्या चीज है जो आप चाहोगे कि मेरे फोन में चीज या तो हट जाए या फिर ये चीज ऐड हो जाए। देखिए टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन जो है हम सभी की लाइफ का हिस्सा बन गया, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, उसके बिना लगता है कि सब कुछ बड़ा अधूरा सा है। सब कुछ तो अब आपके फोन में आ गया है, आपके पास है ना, ये छोटा सा मोबाइल फोन पूरी दुनिया आपको घुमा देगा, पूरा वर्ल्ड आपको घुमा देगा, इसके अंदर क्या चीज नहीं है। बट फिर भी एक अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए अपने फोन में कुछ नई चीज लाने का या फिर कुछ हटाने का, तो वो क्या होगा, आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा व्हाट्सएप करके 9837896896 पे आप मुझे मैसेज करिएगा जरूर। अगर आपको मोबाइल फोन पे कुछ नया मौका मिले ऐड करने का, तो आप क्या कराना चाहोगे अपने फोन में, और कुछ अगर आपको लगता है ये चीज हटनी चाहिए फोन से, तो कौन सी चीजें जो आप चाहते हैं कि वो हटनी चाहिए मोबाइल से, आप जरूर बताइएगा मुझे। और अभी फिलहाल मेरे पास कुछ वॉइस नोट लगातार पहुंच रहे हैं, ये सुनते हैं।
1: कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने गैरों पर हक जताना छोड़ दिया, जो गुजरती है दिल पर वो हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया, जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया, जो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत मेरी, मैंने उनके साथ निभाना छोड़ दिया, जो चाहते हैं रहना बस नाराज मुझसे, मैंने भी उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया, जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, मैंने बेवजह बंद से लगाना छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, पर जाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: क्या बात है सर जी, गजब कर दिया, बहुत ही खूबसूरत लाइनें इन्होंने जो है कह दी और बड़ी गहरी गहरी बातें बोलकर चले गए। सुबह सुबह कुलदीप साहब उधौली बाराबंकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे आज की सुबह। और देखिए ढेर सारे संदेश हमारे पास पहुंच रहे हैं। बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से लिखते हैं, हर हर महादेव आनंद भाई, कैसे हालचाल हैं, सावन की आज जो है पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके FM सुनने वालों को भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद हुसैन अंसारी साहब, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, और इनको हमारा प्रोग्राम सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस हमारे रेगुलर लिसनर जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, पहचान बड़े लोगों से नहीं वक्त पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। क्या बात है, एक मैसेज पहुंचा है, कभी इन्होंने लिखा, कभी भी दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने मन में अपनी शांति को मत खोइए, क्योंकि संतोष में ही सुख है और दूसरों की तुलना में केवल दुख है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं यार हमारे लिसनर, नो डाउट सबके मैसेज एक से बढ़कर एक सुपर हिट होते हैं, माइंड ब्लोइंग एकदम, मतलब चकाचक मैसेज करते हैं आप लोग। अभी मैंने आपसे कहा है ना, आप मुझे मैसेज करके जरा बताओ क्या लगता है, अगर मोबाइल फोन में कुछ आपको लगता है कि ऐड होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, यार मोबाइल में ना मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, या आनंद मेरे हिसाब से ना मोबाइल पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका ना बड़ा ज़्यादा नेगेटिव असर है। अगर ये चीज़ होगी तो इसका पॉजिटिव असर होगा डेफिनेटली। तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके जो भी आपको लगता है यार, आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे। चलो जी 9 बज चुके हैं।
2: अब क्या तोड़ दिया नालायक? सॉरी
3: नलायक बेटा।
4: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

हेलो जी, कैसे हाल चाल है? वंस अगेन वेलकम बैक है। और आज बहुत ही कमाल के धाकड़ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेबैक सिंगर का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। आज 30 जुलाई है, बहुत ही स्पेशल तारीख है। इनकी गाने सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं जी। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाते हैं और बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं यार। मतलब क्या आवाज़ है इनकी, और इनकी आवाज़ में जो गाने हैं ना, बहुत ही फैबुलस है भाई। इनको सुन के ना आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, जब आप इनकी गाने सुनोगे तो आपको खुद ही वो चीज़ फील हो जाएगी। इतने प्यारे सिंगर हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने गाते हैं यार। तो इनके गानों में वो बात तो है कि यार, मतलब एक एक अलग सी कसक है इनके गानों में, एक अलग ही वाइब है इनके गानों में। मैं कौन से सिंगर की बात कर रहा हूँ, कुछ गाने डेफिनेटली उनके मैं यहाँ पर जब प्ले करूँगा तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आज हम कौन से सिंगर की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये

0: जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज इनके गाने और इनकी जो गानों का म्यूजिक है ना, दोनों ही बहुत अल्टीमेट होते हैं यार, सच में आपको बता रहा हूँ मैं, इनकी आवाज में इतना मैजिक है। फिलहाल ये मेरा लास्ट आर है, हाँ जी 9:04 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां हम कहते हैं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं 9837896896 पर व्हाट्सएप के जरिए। एंड ऑफकोर्स इनकी आवाज में कुछ गाने में यहाँ पर आपके लिए प्ले करने वाला हूं, एंड जब आप ये सुनेंगे तो आपको सच में मजा आ जाएगा।
1: हम सफर मेरी
0: कुछ गाने प्ले कर रहा हूं,
1: बदल रही है रूप,
0: दिस इज वेरी पॉपुलर सॉन्ग,
1: संदेश से आते हैं हमें तड़पाते,
0: ये वाला गाना सुनिए जरा,
1: तो पल रुका ख्वाबों का।
0: एक और चलाता हूं,
1: और फिर अभी
0: वेरी पॉपुलर, बताइए जरा मुझे अभी जो आप ये गाने सुन रहे हैं वो कौन से सिंगर की आवाज है, अगर आप पहचान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात।

वेरी वेरी अमेजिंग सिंगर, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत ही प्यारी आवाज़ के जो है मालिक है साहब। इनके बारे में मैं जितनी बातें करूँगा शायद कम पड़ जाएंगी। आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा अभी जो आपने गाने सुने हैं वो कौन से सिंगर की आवाज़ में सुने हैं, वो कौन से सिंगर है जिनकी आज मैं बात कर रहा हूँ, आज उन्हीं के ऊपर पिक्चराइजेशन, कुछ अच्छे गाने यहाँ पर प्ले करूँगा उन्हीं के, शायद आप पकड़ लेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहचान जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है जी। आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे अपने नाम के साथ अपना जवाब। एंड अभी लौट कर आते हैं, फिर बात करेंगे कुछ आज के दिन के बारे में, आज क्या कुछ खास चल रहा है आसपास में, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। और एक बहुत ही कमाल की फिल्म है जो आज 22 ईयर कंप्लीट कर रही है, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही बढ़िया स्टार कास्ट है एंड बहुत ही बढ़िया गाने इस पिक्चर के। आपको एक हिंट भी दूंगा, आप मुझे उस मूवी का नाम गेस करके बताओगे फटाफट से, थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है जी। फिलहाल एक बढ़िया गाना इससे कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत, एक अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए आप ही के रेडियो स्टेशन पर। हाँ जी, बहुत फुल ट्रैक है ये, मतलब ये गाना जब आप सुनोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पुराना गाना है बट बहुत प्यारा गाना है। एंड इसी गाने के साथ करते हैं आज के इस घंटे की शुरुआत। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग यार, बहुत प्यारा एंड पॉपुलर नंबर है ये सच में। चलो आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनते हैं। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को।

0: तुझे।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: हाँ जी कैसे हाल चाल, जुलाई है आज, फ्रेंडशिप डे आने वाला है। ये गाना सभी दोस्तों के लिए, डीजे चेतस की अमेजिंग परफॉर्मेंस, सोनू की चीचू की स्वीटी का ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह की आवाज। थर्सडे की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को। वैसे आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, लौट के आऊंगा तो बताऊंगा ना यार, डोंट गो एनीवेयर।

0: जो लोग अभी सो के उठ रहे हैं भाई, उठ जाओ मेरे प्यारे मोहन, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद के साथ हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेश वाइब आपको दे रहा हूँ आज थर्सडे की सुबह। वक्त हो गया है 9:14। जिन लोगों ने रेडियो अभी ट्यून इन किया है उनका भी वेलकम बैक है जी। अजी हमने कहा हम तो हैं ही आपके दोस्त। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक डीजे चेतस का, ये अमेजिंग गाना भी आपने एंजॉय किया। एंड इसी बात के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ वही गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। यस, ये है फिर मुरादाबाद।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
2: आरजे आनंद इज बैक।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: वेलकम बैक है, कुछ एड ब्रेक के बाद शॉर्ट एड ब्रेक एंड मेरी एंट्री हो गई है। वंस अगेन वापस आप आनंद के साथ जुड़ चुके हैं। गाइस आप लोगों ने बहुत ही अच्छे मैसेज किए हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए आपको थैंक्स करना चाहता हूं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अभी आपको बताते हैं भैया, देखिए आज से जो है सावन की शुरुआत हो गई है। अब कांवड़ियों के लिए जो है ये पूरा महीना बोलबम बोलबम से गूंजने वाला है। ऑफ कोर्स यार, चाहे दिल्ली रोड हो या कांट रोड, हर तरफ तैयारियां पूरी जोरों शोरों से कंप्लीट हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। एंड अभी जरा काम की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताओ अगर आपको अपने फोन में कुछ चेंज कराना हो या कुछ हटवाना हो तो आप क्या करना चाहोगे। बड़े प्यारे मैसेज आए मेरे पास, यहाँ पे शुभम का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है आनंद जी मैं चाहता हूँ कि हमारी बैटरी जो है ना 100 से 200 जाए, क्योंकि 100% बैटरी में ना आजकल गुजारा नहीं होता हम इंडियंस का। तो मुझे लगता है कि हमारे फोन के अंदर ना 200% बैटरी का ऑप्शन आ जाना चाहिए, ताकि मतलब हमें ज्यादा फोन चला सके। वाह, मुझे लग रहा है भाई सबसे ज्यादा काम तो आप ही कर रहे हो मोबाइल पे है, मतलब आपको 100% बैटरी भी कम ही लग रही है, आपको 200 करानी है। देख रहे मतलब शिवम जी की बात चीत है। एक मैसेज आया मेरे पास, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है, माय नेम इज साक्षी, गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है आनंद जी मुझे ना अपने फोन में एक चीज बड़ी इरिटेटिंग लगती है, मैं सच बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो फोन से हट जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड जो आपने हटवाना चाहे ना वो आपने लिखा ही नहीं है, पता है आपको, प्लीज लिख के भी बताना है किस चीज की बात करिए आप। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग आनंद, मुझे लगता है ना हमारे फोन में एक ऑप्शन आना चाहिए कि अगर हम ज्यादा फोन चलाएं तो हमें एक ऐसा नोटिफिकेशन आना चाहिए ताकि हम फोन बंद कर दें। भाई देखो आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं मार्केट में, एंड अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे, तो आप जैसे ही कोई इस तरह की चीजें सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली उसका मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली होगा। ये मैसेज मेरे पास आया था मयंक भाई का, इन्होंने मुझे मैसेज करके एक और चीज बोली कि आनंद भाई मैं आपको सच बताऊं आजकल के फोन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जरूर होनी चाहिए, वो ये है कि हमें अपने फोन के बारे में जो स्पेशल फीचर्स है ना उसकी अपडेट, अरे यार वो तो अपडेट आ जाता है ना, ये कौन सी चीज हुई है, मैं वो पूछ रहा हूं जो आप चाहते हैं कि बेसिकली आपके फोन से हटना चाहिए या आपके फोन में होना चाहिए। जैसे भाई ने बोला कि फोन ना 100% बैटरी में गुजारा नहीं हो रहा, तो उसमें 200% हो जानी चाहिए ताकि हम फोन को अच्छे से यूज कर सकें। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास मैसेज आया है बनारस से, मोहसिन साहब का, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब लग रहा है, सुनकर सुबह सुबह दिल गार्डन गार्डन हो जाता है।

0: मौसम है और हवाएं बहुत ही अच्छी चल रही है, तो इस ख़ास मौसम में मैं FM मुरादाबाद सुन रहा हूं और मॉर्निंग बहुत ही अच्छा हो जाता है सुन के। आनंद भाई गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको।
1: थैंक यू मोहसिन साहब, आप बनारस से जुड़ते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग यू लव। आप सच में बहुत प्यारी प्यारी वॉइस नोट पहुंचाते हैं, दिल से शुक्रिया। बाकी मुरादाबादी आप क्या कर रहे हैं, उठाओ ना अपना फोन, कुछ बढ़िया से पहुंचाओ मुझ तक 9837-896-896 पे। एक बहुत ही कमाल की फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी सन 2004 में, आज ही के दिन 30 जुलाई को 22 ईयर कंप्लीट कर रही है, 22 साल हो गए इस मूवी को रिलीज हुए। लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसमें कुछ हिंट देता हूँ, इसमें समीर रानी और एक और कमाल के हीरो थे, उनका नाम मैं जल्दी से सर्च करके आता हूँ फिर आप समझ जाओगे मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। पूरे के पूरे 22 साल हो गए इस मूवी को आज। थोड़ी देर पहले मैंने एक सिंगर के गाने बजाए थे और मैंने कहा था आप मुझे बताओ जरा कौन से सिंगर की आवाज़ों में ये गाने सुन रहे हैं, आज उनका बर्थडे होता है। सो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, डेफिनेटली अभी पढ़ेंगे कौन है वो कमाल के सिंगर, ये तो आप मुझे बता ही दोगे मैसेज करके, मुझे पूरा यकीन है ना। बट अभी थोड़ी देर में लौट कर आ रहा हूँ, उससे पहले ये गाना सुनते हैं एंड उसके बाद जब वापस मिलेंगे तो बात करेंगे। ठीक है जी, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। हाँ, घड़ी घड़ी में वक्त हो रहा है, पाँच घड़ी मिलाओ अपनी, 9:21 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: 9:26 हो गए हैं, थैंक यू मैडम बताने के लिए। और आज एक बहुत ही कमाल के फैबुलस सिंगर का बर्थडे होता है। कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कौन से सिंगर है।
4: के दिल का है जो हाल क्या कहे।
3: एक और गाना प्ले करता हूँ, बहुत ही धाकड़ गाना है।
4: यस दीवाना दीवाना,
3: कुछ बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। बहुत ही कमाल के सिंगर है। अच्छा ये गाना सुनो अगला वाला,
4: छुआ मध्यम,
3: कुछ याद आया?
4: चांद जलने लगा, संदेश आते हैं हमें तड़पाते।
3: एक और गाना प्ले करो। हाय हाय हाय,
4: इसे छू लो हर पल यहाँ।
3: ओह माय गॉड,
4: जी भर जी।
3: प्लीज टेल अस मुरादाबादी, कौन से सिंगर की आवाज में गाने सुन रहे हो आप? यार बताओ, इतने इजी कर दिया मैंने आपके लिए, इतना इजी कर दिया, आप तो बता दो यार।

के दिन बर्थडे हुआ था इनका, बहुत ही कमाल की आवाज, बहुत ही कमाल के सिंगर। अगर आप इनको पहचान रहे हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाएंगे, अपना फोन टाइप करेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना राइट वाला आंसर। जरा जल्दी से मेरे को मैसेज करो, लौट कर आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा है। हाँ जी, हमारे यूपी के सीएम साहब ने क्या कहा है सभी पेरेंट्स से जो बच्चों को फोन देते हैं, अभी लौट कर आ रहा हूँ। उससे पहले ईपी जिल्लो राइट हियर विद मी, अच्छा गाना, इसके बाद लौट कर आ रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए।

0: एक धाकड़ गाना और इस धाकड़ से गाने के बाद आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ, जहां पर ढेर सारी बातें कर रहे हैं हम आपके साथ और आप कर रहे हैं हमारे साथ। ये जो माहौल है पाजी, बहुत ही गजब का बना दिया यार आपने। आप लोगों की बातें इतनी कमाल की होती है भाई।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: विजिट करो।
1: क्या बात है जी, कुछ एड ब्रेक धाकड़ वाले, उसके बाद वेलकम बैक। चलो यार आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं 1 अगस्त से जो है बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है, 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, यानी कि कहा जा रहा है कि 1 अगस्त को गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। हाँ जी, यानी कि आपकी रसोई का बजट आपको चेक कर लेना है। बाकी अगर आपने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की आपस में जो है उनका मिलन नहीं कराया, अगर आपने एक दूसरे से वो लिंक नहीं कराए हुए हैं तो भाई दिक्कत हो सकती है ना। सो प्लीज यार एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके जरूर चेक आउट करो कि आपका आधार पैन एक दूसरे से लिंक है या नहीं, डन। और अपने बैंक में भी जाके जरा KYC चेक करा लेना, कल लास्ट टाइम कराई थी पता ही नहीं आपको। ITR भरने की तारीख बताई जा रही है 31 जुलाई है लास्ट, यानी कि टुमोरो। अगर अभी तक आपने अपना ITR नहीं भरा है पाजी तो प्लीज यार भर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर बॉस। आगे बढ़ते हुए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ एक और खास चीज। हाँ जी, UPI से पेमेंट करते हो तो ये 5 फीचर्स आज ही ऑन कर लो, बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। अगर अभी तक आपने ऑन नहीं किए तो आप प्लीज इनको ऑन करके रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। वेरी वेरी अमेजिंग, ये फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं डेफिनेटली इनके बारे में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले जरा बता देता हूँ आपको क्या कहा है हमारे उत्तर प्रदेश के CM साहब ने उन पेरेंट्स को जो बच्चों को फोन दे देते हैं। भैया लगता है बच्चे रो रहे हैं, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए फोन ही पकड़ा देते हैं, इससे मम्मी पापा टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी आदतें जो है ना कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है यार, है ना। ऐसे ही जो है CM साहब क्या कह रहे हैं जरा बात कर लेते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का क्या कहना है इस पर। हाँ जी, सो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को खास तौर पर अपने से बहुत छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे उनको स्मार्टफोन दे देते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को जो है इसलिए फ़ोन दे देते हैं ताकि भैया वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएं और वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएं। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। उन्होंने साफ कहा है जो मम्मी पापा अपने छोटे बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं, मैं मानता हूँ कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने वाले हैं। अपने बच्चों को आप फ़ोन दे करके एडिक्शन लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको आदत दे रहे हो फोन चलाने की, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए। खैर मैंने बहुत सारे मैं देखता हूँ जब भी हम ट्रैवल करते हैं, जब भी हम गाड़ियों में होते हैं तो अक्सर छोटे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं ताकि वो ट्रैवलिंग के दौरान उनका सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी फोकस है वो फ़ोन पर बना रहे और मम्मी पापा थोड़ा आराम से बैठे रहें, चिल करें। बट अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को फ़ोन देना कहीं ना कहीं बहुत रिस्क हो सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों को। मैं अभी रिसेंटली कहीं पर गया था तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ भी छोटे बच्चों के पास फ़ोन था। आप बिल्कुल फ़ोन दीजिए बच्चों को, लेकिन एक टाइम का पैरामीटर फिक्स कर दीजिए कि आप कितनी देर के लिए बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, कितनी देर के बाद बच्चों से आप फ़ोन ले रहे हैं। ये डिस्कशंस जो है ना भैया आपको ही करने पड़ेंगे। देखिए आपके बच्चों को आपको किस तरीके से जो है उन्हें कन्विंस करना है, कितनी देर के लिए उन्हें फ़ोन अलाउ करना है, कितनी देर के बाद उनसे फ़ोन लेना है, ये सारे डिसीजंस तो आपके होंगे बॉस, है ना। अब देखिए हमारे CM साहब भी कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। भाई मैं भी मानता हूँ कि प्लीज़ मत करो यार, छोटे बच्चों को फ़ोन मत दो, दिक्कत हो जाएगी। नहीं दो आपको बता दें भैया, यूपी का जो आम है ना, सहारनपुर का आम जाकर के इतना ज़्यादा बिका है, ये 2.11 लाख रुपए प्रति किलो जो है इस आम ने बिक्री करी और इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाँ जी, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बिका है ये वाला आम, और बताया जा रहा है कि ये आम यानी 1 किलो आम 2,11,000 रुपये में जो है लोगों ने खरीदे हैं। यार मतलब इस आम की कुछ तो खासियत होगी ना भाई, कुछ तो पॉपुलैरिटी होगी। गुजरात के सूरत में एक व्यापारी है प्रवीण गुप्ता जी, जिन्होंने जो है इस आम को खरीदा है 2,11,000 रुपए में। भाई ऐसा क्या था सामने, मुझे समझ में नहीं आया, और इतनी महंगे इतनी ज्यादा कॉस्टली वाला आम, कैन यू इमेजिन यार। एक व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, अच्छे विचार मन को शांति देते हैं आनंद जी, और अच्छे कर्म जीवन को शांति देते हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं अभी आपसे जो सवाल पूछ रहा था उस पर आप लोगों ने जवाब दे दिया, उसके लिए थैंक यू। थोड़ी देर में बताता हूँ आज कौन सी फिल्म है जो पूरे के पूरे 22 ईयर कंप्लीट कर रही है, बहुत ही अच्छी मूवी है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत आपसे करूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो, यह है FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। और देखिए आपने जो मैसेज किए हैं ना, मैं जरूर शामिल करूंगा थोड़ी देर के बाद जब आता हूँ। आप पहुंचाते रहिए मैसेज, लौट कर आएंगे उसके बाद सारे संदेश शामिल करेंगे फटाफट से। अभी के लिए आने वाला गाना एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ा के, बहुत ही प्यारा ट्रैक है फ्रॉम द फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से, आतिफ असलम साहब की आवाज।
2: रज के रुला
1: कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। बिल्कुल जी, आप सही स्टेशन सुन रहे हैं और सही प्रोग्राम सुन रहे हैं। यह है बिंदास मॉर्निंग और आज हम जिनका बर्थडे मनाते हैं उनके बारे में बताने का वक्त हो गया है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहते हैं।

0: दोस्तों आज जन्मदिन है उस आवाज का जिसने प्यार दर्द रोमांस और भक्ति का हर एहसास अपनी गायकी से अपने अंदाज से स्पेशल बना दिया है, कुछ खास बना दिया। हाँ जी, आज हम बात करें बहुत ही पॉपुलर सिंगर, बॉलीवुड के बहुत ही नायाक सिंगर, एक ऐसे सिंगर जो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही डैशिंग सिंगर जिसे कह सकते हैं। इनकी वॉइस में एक अलग ही कसक है यार, जब सुनते हैं तो मतलब मन करता है कि सुनते ही रहें। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही शानदार सिंगर, यस मैं बात कर रहा हूँ सोनू निगम साहब की। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, थैंक यू सो मच। और आज बर्थडे होता है 30 जुलाई को सोनू निगम साहब का। हाँ जी, आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 1973 को उनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन 30 जुलाई को। सोनू निगम साहब की आवाज़ में एक ऐसा जादू है कि मतलब जिसे सुनते ही ना एकदम मैजिकल वाली वाइब आ जाती है। जैसे साथिया गाना हो, कल होना हो, सूरज हुआ मध्यम, अभी मुझ में कहीं, और भी तमाम ऐसे गाने हैं जिनको सुन के, उनकी प्लेलिस्ट को सुन के मजा आ जाता है। एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से सोनू निगम जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि भैया वो ऐसे ही ब्यूटीफुल तरीके से जो अपनी आवाज के माध्यम से हम सभी को एंटरटेनमेंट का डोज देते हैं, नए नए गाने इतनी खूबसूरती के साथ गाते हैं, वो ऐसे ही गाते रहें और ऐसे ही माहौल को और भी शानदार बनाते रहें।
1: ये दिल दीवाना।
0: Once again, a very happy birthday, सोनू निगम साहब। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सोनू निगम के साथ। इसके साथ ही साथ सोनू सूद जी का भी बर्थडे होता है। हाँ जी, एक बहुत ही कमाल का नाम, मतलब नाम सुनते ही पॉजिटिविटी आ जाती है ना। मैंने सोनू सूद को तो सामने से देखा, मतलब ही इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट पर्सन यार। ये अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ आए थे ना अपने मुरादाबाद में, तो सोनू सूद तो बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी यार, सभी उनके बारे में जानते हैं। आज उनका भी बर्थडे होता है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। अरे पाजी बजा दो यार प्लीज, ऐसे ना करो। चलिए, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए थे, आप सभी का दिल से थैंक यू मैं डेफिनेटली करूंगा यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ, कुछ खास करने वाला हूँ क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल कुछ खास करने वाला हूँ, इसलिए तो ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए, फिलहाल आपके संदेश को लगातार मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। एंड सोनू निगम साहब का बर्थडे है और उनके बर्थडे की बात चली तो उनका एक बहुत ही अच्छा सा गाना जो दोबारा से रिक्रिएट किया गया है, गाना बहुत अच्छा है, इसी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके साथ। हाँ जी, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह एफएम मुरादाबाद। देखिए हमारे साथ कौन कहाँ से जुड़ी हैं, ये मैसेज पहुँच रहा है। राधे राधे, हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हाल चाल हैं आपके? अलका वर्मा जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। ये लोधीपुर से मेरे पास सही जवाब पहुंच रहा था एंड मेरे पास मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हाल चाल है, माय नेम इज शफाली। ये हमारे पास मैसेज पहुंचा रहे थे, सोनू निगम साहब का बर्थडे है। निपेंद्र जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट साहब,

0: ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर, क्या नाम इनका है, नुकुश जी, इन्होंने अपना नाम लिखा है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है नुकुश? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे पास मैसेज आया था रिजवान खान साहब का, इन्होंने भी सही जवाब, एकदम राइट आंसर पहुंचाया, राइट जवाब पहुंचाया। और विकी सागर जुड़े हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास प्रीतम का मैसेज पहुंच रहा है, तन्विका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। ऐसे तमाम सारे संदेश लगातार मुझ तक मिल रहे हैं, मैं जरूर उनको शामिल करूंगा। जरा सी देर में 9:45 हो रहे हैं, कुछ एड ब्रेक का टाइम है, उसके बाद जल्दी से लौट कर आता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला,
7: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: हाय हाय हाय, कितना बढ़िया गाना था, मजा आ गया सुनने। डॉक्टर नौशिंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह। ये लिखते हैं पंकज उदास, आई डोंट नो इन्होंने कौन सा जवाब दिया है भाई, क्या ही हो रहा है। सर मुझे लगता है आपने गलत जवाब दे दिया है, नंबर की फोर डिजिट है आपकी 0463, अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका आंसर। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है? अमित जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे। एंड आपने जो वॉइस नोट दिया है सुनते हैं जरा।
1: हनुमान गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
1: सिंगर का नाम है सोनू निगम साहब, जो कि बड़े कमाल के गायक हैं।
0: बिल्कुल जी,
1: वो बड़े कमाल कमाल के इन्होंने हमें गाने दिए हैं,
0: ऑफकोर्स
1: सुनते सुनते आज हम बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल सही बात
1: है, सोनू निगम साहब एक बहुत कमाल के गायक हैं।
0: क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमित जी, अपना वॉइस नोट पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। एंड एक बहुत ही प्यारी फिल्म रिलीज हुई थी आज के दिन सन 2004 में, आज 30 जुलाई को, एंड बहुत ही अच्छी फिल्म थी। मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत बढ़िया हैं, एंड मूवी बहुत अच्छी है। एंड मैं सिर्फ आपको जो है उनके एक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, उनके किरदारों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे मूवी का नाम बताइएगा, ठीक है? तो आज का कड़क क्वेश्चन यही है, आप मुझे इस फिल्म का नाम बताइएगा। तो सबसे पहला इसमें नाम था सनी, दूसरा था इसमें रानी लड़की का नाम, और तीसरे जो हीरो थे उनका नाम था समीर, ठीक है? सो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत ही बढ़िया, इसमें दुग्गल साहब भी थे, अब इससे बड़ा क्लू मैं क्या दूँ, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। अगर आपको पता है कौन सी फिल्म की बात हो रही है, आज के दिन रिलीज हुई थी सन 2004 में ये फिल्म आई थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आज पूरे 22 साल हो गए इस मूवी को रिलीज हुए हुए, बहुत अच्छी फिल्म है, इसके गाने बहुत ही बढ़िया हैं, एक गाना तो बहुत ही पॉपुलर है इस फिल्म का। अगर आपको पता है मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ, जी हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिक्चर आपको गेस करनी है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, ठीक है? हीरोइन का नाम था रानी, हीरो का नाम था सनी, दूसरे हीरो का नाम था समीर, ये दोनों आपस में बचपन के फ्रेंड होते हैं, लेकिन ये दोनों बाहर एक हॉस्टल में मिलते हैं, और जो एक हीरो हैं उनको रानी से प्यार हो जाता है, लेकिन जो सनी है उनको भी रानी से प्यार हो जाता है। मूवी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी है। अगर आप समझ गए कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो 9837896896 पे। इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ आज की सुबह। समझ गया, समझदार कुछ आ रही काफी, जल्दी से बता दो, वेरी वेरी इजी सवाल एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप करूं जरा, बहुत ही कमाल की फिल्म थी रानी समीर एंड सनी, कौन से फिल्म में थे ये? I'll be right back, सुनो इस गाने को, कहीं ट्रैफिक में हो तो बता सकते हो मुझे 9837896896 पर। Check me out.

हाँ आपको वक्त तो बता दूं यार फटाफट से। हाँ जी वक्त हो गया है 9:54। फटाफट से आप मुझे जरा मैसेज करिएगा, है ना, इंतजार है मुझे आपके मैसेजेस का। इमीडिएटली व्हाट्सएप करके बता दो यार।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आपको बताया ना, आज से श्रावण माह की शुरुआत हो गई है। अब ऐसे में जो है कांवड़ भाइयों के लिए, जो कांवड़ती हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए ट्रैफिक की कहीं पे उनको कोई भसर ना मिले, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है पूरे मुरादाबाद को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हर जगह पर चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। एंड इसी बीच SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने क्या संदेश दिया है मुरादाबाद के सभी लोगों को, जरा ध्यान से सुनिए।
2: सुभाष गंगवार, SP ट्रैफिक मुरादाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूँ। सावन माह 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है, 11 अगस्त को शिवरात्रि है। पहले शिफ्ट में हम लोग 28 जुलाई से डाइवर्जन प्लान हम लोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर और हरिद्वार जाने वाला भारी वाहन को हम लोग मुरादाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ वाया संभल रवाना करेंगे और उसी रूट से हमारा आवागमन होगा, जिसमें प्रत्येक फ्राइडे को हम लोग रोडवेज की बसों का भी डाइवर्जन करेंगे और संडे को, प्रत्येक संडे को शाम को 6 बजे से गढ़ जाने वाला ट्रैफिक को जीरो करेंगे, ताकि कांवड़ यात्रा सकुशल हम लोग सम्पन्न करा सकें।
1: तो अभी आपने सुना, SP ट्रैफिक सुभाष गंगवार जी ने आपको बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है। प्लीज़ इन रूल्स को जो है आपने फॉलो करना है और बाकी तो सब बढ़िया ही होगा यार, क्योंकि आप मुझे बताएं बहुत इंटेलिजेंट हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं मुरादाबादी।
3: KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: मित्रों, क्या हाल चाल है? 10:02 हो गए हैं, आनंद के साथ सुन रहे हैं आपका मॉर्निंग मैगजीन शो। बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आपसे पूछा है आज की मॉर्निंग, अगर आपने उसका जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पकड़ा दो उसका आंसर, मेरे को मैसेज करके बता सकते हो यार। बड़ा सिंपल सवाल मैंने पूछा है। 2004 में आज के दिन एक बहुत ही अच्छी फिल्म रिलीज हुई थी, एक मूवी आई थी, बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी उसमें, और उन हीरो हीरोइंस के नाम तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उनकी कैरेक्टर के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला जो हीरो था उनका नाम था सैनी, दूसरे हीरो का नाम था समीर, तीसरी जो उनमें हीरोइन थी पाजी, जिन दो हीरो को जिस हीरोइन से प्यार होता है उनका नाम रानी था। मजे की बात है कि दोनों उसी से शादी करना चाहते थे यार। एक हीरो तो भाई ऐसा था कि उनके पापा की गर्दन ही तोड़ देता था बोल मार मार के। जो समीर नाम का लड़का था ना, ये सामने फ्लैट में रहता था बिल्कुल। रानी के फादर को इतना परेशान किया इस बंदे ने, समीर ने, बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट में शादी सनी से नहीं समीर से हो जाती है इस रानी की। सारे क्लू दे दिए मैंने आज की मॉर्निंग, बताओ कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। आज पूरे 22 साल हो गए इस मूवी को। आने वाला गाना

0: चलिए भैया अभी बात कर लेते हैं अपने लकी कॉलर से। आज की सुबह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। आज के दिन सन 2004 में मूवी रिलीज हुई थी, 22 साल पूरे कंप्लीट कर रही है। आज 30 जुलाई को पूरे के पूरे 22 साल हो गए इस मूवी को। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। यही बताने के लिए कॉलर को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर।
1: नमस्ते सर
0: जी, गुड मॉर्निंग। अपना शुभ नाम बताएं सर।
1: सर मेरा नाम पुष्पेंद्र है
0: जी। पुष्पेंद्र जी कहाँ रहते हैं, मुरादाबाद में, क्या करते हैं आप?
1: बेसिकली सर मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा जी
1: जी। और अप डाउन डेली होता है सर मुरादाबाद।
0: अच्छा अच्छा, मुरादाबाद में। जी क्या करते हैं, मतलब कहाँ पर वर्किंग है आप?
1: सर मैं जिला महिला अस्पताल में हूँ मुरादाबाद।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। बहुत
1: अच्छा, जब कभी भी आना जाना होता है जी, तो एफएम चालू हो जाता है।
0: वेरी नाइस सर, मजा आता है आपको एफएम सुनने में?
1: बिल्कुल सर बिल्कुल। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है मुरादाबाद की और मनोरंजन भी हो जाता है।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब रेडियो का एक अच्छे से सफर जो है वो पूरा तय हो जाता है रेडियो के साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जो मैंने तीन नाम बताए थे वो कौन सी फिल्म की बात कर रहा था मैं?
1: सर जहाँ तक मुझे उम्मीद है सर उसका नाम था मुझसे शादी करोगी।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, मतलब आपको उम्मीद क्यों है, आपको पूरा यकीन क्यों नहीं है कि वो यही फिल्म है?
1: नहीं सर यही है।
0: चलिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाइयां। आपने कैसे दिमाग लगाया कि ये वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दे दिया है सर।
1: नहीं सर मैंने देखी एक दो बार फिल्म को।
0: अच्छा तो आपको वो नाम, आपको वो नाम जो है उनके कैरेक्टर जहन में बस गए?
1: समीर का नाम याद नहीं, लेकिन सनी का नाम याद आ गया था।
0: सनी, सनी कौन थे जरा ये बताइए आप?
1: कौन सर?
0: सनी, सनी कौन बने थे, अक्षय कुमार या सलमान खान?
1: अक्षय कुमार।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा। पुष्पेंद्र जी, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आज की सुबह आप?
1: बस सर मैं यही कहना चाहूंगा, सावन लग गया है और इसका एंजॉय अच्छे से करें
0: जी,
1: भाईचारे के साथ करें
0: जी।
1: जी सबसे बड़ा तो यही संदेश होगा।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया। और बाकी मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में देखिए तकलीफें मुश्किलें आती जाती रहती हैं, बस इंसान को जो है मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए,
1: मुस्कुराते रहना चाहिए सर,
0: है ना। बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं लाइफ में, क्यों
1: जी सर।
0: चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप अपने काम पर पहुंचिए, ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत बधाइयां सर। जी थैंक यू, नमस्कार सर। ये पुष्पेंद्र जी जुड़े थे, महिला हॉस्पिटल में वर्किंग है, विमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल में। मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, जो लकी विनर मेरे को मिलना था वो मिल गया है, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत से लोगों ने ना यार रॉन्ग आंसर भी कर दिया था, लेकिन जोरदार तालियां जिन लोगों ने सही जवाब दिया है। 10:10 हो गए स्टेशन की घड़ी में, मैं आपको डेफिनेटली मिलूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। कल सुबह फिर से होगी मेरी आपकी बातचीत इसी चैनल पर, तो आप कहीं मत जाइएगा, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइएगा। एक अच्छा गाना छोड़ के जाऊंगा।
2: लाके जो कोई,
0: थैंक गॉड यार आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो, एकदम पकड़ लेते हो सारे जवाब। जरा सुनते हैं इन्होंने क्या पहुंचाया था।
2: किसे दुनिया चाहिए।
0: अलका वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह हमारे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, एक प्यारा सा वॉइस नोट शेयर कर रही हैं आज की मॉर्निंग।
3: राधे राधे राधे राधे जी, जो सॉन्ग सभी बज रहे हैं
0: जी,
3: ये सोनू निगम जी ने गाया है।
0: अरे वाह क्या बात है,
3: धन्यवाद,
0: थैंक यू जी।
3: राधे राधे
0: राधे राधे जी,
3: आपको एफएम सभी सुनने वाले श्रोताओं को
0: जी
3: पवित्र सावन मास की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: थैंक यू।
3: महादेव की कृपा से सावन का यह पावन महीना आपके जीवन जी में ढेर सारी खुशियों की बारिश लेके आए।
0: थैंक यू
3: बाबा, आप हमेशा आप सभी पर कृपा करी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे।
0: बिल्कुल, हर हर महादेव,
3: हर हर महादेव।
0: क्या बात है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
4: अरे भाई मूवी का नाम है मुझसे शादी करोगे,
0: कोई नहीं करेगा,
4: इसमें मैन एक्टर है सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा।
0: अच्छा मुझसे शादी करोगे, भाई कोई नहीं करेगा। थैंक यू सो मच अमित यार जुड़ने के लिए, थैंक यू अमित भाई। अमित वर्मा जी ने सही जवाब दिया। ये हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं, रिजवान खान साहब ग्राम बीजना से मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी। ये मित्रपाल साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की मॉर्निंग। दीपेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन अंसारी साहब जुड़े हैं। मयंक शर्मा पीतल बस्ती से जुड़े हैं। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं विक्की सागर भाई। मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणवीर जेठालाल, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, श्रवण मास की ढेरों शुभकामनाएं। बबली गीता अंजाम साथ में ये गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी संतोष भाभी जी जुड़ चुकी हैं प्रोग्राम में। मेहराजुद्दीन कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे। ये नौशेंद्र सिंह, डॉक्टर नौशेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद चैनल पे। हेलो हाय सर गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? बबलू से, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से सही जवाब पहुंचा रहे हैं। मुझसे शादी करोगी, दिस इज राइट आंसर। ये मुझे कौन मैसेज कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग जी, लक्ष्मी देवी सूर्य नगर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। ये हमारे पास राहुल सक्सेना जी का मैसेज आया था, वैसे हमने राहुल को भी कनेक्ट किया था लेकिन राहुल जी ड्राइव कर रहे हैं, एंड कोई बात नहीं राहुल जी, कंग्रेचुलेशन, आपने भी एकदम सही जवाब दिया है, थैंक यू वेरी मच। राहुल थोड़ा सा बिजी थे अभी, कोई बात नहीं राहुल जी, आप ड्राइव कीजिए, ऑल द वे बेस्ट। प्रियंका जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है? नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। मनोज कुमार जी का मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है आज की सुबह, नॉनेश कुमार सही जवाब पहुंचा रहे हैं, लोधीपुर से उमेश कुमार साहब जुड़ गए हैं, डीके अरोड़ा चंदन नगर से मेरे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हैं, जब तक गौरव टेलर नवीन नगर से मेरे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जय श्री राम आनंद भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम और जानकारियां दोनों बहुत अच्छी लगती है, आज सावन मास की शुरुआत हो गई है, सभी लिसनर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, हर हर महादेव। ललिता कश्यप नवीन नगर से राइट आंसर पहुंचा रही थी, थैंक यू वेरी मच। राशिद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान कराची से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मुझसे शादी करूंगी सही जवाब पहुंचा था, टेक्स्ट मैसेज मेरे पास अमरोहा से नेहा का पहुंच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग, रूबी कुंदरकी से जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। हमारे पास एक और संदेश पहुंच रहा है बबलू जी का, एंड साथ में पिंकू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए अब मैं निकलता हूँ, आपको मिलेंगे कल सुबह इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और आज के दिन की आपको देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो इसी बात के साथ लेता हूँ इजाजत, कल मिलेंगे जुलाई के लास्ट तारीख में, कल 31st याद है ना आपको। चलिए अभी के लिए मैं अपनी बातों को देता हूँ विराम, बाय बाय, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: KCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: कोई मिल मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद
2: रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। सावन माह की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने दोस्त आरजे खुशी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज से शुरू हो गया है पवित्र श्रावण मास। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास के महीना सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि डिवोशन और पॉजिटिविटी का ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन है। माना जाता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान श्रद्धालु जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, व्रत, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, आंख भांग और गंगा जल अर्पित किया करना बहुत शुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस पावन महीने की शुरुआत एक खूबसूरत संकल्प के साथ करें। कम गुस्सा करें, ज्यादा मुस्कुराएं, कम शिकायतें करें, ज्यादा धन्यवाद करें और दिन की शुरुआत महादेव जी के नाम के साथ, स्मरण के साथ कीजिए। और हम तो महादेव जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में और आपके परिवार पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। हैप्पी श्रावण मास मंथ टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। दोस्तों, करेंगे बहुत सारी बातें आज और बहुत सारी अपडेट भी हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक आज की मॉर्निंग तो होना चाहिए। और बाहर का वेदर भी अच्छा है। जब मैं आ रही थी तो बादल हो रहे थे और सावन स्टार्ट हो गया है। बादल ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, चलिए आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाइएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896 और ये ब्यूटीफुल ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ अरिजीत सिंह साथ में जुनिता गांधी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6. और आज 30 जुलाई की तारीख है. बहुत ही खूबसूरत सा दिन है थर्सडे का. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा दिन और सावन मास की शुरुआत हो गई है. समय हुआ है 10:31 और आपके खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आ गए हैं. ओ हो हो, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए एवरीवन. मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी. और जो आपके मैसेज आए हैं उनको भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ. मुझे पता है आप भी सब्री से इंतजार करते हैं, तभी तो हम जल्दी. देखिए, मैं तो जल्दी आ जाती हूँ, लेकिन आनंद सर जो है वो भी चेयर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं. मैं क्या कर सकती हूँ, उनको इतनी मोहब्बत है ना आपसे कि वो जाने का नाम नहीं लेते हैं. मैंने बोला ठीक है, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लो, पर दोनों मिलकर धमाल मचाते हैं. लेकिन और भी चीज़ें वो की तैयारी करनी होती है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो पूरे दिन तैयारी करते हैं, एंड बाहर की भी एक्टिविटीज़ हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं. अभी फ़िलहाल हम मैनेज करते हैं क्या अपने श्रोताओं के मैसेज जो यहाँ पर आ रहे हैं. और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी का. कहते हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत ही अच्छी हूँ. आपने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है, उसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सहारनपुर से सैयद मंसूर जी का, साथ में शाइना हसन जी हैं. और ये कहते हैं कि आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब. खुशी जी आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिएगा. श्योर सर. उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, और ये मैसेज पहुँचाते हैं सिरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी. और इन्होंने और ये गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है फ्रॉम द मूवी भूल भुलैया से, मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार के धुन. गाना तो कमाल का है, सुनते हैं. उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है. ये मैसेज हमें मिला है राशिद हुसैन अंसारी जी का, साथ में नसरीन अंसारी जी हैं, नौरीन अंसारी जी हैं. और ये अपना मैसेज हमें कहाँ से पहुँचा रहे हैं, कुरावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं. कहते हैं आपको हमारा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. उसके अलावा अगला मैसेज हमें यहाँ पर मिला है प्रिय आरजे जी, आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब. ये मैसेज अपना हमें पहुंचाते हैं जनाब धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी जी, नौशाद सलमानी, साथ में बीबी आलिया हैं. और ये भी कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में मैम शामिल कर लीजिएगा. बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप इतने प्यारे प्यारे से संदेश हमें एवरी मॉर्निंग पहुँचाते हैं. और दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक जो मेरे जहन में बात चल रही है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ. कहते हैं ना कि दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, जो दिल में होता है वो बताना चाहिए, है? तो हमारे जहन में भी एक बात चल रही है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम आपसे भी मालूम कर लेते हैं. एंड हमारा जो आज माइंड में बात चल रही है, जो जहन में बात चल रही है, वो ये है. दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो सोचा हो, हाँ कभी आपने ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपने सोचा हो और वो पूरा हो गया हो? बताइए. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बात के बारे में सिर्फ सोचा हो और कुछ ही देर में वो है बात पूरी, मतलब सच हो गई हो? बताइएगा कैसा लगा जब वो अचानक से आपके विश, आपने सोचा कि यार ये तो मैं सोच ही रही थी और ये पूरा भी हो गया है. या फिर कभी ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त के बारे में, किसी फ्रेंड्स के बारे में, किसी गेस्ट के बारे में, मेहमान के बारे में आप सोच रहे हो और अचानक से वो आपके घर आ जाए, तो या फिर कॉल आ जाता है ना रैंडमली कि अरे अभी तो हम आपको याद कर रहे थे, आपका कॉल आ गया. तो बताइएगा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने जो सोचा हो और वो पूरा हो गया हो? अपने मैसेज हमें पहुंचाएगा, बीच सब्री से इंतजार है, कंजूसी मत करना, सुबह सुबह देख लो. उसके अलावा एक और मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, बड़ा खूबसूरत सा, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जमुना साहू जी, और साथ में प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या भी हमारे साथ में जुड़ी है.
उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज तो हमारे पास यहाँ पर आया है, ये पूजा जी का मैसेज आया है नैनीताल से, और ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी, आपको भी सावन की पावन महीने की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, और आज सोनू निगम जी का भी बर्थडे है, सुरीली सी आवाज है उनकी, और उन्हीं का एक प्यारा सा गाना सुनते हैं। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं सोनू निगम जी की आवाज़ में, उनकी मतलब आपकी पसंद का गाना हो, आवाज़ उनकी हो, बताइएगा कौन सा ऐसा गाना है सोनू निगम जी का जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जब भी उस गाने को सुनते हैं तो आपका जो दिन है वो खुशनुमा बन जाता है, जल्दी से बताइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी एक प्यारा सा गाना सुनो, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप तक पहुंचानी है, उसके लिए तो इंतजार करना होगा ना आपको।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

ये दोस्तों जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है। और आज की सुबह मैंने आपसे मालूम किया है कि दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने जो सोचा हो और वो कंप्लीट हो गया हो, लाइक जैसे अचानक से आप किसी को याद कर रहे हो तो उनका कॉल आ गया हो, या फिर लाइक ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कोई गेस्ट है, कोई फ्रेंड्स है और अचानक से वो हमारे घर आ जाए तो लगता है कि अरे अभी तो हम इनके बारे में सोच रहे थे और ये हमारे घर भी आ गए हैं। तो दोस्तों बताइएगा अगर आपने कभी कुछ ऐसा सोचा हो और वो पूरा हुआ हो तो कैसा फील हुआ है आपको उस वक्त, जल्दी से बताइए क्या सोचा है और क्या पूरा हुआ है आपका। हाँ बताओ बताओ बताओ, इतना मत शर्माओ। ओहो हो, आप बता सकते हो दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है और अचानक से कोई दोस्त बोल दे कि उसका कॉल आ जाए कि चल पानीपुरी खाने चलते हैं, फिर हम सोचते हैं ओहो अभी तो मैंने सोचा ही था पानीपुरी के बारे में और लो दोस्त का कॉल भी आ गया। तो होता है ना ऐसा। आप बताओ आपने जो कभी ऐसा कुछ सोचा हो और वो पूरा कंप्लीट हो गया हो, इतना मत मतलब लाइक इतना मत सोचो यार, बताइए। बहुत सिंपल सा है और लाइफ में किसी ना किसी के साथ ऐसा होता है, कॉमन सी बात है। तो जल्दी से बताओ क्यों इतना सोच रहे हो आप। हाँ हर किसी के साथ ऐसा होता है। और हमारे पास यहाँ पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप इतना प्यार हमें करते हैं, इतने सारे संदेश एवरी मॉर्निंग पहुँचाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे मैसेज पहुँचा देते हैं, हमारा तो दिन ही बन जाता है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, ये हमें संदेश पहुँचाते हैं गौरव टेलर जी नवी नगर मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और कहते हैं कि आपका कार्यक्रम मैम बहुत ही बिंदास होता है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगता है, आपका दिल से धन्यवाद। उसके अलावा कहते हैं कि कार्यक्रम में आप जो भी अपडेट्स देते हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि खुशी मैम हमें ना एक गाना सुनवा दीजिएगा, एक गाना सुनना है आपको। ओके, और ये गाना सुनना चाहते हैं, हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, बहुत ही प्यारा सा गाना है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का लोधीपुर मुरादाबाद से, और ये कहते हैं मैम जी हमें आपकी आवाज़ ना बहुत अच्छी लगती है। ओहो रियली थैंक यू। कहते हैं कि आपका प्रोग्राम हम रेगुलर सुनते हैं और रेगुलर हम आपको मैसेज भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आपको सुनना, थैंक यू सो मच। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं जोन रोजी पलवली जी। कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आरजे जी, वेरी गुड मॉर्निंग, हार्दिक अभिनंदन जनकपुरी सहारनपुर से ये अपना मैसेज पहुंचाते हैं। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़ में प्यारा से गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल सर ये ट्रैक हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं उस्मान, साथ में उस्मान खान जी हैं, रिजवान खान जी हैं, दीपक जी हैं, और ये मैसेज पहुँचाते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप, आज सोनू निगम साहब जी का बर्थडे है, उन्हीं का एक ट्रैक मुझे सुनवा दीजिएगा। ओके सर सुनवाएंगे प्यारा सा गाना। और कि ये गाना सुनना चाहते हैं, अब रात दिन बस तुम्हारा ख्याल रहता है, बहुत ही प्यारा सा गाना है। तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद आते हैं लौटकर और ढेर सारे अपडेट के साथ। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और मैसेज पहुंचाने में ना बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, ठीक है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे लिए गर्मा गर्म एक कप चाय बनाइए, बस मैसेज पहुँचाने के लिए बोल रहे हैं, तो पहुँचा दीजिएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा।

0: भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: हाँ, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

वेलकम बैक एवरीवन टू योर फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला. आई एम योर होस्ट आरजे खुशी. और एवरीवन, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना. कहते हैं ना, हर किसी के दिल में किसी ना किसी का ख्याल खास होता ही है. एंड कोई ऐसा मतलब कुछ प्यारी सी यादें होती हैं जो खास कोने में ज़रूर होती हैं. कोई मुस्कुराहट बनकर आता है तो कोई सिर्फ ख्यालों में ही दिल को धड़काता है. हाँ, और ये प्यारे से ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से. और दोस्तों, समय हुआ है अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं. और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल करते हैं. लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है. एंड आज क्या कुछ खास सेलिब्रेट किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ. दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती दिल से बनती है. एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश हो और मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमारे साथ खड़ा हो. एक बड़ी प्यारी सी शायरी है कि दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है, दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है. हर दर्द में जो साथ हो वही अपना एहसास होता है. ना दौलत चाहिए ना कोई पहचान, ना दौलत चाहिए ना कोई पहचान, बस हर किसी की जिंदगी में एक सच्चा दोस्त मेहरबान होता है. हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे एवरीवन. और हमारे पास यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं. और ये मैसेज हमें मिला है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का. कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ. थैंक यू, आपने हमारा वेलकम किया. हम आपका करते हैं, आप हमारा स्वागत कर रही हैं. धन्यवाद मैम. कहती हैं, आज सावन मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. और कहते हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत मखमली आवाज़ का बर्थडे है. नाम है सोनू निगम जी. एग्जैक्टली मैम, और हमारी तरफ से सोनू निगम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड उसके अलावा ये कहती हैं कि सावन की हर बूंद में भोले बाबा का प्यार है. सावन की हर बूंद में भोले बाबा का प्यार है. उनकी कृपा से ही हर चेहरे पर मुस्कान और बहार है. महादेव जी का नाम लेते रहो हर सुबह शाम, खुशियों से भर जाएगा जीवन. यही है भोलेनाथ का वरदान. हर हर महादेव. अरे वाह, बड़ी प्यारी सी लाइनें आपने लिखी हैं. और कहती हैं मैम, ये मिलना और सोचने वाला जो आपने अभी पूछा है ना, ऐसा मेरे साथ कंप्लीट हुआ है कई बारी. जो मैंने सोचा है वो पूरा हुआ है. ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है. उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज यहाँ पर आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं नईमूल अकरम जी सिरसवा दोराहा से. साथ में इनके इरफान भी हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई. ओहो, लगता है कि आज आप सर सभी को डांस करवाने वाले हैं. हाँ, ये गाना सुनते ही ना हमारे लिसनर जो हैं वो काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके पाँव रुक नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि गाना इतना प्यारा है, शादियों में भी चलता है और सभी इस पर परफॉर्म करते हैं. उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है राशिद नाथ जी का, कराची पाकिस्तान से. गुड मॉर्निंग ये विश करते हैं, और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है. श्योर सर, हम पूरा इसको प्ले करने का प्रयास करेंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा. और हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे वॉइस नोट भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम आकर प्ले करेंगे. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मुरादाबाद से. नईम अली जी हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर. नेक्स्ट मैसेज आया है जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंद पुर से, ये हमें मैसेज पहुंचाते हैं रज़ा हुसैन जी. साथ में शाहिद हुसैन जी हैं, आलिद हुसैन जी हैं, और ये कहते हैं कि मैम कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिएगा. जी सर. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, साथ में लक्ष्मी कश्यप जी हैं, संतोष कश्यप जी हैं, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग आपको भी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग.
और ये गाना सुनना चाहती हैं साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। तो चलिए दोस्तों और मैसेज मैं आकर शामिल करूंगी, बस आप बने रहिएगा, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और आप सोच रहे हैं कि हमारा गाना क्यों नहीं प्ले हो रहा है, देखिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है यार लाइफ में। और एक बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों, ये जब गाना आप सुनोगे ना तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो गाना है ना, मैं क्या ही बोलूँ इस गाने के बारे में, आप सुन ही लीजिएगा, ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करूँगी क्योंकि आप सुनेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली तारीफ करने लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक है और मूवी का नाम है क्या सुपर कूल है हम, बहुत ही प्यारा से ये ट्रैक है। और इस गाने को गाया है सोनू निगम जी ने, तो चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत और भी अपडेट्स आपको देनी है आज क्या कुछ और स्पेशल है।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना और हम भी आ चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। आपकी दोस्त खुशी हाजिर है।
1: हम

और दोस्तों भारत के लिए गर्व की खबर है। महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले पैरा एथलीट दिलीप कावित ने अपने शानदार प्रदर्शन से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया।

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं अमित वर्मा जी का। गुड मॉर्निंग खुशी जी, खुशी जी को खुशी भरा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर इतना प्यारा गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? खुशी तो हमेशा खुश रहती हैं सर, ये कहते हैं कि सोनू निगम जी का एक ट्रैक हमें सुनवा दीजिएगा मैम, साथिया मूवी का। सो ये गाना तो मैं प्ले कर चुकी हूँ और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं राहुल सक्सेना मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच राहुल जी अपना मैसेज पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हर हर महादेव। खुशी जी कैसे हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर हम। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, कहते हैं सावन पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और कहते हैं कि रिश्तों की कीमत शब्दों से नहीं निभाने से होती है, वरना अपना कहने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं आपने सर।

बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं आपका शो सुनता हूँ और आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। कश्मीर से वैसे हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स हमारे जुड़ते हैं। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, छुप छुप देखती हूँ तस्वीर तेरी। ओके सर, ये गाना भी हम सुनवाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं रनिन एंगल से रिहाना जी का, और ये कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हाल है आपके? सब बहुत अच्छे हैं, हम आपका शो सुन रहे हैं और आपका इंतज़ार हमें सुबह सुबह रहता है आपके प्रोग्राम का। और आज हमारी गाने की रिक्वेस्ट है मैम। ओके, ये गाना सुनना चाहते हैं, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम आधा। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से, एंड ये हमारे रेगुलर लिस्नर हैं और ये हमें एवरीडे सुनते हैं और अपना मैसेज रेगुलर पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सावन का पावन महीना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैसेज हमें पहुंचाती है लक्ष्मी देवी जी सूर्यनगर मुरादाबाद से, मोहब्बत बरसा दी ना तू, सावन आया है। सावन आ चुका है मैम, सबको भी सब्री से इंतजार था ना, और आज सुबह बहुत सारे श्रोता मंदिर गए नहा धो के स्नान करके और शिव जी को भी जल अर्पित किया। महादेव जी आपकी सारी विश पूरी करें और आप हमेशा ऐसे ही अपनों के साथ खुश रहें। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद बातचीत करेंगे आपसे और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक डिलीवर करनी है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक शानदार सा गाना, नेहा कक्कड़ और साथ में रोहन प्रीत जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज है, सावन आ गया तेरे आने की खुशी में, ये सावन आ गया बहुत ही प्यारा गाना है और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, आप सभी भी इस गाने को एंजॉय कीजिएगा। बस मैं आती हूँ वापस अभी।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

डाउट एवरीवन, दीवाने तो हम भी हैं आपके प्यार भरे मैसेज में। इतने खूबसूरत आप मैसेज करते हैं ना कि हमारा दिल जो है ना वो भी दीवाना हो जाता है। और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना सोनू निगम जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ में। इस गाने की रिक्वेस्ट में भेजी थी ललिता कश्यप जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से। और एवरीवन, ये है आपके अपने शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कुछ बॉलीवुड अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार पूरे देश को बेसब्री से है। दोस्तों, निर्देशन नीतीश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर की शुरुआत रावण के दमदार अंदाज से होती है। इसके बाद भगवान श्री राम के रूप में रणवीर कपूर और साथ में माता सीता के किरदार में साई पल्लवी की शांत और प्रभावशाली झलक देखने को मिलती है। वहीं लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे और केकई के रूप में लारा दत्ता भी अपने शानदार लुक में नजर आ रही हैं। फिल्म के VFX भव्य दृश्य और AR रहमान तथा हंस जिमर का संगीत इसे और भी शानदार बना रहा है। अगर ट्रेलर की बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति, भावनाओं और भव्यता की झलक साफ दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरती है। एंड बताया जा रहा है कि रामायण इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, क्या आपने रामायण का ट्रेलर देखा? अगर आपको सबसे ज़्यादा किसका किरदार पसंद आया है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। बाकी हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आ गए हैं तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट वाले जो मैसेज हमारे श्रोता भेजते हैं ना, उनको हमसे बड़ी नाराज़गी होती है कि मैम आप हमारा मैसेज बहुत लेट शामिल करते हैं। बट इसमें गलती मैम हमारी नहीं है, क्योंकि इतने सारे मैसेज हमारे पास आते हैं तो सभी को हम शॉर्ट में रीड करने का पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि गाने भी होते हैं, अपडेट्स भी होती हैं एंड बैक टू बैक सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है ना। तो नाराज मत होइए, आप मान भी जाइए। और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं अमरोहा से नेहा जी। नेहा जी, अगर आप हमसे नाराज हो जाएंगी तो बताइए कहाँ जाएंगी। हाँ, आप नाराज हो जाएंगी तो हमें मनाना भी आता है। और ये अपना मैसेज हमें पहुंचाती है अमरोहा से, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर, ऐसे नाराज ना हुआ करो तुसी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, दीदी नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी सैनी है और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं कुंदनपुर मुरादाबाद से, और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। सच में दोस्तों, ऐसा तो हमारे साथ हो जाता है जब हमारा ऑफ होता है ना, और हमें रेगुलर आदत है आपसे बातचीत करने की मॉर्निंग में, तो जिस दिन हम यहाँ नहीं आते हैं तो उस दिन ऐसा हमारा दिन भी थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, इन्होंने बस गुड मॉर्निंग विश किया है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतना पेशेंस आप रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आए हैं, और ये मैसेज हमें मिला है, हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन ज़रूरी है, जिस तरह खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, किसी से बात करना ज़रूरी है, उसी तरह मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है। और मनोरंजन का रूप कोई भी हो सकता है, जैसे मनोरंजन क्रिकेट, लूडो, कैरम बोर्ड या फिर रेडियो मनोरंजन, किसी भी रूप में हो हमें ज़रूर करना चाहिए। मनोरंजन कोई भी हो, मनोरंजन तक ही सीमित रहे उसका आदि नहीं होना चाहिए। मनोरंजन करने से दिल को सुकून मिलता है, शरीर में फुर्ती रहती है और दिमाग टेंशन से दूर रहता है। एग्जैक्टली राइट सर। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं,
आदित्य कसाना जी हैं और ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें लदावली से। कहते हैं 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी साहब जी का निधन हुआ था, तो उन्हीं की याद में हम एक ट्रैक सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम सुनवाएंगे। धन्यवाद, आपने अपना मैसेज पहुंचाया। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशांत हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शहीद अशारी कली जी, महाराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका शो मॉर्निंग मसाला हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गाने भी बहुत ही अच्छे प्ले कर रही हैं आप। शुक्रिया सर, ये आप सबकी ही पसंद है। और ये कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। श्योर सर, हमारे श्रोता इतने प्यारे हैं एंड इतनी सारी चीज़ों को समझते हैं, अच्छा लगता है। शुक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि देखिए, मैसेज आप कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन रेगुलर रिक्वेस्ट गाने की ना करने की बजाय आप अपना मैसेज, अपनी बातें, अपनी थॉट मुझ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी सभी लोगों की फरमाइशें, सभी लोगों की च्वाइस की जो ट्रैक होते हैं वो चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके गाने भी इतने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि सभी के गानों को हम प्ले करें, और बाकी थोड़ा सा ख्याल आप भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों। उसके अलावा अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूला उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू कश्यप, शीतल कश्यप जी का, साथ में राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर, इन्होंने पूरे परिवार के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके अलावा हमारे पास अगला मैसेज आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और कहते हैं कि सावन के महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक गाना सुनना चाहते हैं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं सोनू कुमार जी सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद करते हैं आपसे भी बातचीत और लौट कर आते हैं हम। बस आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाइए, गुनगुनाइए। और हाँ, जो मतलब कहते हैं ना कि नाराज़गी, ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यार अगर नाराज़ हो भी ना तो मान जाओ, क्योंकि नाराज़गी थोड़े समय के लिए अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। और ज़िंदगी बहुत प्यारी है, अगर आप नाराज़गी में ही अपनी लाइफ को क्या हो गया ना, वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नाराज़ रहिए, मना नहीं कर रहे, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो अभी गाना सुनो।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक ये रेडियो वाला प्यार, बहुत ही खूबसूरत गाना। और ये रिक्वेस्ट हमें भेजी थी कराची पाकिस्तान से राशिद नाज जी ने। सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा ना। चलिए, एक वॉइस नोट हमारे पास आया है, तो उस वॉइस नोट को सुनते हैं कि मैम क्या पहुंचाती हैं आज की सुबह अपनी मधुर सी आवाज में। बहुत लेट हो गया है उनका मैसेज मेंशन करने में, शामिल करने में, बट कोई बात नहीं, सुन लेते हैं उनकी प्यारी सी आवाज़ क्या पहुंचाती हैं आज की सुबह मैम, क्योंकि सावन का इतना पावन महीना है और इतना प्यारा सा उन्होंने मैसेज पहुंचाया है। तो मैं चाहती हूं कि हमारे तमाम श्रोता भी मैम की आवाज़ सुने आज की सुबह, उनके दिल की आवाज़ सभी श्रोता तक जानी चाहिए ना, क्यों दोस्तों। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप भी अपना वॉइस नोट पहुँचाया करो, लेकिन आप हो कि इतना शर्माते हो। हाँ,
1: राधे राधे, खुशी खुशी पवित्र श्रावण मास की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सभी एफएम सुनने वालों को। महादेव की कृपा से सावन का ये पावन महीना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और बारिश खुशियों की हो, और भोले बाबे का दिन है तो ये गाना सुनवा देना खुशी। हरे हरे शंभु शिवा महादेवा, भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, हर हर महादेव।
0: हर हर महादेव, थैंक यू सो मच अलका वर्मा जी, आपने इतना प्यारा वॉइस नोट हमें पहुंचाया है। और थोड़ा सा लेट हो गए हैं, माफ़ी चाहेंगे मैम, लेकिन हाँ, आपका जब वॉइस नोट मैंने सुना तो मेरे चेहरे पर ना बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई है, थैंक यू। उसके अलावा हमारे पास और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। एंड ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पिंटू जी का, और ये कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ सर, एंड बस पूरी कोशिश होती है कि आप सभी हमेशा ऑलवेज खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, एक वॉइस नोट और हमारे पास आया है, उस वॉइस नोट को भी सुन लेते हैं कि आज की सुबह सर क्या पहुँचाते हैं, इनकी मधुर सी आवाज़ भी सुन लेते हैं। अब इतने प्यार से कोई मैसेज पहुँचा है, हम शामिल न करें, ऐसे कैसे हो सकते हैं।
2: बहुत बहुत आपका शुक्रिया खुशी जी, मैं बहुत खुश हुआ और लोगों ने पसंद भी किया होगा ये गाना।
0: थैंक यू सो मच सर अपना वॉइस नोट पहुंचाने के लिए। आप खुश हैं, बस हमें यही चाहिए, आप सब खुश रहते हैं तो खुशी भी ऑटोमेटिकली खुश रहती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं मैम की पसंद पर इतना प्यारा सा गाना, हर हर शंभू, क्योंकि महादेव जी का पहला सोमवार का दिन है, और मतलब पहले सावन का दिन है, मंडे तो आने वाला है, अभी थर्सडे है, और लेकिन सावन का पहला दिन है, तो ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बस अभी आती हूँ वापस।
3: ये लो बेटा, बाबा जी का प्रसाद खाओ, आज ग्रेजुएट हो गई हो। आपके लिए तो बस आपकी नौकरी। अरे

0: ब्यूटीफुल, अभी आपने भजन सुना जुबिन नौटियाल जी की, बहुत ही प्यारी सी आवाज़, साथ में पायल देव और मनोज मुंतेश्वर जी के लिरिक्स है, बहुत ही प्यारे। दोस्तों देखिए, स्टूडियो की घड़ी में ना राइट नाउ 12 बज चुके हैं और अभी हमारे जाने का भी वक्त हो गया है, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं मिलेंगे आपको 3 से 5। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दोस्तों हमेशा अपनों के साथ रहिए, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार हमेशा दीजिएगा। और मैं कहती हूँ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं, उनका उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठिए, थोड़ी बातचीत कीजिए। दोस्तों जब बड़ों के साथ बैठते हैं ना तो बहुत सारा अनुभव हमें मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, तो हमेशा अपने बड़ों के साथ ज़रूर बैठिए। ज़्यादा भी अगर आप बहुत बिजी हैं लाइफ में तो 10-15 मिनट तो टाइम आप निकाल ही सकते हैं, उनके पास बैठिए, उनको भी खुशी होगी, अच्छा फील होगा। जैसे आप कभी ज़्यादा परेशान होते हैं ना लाइफ में, तो आप सोचते हैं कि मैं उस दोस्त से बात कर लूँ या उस फ्रेंड से बात कर लूँ तो सब चीज़ें मतलब अच्छी हो जाएंगी, कहीं घूमने चला जाता हूँ तो माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े हमारे घर के होते हैं ना, चाहे वो दादाजी हों या फिर वो मम्मा पापा हों, जब आप भी उनके पास बैठते हैं ना तो दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो थोड़ा सा समय उनके लिए भी ज़रूर निकालिएगा और मुझे अभी दीजिए जाने की अनुमति, मैं मिलने वाली हूँ आपसे 3 से 5। सी यू सून, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगेन आप सभी को श्रवण मास की, पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनों के साथ रहिए और किसी ज़रूरतमंद की मदद भी ज़रूर कीजिएगा, ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में हमें मिलता ही है। और बिलीव इन कर्मा, अच्छी कर्मास जरूर कीजिएगा।
1: प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी, किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादो गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
1: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
0: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। AKCC.NABARD.ORG
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
0: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
1: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
0: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
1: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
0: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
1: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
0: EKCC साख से समृद्धि।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: उसकी पहचान जांच IFA, MMS, पोषण और मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IBFCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की थी। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है, बच्चे के जन्म के बाद माँ। क्या माँ का प्रसव के बाद कमजोर होना सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेहतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोर होना तो सामान्य बात है, क्या ये बात सही है?
1: देखिए, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस।
2: बिल्कुल, हमारे ही इलाके की शबाना की कहानी सुनिए। शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद भी शबाना को लगातार कमजोरी रहती थी। वह जल्द ही थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेकर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है। उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई और वह अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए?
2: बिल्कुल।
0: सेहतिया जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: और बच्चे के संदर्भ में?
1: जब माँ स्वस्थ रहती है तो वह अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना जरूरी है।
0: यानी प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं।
0: टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल, प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वह सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरतें पूरी हो, अपनी तकलीफ बाद में देखेंगे, लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रखती है?
2: जी हाँ, हमारे समाज में यह बहुत आम बात है। अगर बच्चा रो रहा हो, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर या थकान के बारे में बताने से भी हिचकिचाती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वह शिकायत ज्यादा कर रही है।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है, माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, क्या यह भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
1: बिल्कुल, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उबर रहा होता है और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिलाओं को आराम का समय मिले, उनकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिसे महिलाएं अपनी परेशानी बताने से बचने लगती हैं?
2: ऐसा अक्सर होता है, जैसे कोई कहता है हमारे समय में भी

0: संपर्क बनाए रखना जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतें खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पे मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गर्भावस्था का समय।
2: और मैं सभी परिवारों से कहना चाहूँगी कि जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चों की खुशियाँ मत मनाइए, उस माँ का भी ध्यान रखिए जिसने उसे जन्म दिया। उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती हैं। टिकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है।
0: परिवार क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले तो माँ को पर्याप्त आराम मिले, इनका ध्यान रखे। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत हो तो परिवार उसका साथ दे। चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में मदद करे। और सबसे जरूरी बात, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करे।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात। सिहतिया सिंह जी, पिछले कार्यक्रम में हमने IFA, MMS और IBFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दे।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही, स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात तो साफ हुई कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा हो तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत।
1: समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है, और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देख भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
0: तो चलते चलते कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखिए दोस्तों। पहली बात, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी बात, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज ना करें। तीसरी बात, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच जरूर करवाएं। चौथी बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: माँ की सेहत पर ध्यान देना, बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: इस संदेश के साथ आज के कार्यक्रम में मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सिहतिया जी और टीकन देवी जी। सिहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
4: देखिए आर्जेरीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
3: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
4: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी

0: हो सकती है।
1: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जेरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम माँ और बच्चे दोनों के लिए होगा।
1: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
0: बिल्कुल आर्जेरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और एनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
1: दृष्टि चक्र वह कैसे?
0: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और एनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
1: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सिहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
0: देखिए आर्जेरीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे, तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
1: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
1: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
1: तो अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
0: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
0: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
0: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
0: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम एनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर एनीमिया।
1: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
0: आर्जेरीना, IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
0: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
2: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
1: किस तरह का भोजन करें?
2: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
2: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
1: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
0: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
1: अच्छा?
0: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
0: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
0: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
2: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
2: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
0: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
3: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
3: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
3: ठीक है मैम।
4: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
3: ऑल राइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
3: ओके, ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
5: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड अनीमिया में आता है, मतलब हल्का अनीमिया।
5: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट अनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
5: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर अनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
5: ओके।
4: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
5: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल।
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
5: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
4: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल।
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है,
5: राइट,
4: हीम प्रोटीन होता है,
5: राइट,
4: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
5: ओके। तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना
5: सारे
4: चाहिए। और जितने सेब हैं,
5: हाँ जी, जो
4: अनार हैं,
5: ओके,
4: फ्रूट्स हैं,
5: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
5: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर अनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
5: हाँ जी,
4: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
5: ओके।
4: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
5: ओके।
4: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
5: कम हो जाता।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
5: ओह माय गॉड।
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
5: कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं,
4: बहुत कॉम्प्लिकेशन।
5: ओह माय गॉड।
4: और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
5: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
5: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am.
4: Welcome.
5: हमारे साथ आने के लिए गाइज, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। और आज मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूं। कुछ साल पहले हमारे ही पास के गांव में 4 साल की छोटी सी बच्ची गुड़िया बहुत चंचल, हर समय हंसती रहती थी। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया। माँ बाप ने सोचा सामान्य सर्दी जुखाम होगा। 2 दिन बाद उसकी आंखें लाल हो गई, नाक बहने लगी और फिर पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए। गांव में किसी ने कहा ये तो माता निकली है, डॉक्टर के पास मत ले जाओ। इलाज देर से हुआ और गुड़िया को गंभीर निमोनिया हो गया। कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बात कही, अगर समय पर खसरे का टीका लग जाता तो ये हालत नहीं होती। दोस्तों, आज हम उसी बीमारी यानी खसरा और उसे बचाव के सबसे आसान तरीके यानी टीकाकरण की बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने वाले हमारे अपने सेहतिया सिंह।
2: धन्यवाद भाई और बहनों, और धन्यवाद आरजे रीना जी। आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि खसरा कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि बेहद तेजी से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है।
1: तो सबसे पहले यही बताइए, खसरा आखिर है क्या?
2: खसरा एक वायरस से होने वाली अत्यंत संक्रामक बीमारी है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने खांसी या छींक दी या उसके आसपास की हवा में आप सांस ले लें तो संक्रमण फैल सकता है। ये सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, लेकिन सच ये है कि जिसे टीका ना लगाओ उसे खसरा हो सकता है।
1: इतना जल्दी फैलता है क्या?
2: बहुत ज्यादा। एक खसरे का मरीज लगभग 18 लोगों तक संक्रमण फैला सकता है और वायरस हवा या सतह पर 2 घंटे तक सक्रिय रह सकता है।
1: सेहतिया जी, अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी बच्चे को खसरा हो जाए तो माता पिता पहचान कैसे करें? क्योंकि शुरू में तो सामान्य बुखार जैसा ही लगता होगा ना?
2: बिल्कुल सही कहा आपने रीना जी, यही वजह है कि लोग असल में खसरे के लक्षण संक्रमण होने के लगभग 10 से 14 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं।
1: यानी बीमारी शरीर में पहले से ही होती है लेकिन दिखती बाद में है।
2: हाँ, और शुरुआती 4 से 7 दिनों में बच्चे को तेज बुखार आता है, साथ में नाक बहना शुरू हो जाता है, लगातार खांसी रहती है और आंखें लाल होकर पानी छोड़ने लगती है। कई बार माता पिता ध्यान नहीं देते लेकिन गाल के अंदर छोटे छोटे सफेद धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं, जो खसरे की खास पहचान माने जाते हैं।
1: अच्छा, और जो शरीर पर दाने निकल आते हैं वो कब आते हैं?
2: दाने आमतौर पर 7 से 18 दिन के बीच दिखाई देते हैं। पहले चेहरे और गर्दन पर शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए हाथ पैर तक पहुंच जाते हैं। करीब 5-6 दिनों बाद ये दाने हल्के पड़ने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं।
1: मतलब जब तक दाने दिखते हैं तब तक बीमारी काफी आगे बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल सही समझा आपने, इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है।
1: लेकिन सेहतिया जी, गांव में अक्सर लोग कहते हैं खसरा तो अपने आप ठीक हो जाता है, चिंता की बात ही नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है?
2: नहीं आरजे रीना जी, यही सबसे बड़ा भ्रम है। खसरा बिल्कुल भी हल्की बीमारी नहीं है, अगर सही देखभाल ना हो तो इसे गंभीर और जटिलताएं भी हो सकती हैं।
1: जैसे
2: कुछ बच्चों की आंखों पर इतना असर पड़ता है कि अंधापन तक हो सकता है। कभी कभी दिमाग में सूजन आ जाती है जिसे इन्फेलाइट्स कहते हैं, जिससे स्थायी नुकसान हो सकता है। कई बच्चों को गंभीर दस्त हो जाते हैं और शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। कान में संक्रमण और निमोनिया जैसी सांस की खतरनाक बीमारी भी हो सकती है।
1: और गर्भवती महिलाओं के लिए?
2: अगर गर्भावस्था में खसरा हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या फिर उसका वजन बहुत कम हो सकता है।
1: तो किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?
2: सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से छोटे बच्चों को होता है। गर्भवती महिलाएं भी जोखिम में रहती हैं। जो बच्चे कुपोषित होते हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनमें बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है।
1: यानी जिस बच्चे का पोषण सही नहीं है उनके लिए खतरा और बढ़ जाता।
2: जी हाँ रीना जी, और एक और महत्वपूर्ण बात, खसरा खुद शरीर की इम्यूनिटी कमजोर कर देता है या बच्चा बाद में दूसरी बीमारियों को भी आसानी से शिकार हो सकता है।
1: दुनिया भर में इसकी क्या स्थिति है? क्या अभी भी खसरा बड़ी समस्या है?
2: पहले तो स्थिति बहुत गंभीर थी। टीका आने से पहले हर 2-3 साल में बड़े प्रकोप होते थे और दुनिया भर में हर साल लगभग 26 लाख लोगों की मौतें हो जाती थी।
1: इतनी ज्यादा?
2: लेकिन टीकाकरण ने इतिहास बदल दिया। साल 2000-2024 के बीच दुनिया भर में लगभग 5,90,00,000 मौतें रोकी गईं और फिर भी 2024 में करीब 95,000 लोगों की मौत खसरे से हुई, जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे थे।
1: यानी बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है?
2: बिल्कुल नहीं, और इसलिए टीकाकरण और भी जरूरी हो जाता है।
1: तो क्या खसरे की कोई और खास दवा होती है?
2: सीधी दवा तो नहीं होती। इलाज का मतलब है मरीज को आराम देना, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन देना ताकि शरीर मजबूत रहे। अगर निमोनिया या कान का संक्रमण हो जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे सकते हैं।
1: और आपने पहले भी विटामिन ए की भी जिक्र किया था।
2: हाँ, खसरे के मरीजों को डॉक्टर 2 खुराक विटामिन ए देते हैं 24 घंटे के अंतर से। इसमें आंखों को नुकसान से बचने में मदद मिलती है और मौत का खतरा भी कम हो जाता है।
1: और अब सबसे अहम सवाल, इसमें बचाव कैसे होता है?
2: इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है टीकाकरण। खसरे का टीका पूरी तरह सुरक्षित है, प्रभावी है, सस्ता है और लाखों बच्चों की जान अब तक बचा चुका है।
1: और कितनी बार लगाना जरूरी है?
2: रीना जी, लगाने के लिए 2 खुराक जरूरी है, क्योंकि पहली खुराक के बाद हर बच्चे में पूरी सुरक्षा नहीं बनती, इसलिए दूसरी खुराक सुरक्षा को मजबूत करती है।
1: सुनने वालों के लिए एक जरूरी घोषणा भी है, हमारे इलाके में जल्द ही खसरा रूबेला टीकाकरण दिवस आयोजन होने वाला है।
2: जी हाँ, उस दिन आंगनवाड़ी केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में, स्कूलों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर बच्चों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। मैं सभी माता पिता से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को लेकर जरूर जाएं।
1: सेहतिया जी, माता पिता अक्सर पूछते हैं कि बच्चे को कौन सा टीका कब लगवाना चाहिए, थोड़ा आसान तरीके से समझाइए ना।
2: जरूर, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे टीवी से बचाने वाला BCG टीका, पोलियो की शुरुआती खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है।
1: यानी जन्म के तुरंत बाद ही सुरक्षा शुरू हो जाती है?
2: बिल्कुल, फिर जब बच्चा 6 हफ्ते का होता है तो उसे पोलियो, पेंटावेलेट, रोटावायरस, IPV और निमोनिया से बचने वाले PCV टीके लगाए जाते हैं।
1: और इसके बाद
2: 10 हफ्ते की उम्र में फिर से पोलियो, पेंटावेलेट और रोटावायरस की खुराक दी जाती है। 14 हफ्ते और वही सुरक्षा आगे बढ़ाने के लिए पोलियो, पेंटावेलेट, IPV, रोटावायरस और PCV लगाए जाते हैं।
1: अब आते हैं खसरे वाले टीके पर।
2: हाँ, 9 से 12 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा रूबेला यानी MR टीके की पहली खुराक दी जाती है। कुछ जिलों में इसी समय जापानी इन्फोलाइट्स का टीका भी लगाया जाता है।
1: और दूसरी खुराक?
2: 16 से 24 महीने की उम्र में MR की दूसरी खुराक दी जाती है, साथ में DPT और पोलियो बूस्टर भी लगाया जाता है ताकि सुरक्षा मजबूत बनी रहे।
1: बड़े बच्चों के लिए भी कुछ होता है?
2: हाँ, 5-6 साल की उम्र में DPT बूस्टर दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए TD के टीके लगाए जाते हैं, जिसमें माँ और नवजात दोनों सुरक्षित रहते हैं।
1: यानी पूरा टीकाकरण समय पर होना ही असली सुरक्षा है।
2: बिल्कुल, समय पर टीका मतलब बीमारी से मजबूत ढाल।
1: यानी अगर बच्चा पहला साल पूरा होने तक सारे टीके ले ले तो उसे पूर्ण टीकाकृत माना जाता है?
2: बिल्कुल सही।
1: सेहतिया जी, अभी तक हमने खसरे, उसके लक्षण और टीकाकरण की बात की, लेकिन कई श्रोता पूछते हैं कि आखिर सरकार इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण कैसे करती है? क्या इसके पीछे कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है?
2: रीना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। भारत में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।
1: दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: देखिए, हर साल इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2,67,00,000 नवजात बच्चों और करीब 2,90,00,000 गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण से सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। सोचिए कितना विशाल काम है देश के लगभग हर गांव, हर बस्ती तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुँचते।
1: यानी यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि माताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
2: बिल्कुल, इस कार्यक्रम के तहत 12 गंभीर बीमारियों से मुफ्त बचाव उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें खसरा और रुबेला जैसी खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य साफ है, कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए बीमार ना पड़े क्योंकि उसे टीका नहीं मिला।
1: अब एक सवाल और जो अक्सर माता पिता पूछते हैं, MR वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है?
2: भारत ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, खसरे को खत्म करना और रुबेला को नियंत्रित करना। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए साल 2017 में देश भर में MR टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।
1: यह अभियान कितना बड़ा था?
2: बहुत ही व्यापक। इसका लक्ष्य 9 महीने से लेके 15 साल तक की कम उम्र के लगभग 41 करोड़ बच्चों को सुरक्षा देना था, यानी देश की लगभग एक तिहाई आबादी को कवर की योजना बनाई गई।
1: और अब यह अभियान खत्म हो चुका है या जारी है?
2: अब ये नियमित टीकाकरण का हिस्सा बन चुका है, यानी हर बच्चे को तय उम्र पर MR टीकाना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां खसरे और रुबेला से सुरक्षित रहें।
1: सेहतिया जी, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो हमने बहुत सुना है, इसका टीकाकरण में क्या संबंध है?
2: मिशन इंद्रधनुष साल 2014 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के कम से कम 90% बच्चों का पूरा टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
1: तो क्या पहले सभी बच्चों तक टीके नहीं पहुंच पा रहे थे?
2: कुछ दूर दराज इलाके, कठिन भौगोलिक क्षेत्र और ऐसे गांव में जहां टीकाकरण की दर कम थी, वहां बच्चे छूट जाते थे। मिशन इंद्रधनुष खास तौर पर उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया।
1: इसका असर भी दिखा?
2: जी हाँ, शुरुआती चरणों में ही पूर्ण टीकाकरण कवरेज में लगभग 6.7% की बढ़ोतरी देखी गई। बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के दौरान ये बढ़ोतरी लगभग 18.5% तक पहुंच गई, जो बहुत बड़ी उपलब्धियों में मानी जाती है।
1: यानी धीरे धीरे हर बच्चे तक सुरक्षा पहुंचने की कोशिश जारी है।
2: बिल्कुल, यही लक्ष्य है, कोई बच्चा पीछे न छूटे।
1: एक सवाल कई लोगों के मन में रहता है, इतने दूर दराज इलाकों में जब तक जाते जाते क्या टीके खराब नहीं हो जाते?
2: यह चिंता पहले भी होती थी, लेकिन अब सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी EVN शुरू किया है, जिससे पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है।
1: यह सिस्टम करता क्या है?
2: इससे हर जगह टीकों का तापमान लगातार मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि टीकों को सही तापमान पर रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही अधिकारियों को रियल टाइम में पता चलता है कि किस केंद्र पर कितना स्टॉक उपलब्ध है।
1: मतलब टीकों की पूरी यात्रा पर नजर रहती है।
2: जी बिल्कुल, इससे कोल्ड चेन सुरक्षित रहती है और लोगों तक पहुंचने वाला टीका पूरी तरह प्रभावी और सुरक्षित होता है।
1: अब थोड़ा अफवाहों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टीकों को लेकर गांव में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं।
2: हाँ, और इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है।
1: पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने के बाद बुखार आ जाता है, इसीलिए टीका नुकसान करता है।
2: देखिए, हल्का बुखार आना बिल्कुल सामान्य बात है, इसका मतलब है कि शरीर बीमारी से लड़ने की ताकत बना रहा है, ये नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा बनने का संकेत।
1: दूसरी बात, बच्चा तो स्वस्थ है, उसे टीके की क्या जरूरत?
2: ये बिल्कुल एक गलत सोच है, बीमारी पहले से सूचना देकर नहीं आती, टीका बीमारी होने से पहले सुरक्षा देता है।
1: और कुछ लोग कहते हैं कि खसरा भगवान की बीमारी है।
2: नहीं, ये वैज्ञानिक रूप से साबित वायरल बीमारी है, इसका कारण वायरस है और इसका बचाव टीकाकरण से ही संभव है।
1: सेहतिया जी, कार्यक्रम खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
2: हाँ, मैं एक सच्ची घटना साझा करना चाहूँगा। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़े भाई का टीकाकरण समय पर नहीं हो पाया, कुछ समय बाद उसे खसरा हो गया और बीमारी के बाद महीनों तक वह कमजोर रहा, पढ़ाई भी छूट गई।
1: और छोटे भाई का क्या हुआ?
2: छोटे बेटे को समय पर सभी टीके लगे थे, उसी दौरान गांव में खसरे का प्रकोप फैला हुआ था, कई बच्चे बीमार हुए लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तब उनकी माँ ने कहा, काश मैंने पहले बच्चे को भी समय पर टीका लगवा लिया होता।
1: यह बात सच में दिल को छूने वाली है।
2: हाँ, क्योंकि टीका सिर्फ इंजेक्शन नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा है।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत से हमने समझा कि खसरा बेहद संक्रमण बीमारी है, इसका इलाज सीमित है लेकिन बचाव पूरी तरह संभव है, और वह है समय पर टीकाकरण।
2: हर बच्चे को 2 खुराक जरूर दिलवाएं, टीकाकरण दिवस पर स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं और अपने बच्चे का टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें। यही जिम्मेदार माता पिता की पहचान है।
1: बहुत सुंदर संदेश। स्वस्थ बच्चा मतलब मजबूत परिवार, और मजबूत परिवार से बनता है सुरक्षित गांव।
2: बिल्कुल रीना जी, और जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है।
1: इस संदेश के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रीना अब आपसे जाने की विदा लेती हूँ।
3: खसरा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, और अगर भी किसी बच्चे को खसरा होता है तो उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, जैसे बच्चे को शरीर पे पिंक कलर के चकत्ते से पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, उसको फीवर आता है, उसको कफ होने लगता है, लूज मोशन की शिकायत होने सकती है, निमोनिया उसको हो सकता है साथ में। तो ये उसके बच्चे को सिम्टम्स है, और नजदीक की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको सलाह लें और उसको जरूर दिखाएं। साथ ही इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा मीजल्स का टीका मुफ्त है। हमारे जितने भी विलेज लेवल पे, नीचे लेवल पे जो एनएम्स है, उन सब सेंटर्स पे मीजल्स की वैक्सीन अवेलेबल है। प्रिवेंटेबल डिजीज है। यदि हम वैक्सीन अपने बच्चे को जो 9th मंथ से स्टार्ट होता है और उसको 24 महीने तक ये लगाई जाती है, तो मीजल्स के साथ में हम MR भी देते हैं, यानी कि M फॉर मीजल और R फॉर रूबेला के कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जो MR1 एंड MR2 की वैक्सीन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट इसको उत्तर प्रदेश इसको फ्री में मुफ्त में इलाज में करवा रही है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से इस FM के चैनल के माध्यम से ये भी एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दी है, और उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द ही वो यहाँ पे हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, और एडोलेसेंट गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध हो। पहले 3 महीने में ये वैक्सीन एक कैंपेन के रूप में चलेगा प्रतिदिन, जहाँ पे हमारी कोल्ड चेन यूनिट्स हैं, और उसके बाद इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत कॉस्टली वैक्सीन थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मुफ्त में एडोलेसेंट गर्ल को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपने, जब हमारा कैंपेन स्टार्ट होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से दी जाएगी, और उन बच्चों को ये वैक्सीन अवश्य लगाएं जिससे सर्वाइकल कैंसर को बचाया। धन्यवाद।
1: सुनते रहिए सेहत सही लाभ गई। पर जाने से पहले लेंगे हम सेहत की शपथ। हम सब मिलकर आज यह शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे कि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
2: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
2: सेहत सही तो लाभ कही।
1: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।

0: का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड आपकी दोस्त आरजे खुशी और मैं हाजिर हूँ आप सभी का फेवरेट कार्यक्रम लेकर, जी हाँ फेवरेट शो लेकर, सोच बदलो। और साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन शायद हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। खुश दिखना और सच में खुश होना दोनों अलग हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर कुमकुम भी है। और बताइए कुमकुम, कैसी हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद आप स्टूडियो आई हैं।
1: जी हाँ, मैं बहुत दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं घूमने गई थी अपनी मम्मा के घर। बहुत टाइम से उनकी याद आ रही थी तो सोचे थोड़ा घूम के आ जाए। मौसम भी काफी गर्म था और अब थोड़ा ठंडा हो गया तो क्यों ना काम कर लिया जाए वापिस।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा आपने। कुमकुम, आज का हमारा टॉपिक है खुश दिखना और सच में खुश होना अलग अलग है, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर?
1: जी हाँ, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि जो लोग होते हैं दिल से खुश होते हैं तो उनके चेहरे पे निखार आ जाता है, लेकिन जो लोगों को दिखाने के लिए खुश होते हैं उनके चेहरे पे एक बनावटी मुस्कान होती है। आज लोग मुस्कुराते बहुत हैं लेकिन अंदर से परेशान भी बहुत होते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे हैप्पी फोटोज तो होंगी लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेस, लोनलीनेस और प्रेशर। क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं?
0: कुमकुम, ये तो आप सही कह रहे हो कि आजकल लोग खुश तो हैं और खुश नहीं भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइफ में बहुत सारा तूफान होता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम फेक स्माइल कर देते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। आज लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हैं, पता है कुमकुम?
1: जी मैं ठीक हूँ बोलना आसान हो लेकिन दिल की बात कहना बहुत ही मुश्किल। डिस्कशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, स्माइल बिहाइंड पेन, लोनलीनेस, इमोशनल लाइंस, इमोशनल लोनली, बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं।
0: और पता है आपको कुमकुम, कई लोग इसलिए भी हंसते हैं ताकि कोई उनका दर्द समझ ना पाए। क्या लोग आज अपनी फीलिंग्स छिपाने लगे? क्या सोशल मीडिया ने फेक हैप्पीनेस बढ़ा दी है?
1: जी ये तो काफी सच है, लोगों को दिखाने के लिए तो दिख रहे हैं कि हाँ खुश हैं, पर उनके माइंड में कितनी टेंशन्स चल रही हैं घर को लेके, फैमिली को लेके, पर वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या वी आर हैप्पी फैमिली या आई एम सो हैप्पी पर्सन या मेरे पास सब कुछ है। ऐसा
0: चेहरे की मुस्कान देखकर हाल मत समझ लेना, चेहरे की मुस्कान देखकर हाल मत समझ लेना। कई बार लोग टूटकर भी हंसते हैं कि कई बार लोग टूटकर भी हंसते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया शायरी, आप तो कमाल कर रहे खुशी जी।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपको पता है खुशी जी, आजकल हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, लेकिन सच तो यह है कि कोई पूरी तरह परफेक्ट होता ही नहीं। सच बोलना, सोच बदलो एक ऐसा हमारी तरफ से मैसेज होता है हमारी प्यारी श्रोताओं के लिए कि उनको लगे कि हाँ जो हम बातें कह रहे हैं वो अपनाएं और सोच बदलें। दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है।
0: कुमकुम, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा है, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम मत समझिए क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी टेंशन है, और अगर कोई इंसान लाइफ में आगे ग्रो कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं वो संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं नहीं दिख पा रहे हो, लेकिन हर इंसान ऊंचाई तक पहुंचने से पहले संघर्ष का सामना करता है और आप भी उस संघर्ष को जीत सकते हैं, उस संघर्ष से पार होकर अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक सोच रखनी है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, और वहीं अगर आप कभी किसी को देखकर खुद से कंपेयर करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको, आपके जो माइंड है ना वो डिमोटिवेट होने लगेगा कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, वो बहुत सुंदर है, ये मत आप सोचिए क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत स्पेशल है। और जब ऊपर वाले कोई भी चीज बनाते हैं ना तो वो व्यर्थ नहीं बनाते हैं, वो स्पेशल होती है और आपके अंदर भी कुछ खास है, कुछ खास कर दिखाने का। और वो बहुत प्यारी सी लाइन है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: जी क्या बात है खुशी जी, आपने बहुत सही कहा। आजकल तो आप देखते होगे यार, लोग मतलब कैसे हो गए हैं। हम भी कुछ ऐसे ही है, जैसे कि स्टेटस पर बिजी डाल दिया पर हम रील्स स्क्रोलिंग करते रहते हैं। मूड खराब है तो फिर भी हम कहते हैं आई एम फाइन, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सैड होकर भी मोटिवेशनल वीडियोस डालना या फिर दुखी दिखने के बाद भी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना कि यार एवरीथिंग इज ओके। खुशी एक्सपेंसिव चीजों में नहीं होती, मेंटल पीस में होती है, ये तो सभी जानते हैं। पर ना उसकी मतलब उस पीस को पाया कैसे जाए, उस चीज को प्राप्त कैसे किया जाए या पाया कैसे जाए। आप लोग सब ये सोचते हो कि हाँ ये चीज मिल जाएगी, पीस हो जाएगा, मतलब दिल को शांति मिल जाएगी। नहीं होता, सुकून से आसानी से नहीं होता। लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, खुद से बातें करते हैं,
0: खुद से प्यार करते हैं,
1: जी खुद से प्यार करते हैं,
0: खुलकर बात करते हैं,
1: जी वही
0: है
1: बात,
0: जैसे अभी हम, जैसे मैं और आप खुलकर बातें कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना।
1: जी जब हम कुछ रूल्स को तोड़ के अपने मन का करते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस होती हैं, जब हमारे लिए हमारे सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो यार वो चीजें करो ना जिससे तुम्हें रियल में दिल से खुशी मिले,
0: या दिखावे की दुनिया में ना जाए, अपने रियल लाइफ में रहें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिखावा ना कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकता है,
1: जी,
0: लेकिन खुश दिखना अंदर से वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सुकून देता है। तो आपको साथियों दिखावटी खुशी पर नहीं जाना है, आपको रियल में खुशी देती है, आपको उसको अपनाना है। तो अभी मिलते हैं आपको एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए। खुशी आपसे कहती है कि दिल से मुस्कुराइए।

0: सकती हूँ, अगर आपको कभी तकलीफ होती है और आपको रोना आता है तो आपको रो लेना चाहिए जी भर के, क्योंकि रोने से ना हमारे आधे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, तो आप रो सकते हैं खुलकर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो, थोड़ा खुद के लिए भी जी लिया करो। हर बार दूसरों के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है, हर बार दूसरों के लिए मुस्कुराना जरूरी नहीं है।
1: बहुत सही कहा खुशी जी। वैसे मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोगों को कि वो वीडियो बनाने में या लाइव आने में या लोगों से चैट करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, गेम ले लो, गेमिंग जोन में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली को नहीं देखते हैं। बट असल में इन सबसे खुशी मिलती है या फिर सच्ची खुशी होती क्या है?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कुमकुम। मैं आपको बताती हूँ, आपने जैसे मुझे पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे कहीं ना कहीं गेम में बिजी हैं, कहीं रील्स बनाने में बिजी हैं, तो कहीं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में वो खुशी ढूंढते हैं। लेकिन सच्ची खुशी कहाँ मिलती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सच्ची खुशी मिलती है अपनों के साथ समय बिताने में, दिल की बातें कहने में, छोटी छोटी चीज़ों में। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए, आप जैसे हैं वैसे ही स्पेशल हैं। कुमकुम देखो, अब जैसे आप मेरे साथ बैठी हैं, आप मुझसे बातें कर रही हैं, आपको भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, और हमारे सुनने वाले तमाम श्रोता भी इस समय मुस्कुरा रहे हैं, और पता है आपको हमारी बातों को बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं खुशी जी ने तो हमारे दिल की बात कह दी है। तो कुमकुम, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कहना चाहती हो मुझे बताओ।
1: जब आप लोग दिल से मुस्कुराते हो तो हम लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि हमारे रेडियो के सहारे ही आपको कई सारी नई बातें सुनने मिलती हैं, जानने मिलती हैं, सोच बदलने का मौका मिलता है। और अभी आपने खुशी की बात की थी, जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है और ज़्यादातर गर्ल्स शॉपिंग करना पसंद करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना खुशी जी कि असली खुशी ना अपनों के साथ है, अपने दोस्तों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है। क्योंकि ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं भी सोचती थी कि ये चीज़ चाहिए मुझे, वो चीज़ चाहिए, बट शादी होने के बाद जब मैं फैमिली से अलग हुई हूँ, मुझे माँ की याद आती है, वो अपनापन याद आता है। लेकिन हाँ, आपके हस्बैंड जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके साथ रहना भी एक इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उससे भी खुशी मिलती है। और जब हम दोबारा अपनी मम्मा के पास जाते हैं तो यार एक सुकून मिलता है।
0: ओए होए लड़की, क्या कह दिया आपने, मतलब आपके मम्मी का नाम, जिसे आपको पता चलता होगा कि कल मम्मी के घर जाना है, तो आप तो खुशी के हमारे खाना भी नहीं खाती होंगी।
1: वो कहते हैं ना, खुशी के ठिकाने नहीं है,
0: खुशी के ठिकाने नहीं है। हाँ
1: जी हाँ,
0: मायके जाने की खुशी ना लड़कियों को अलग ही होती है जब वो अपनी मम्मी के घर जाती। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, सबको पता है। और हाँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे आस पास हमारे यहाँ शादियाँ होती है, नई लड़कियाँ घर पे आती है, जैसे मैं अपने कजन भाभी की ही बात कर लेती हूँ, हम दूर क्यों जाए, पता है कजन भाभी जो है, मतलब शादी हुई है तो वो मतलब अपनी फैमिली को इतना मिस करती है, एवरी डे वो अपनी मम्मा को कॉल पर बात करती है, कॉल पर, और वो हमेशा अपनी मम्मी से हालचाल जानती है, तो अच्छा लगता है। मैंने बोला कि आप पहले से ही इतना प्यार करती है अपनी मम्मा को, या ससुराल आने के बाद कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है? तो कहती है कि नहीं नहीं, पहले प्यार था, लेकिन वो इतना एहसास नहीं होता था क्योंकि मम्मा नजदीक थी, अब मम्मी दूर होती है, दूर रहती है, तो अब प्यार ज्यादा बढ़ गया है। और वो जैसे ही उनको पता होता है कि कल मुझे अपनी मम्मी के घर जाना है, तो आज ही पैकिंग कर लेती हैं अपने घर जाने के लिए, इतना एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर, सारे काम फटाफट से करती हैं, फटाफट उनकी एनर्जी ना डबल हो जाती है मम्मी के घर के नाम सुनते ही।
1: या इनफैक्ट ये तो बहुत ही रेयर होता है, कमी से खुशी मिलती हो। ज्यादातर जो गर्ल्स होती है ना, उनको ये लगता है कि बस अब तो मिल गया मौका जीने का एक और।

0: दोस्तों, खुश दिखने से ज्यादा ना खुश रहना अंदर से जरूरी है। ये हमें खाली खुशी की बात नहीं सिखाता, ये सुकून की बात सिखाता है, दिल की राहत की बात सिखाता है। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है अंदर से खुश रहना। अपनों से बात कीजिए, खुद को समय दीजिए और जिंदगी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से जीना शुरू कीजिए। ओके दोस्तों।
1: अरिफा, ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत सी बातें कही है कि जिंदगी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से जीना शुरू कीजिए। खुशी तस्वीरों में नहीं मिलती, वो तो सुकून भरे रिश्तों में छुपी होती है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे सोच बदलो के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए,
0: रेडियो बजाते रहिए,
1: गुनगुनाते रहिए,
0: लेकिन दिल से।
1: नमस्कार साथियों, मिलेंगे आपको बहुत जल्द एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए,
0: गुनगुनाते रहिए।
1: बाय बाय एवरीवन।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: तीन परिस्थितियां हैं जब हम IV आयरन एडवाइस करते हैं। IV आयरन के

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों लोगों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz और चल रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती किसानी पर चर्चा, और मैं हूं आपके साथ आपका आशीष। दोस्तों, धरती माँ की गोद में पसीना बहाकर जो अन्न उगाता है वही हमारे देश का असली हीरो है, हमारा किसान। हम बात करेंगे खेती से जुड़ी नई तकनीकों की, मौसम की, फसलों की देखभाल की, सरकारी योजनाओं की और उन छोटी छोटी बातों की जो खेती को आसान और फायदेमंद बना सकती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और खेती का तरीका भी। पहले जहां सिर्फ परंपरागत खेती होती थी तो वहीं अब किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण जैसी चीजें किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। अगर किसान भाई समय समय पर मिट्टी की जांच करवाएं तो उन्हें ये पता चलता है कि खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। इससे खाद का सही इस्तेमाल होता है और खर्च भी कम आता है। और जैविक खेती, आज बाजार में जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी अच्छी सेहत के साथ अच्छी कमाई भी। जहां तक बात खेती में बीज और बुआई की है तो मुनाफे की फसल खुद उग जाएगी अगर आपका बीज सही तरीके से बोया गया है। कई बार जानकारी ना होने की वजह से किसान भाई उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो खासकर उनके लिए बनाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान

0: निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता देना है। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं ली है तो अपने नजदीकी कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, जानकारी ही किसान की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तो श्रोताओं, बात खेती किसानी की हो रही है, हम आपको तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं, तो क्यों ना वो भी बात सुन ली जाए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने देश के अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने इन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया था कि कैसे इस देश का अन्नदाता इन योजनाओं से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं।
2: अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। 4,00,000 करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। इसी साल किसानों की मदद के लिए नई योजनाएं शुरू की है, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, हम किसानों की हर जरूरत को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से फसल नुकसान होने पर किसान को फसल बीमा योजना का सहारा मिल रहा है। फसल का सही दाम मिले इसके लिए खरीद की व्यवस्था सुधारी गई है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब मेरा किसान मजबूत होगा, और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से पशुपालकों और मछली पालकों को भी जोड़ दिया था। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये केसीसी की सुविधा मिलने के बाद हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालन करने वाले इन सबको खूब लाभ उठा रहा। केसीसी से इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। सरकार भारत के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है। हमने नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की, आज लाखों किसान इससे जुड़ चुके हैं। बीते कुछ सालों में देश में 10,000

0: का ही यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ाएगा।
1: तो सुना आपने देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है। श्रोताओं, खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर करती है, ये हम सभी जानते हैं। कभी ज्यादा बारिश, कभी सूखा, लेकिन सही तैयारी से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीज हमेशा प्रमाणित खरीदे, फसल में रोग दिखाई दे तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। आजकल मौसम की जानकारी मोबाइल पर भी आसानी से मिल जाती है। और तो और, तकनीक का फायदा उठाइए और खेती को मजबूत बनाइए। दोस्तों, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो पूरे देश की उम्मीद जगाता है, वो पूरे देश की उम्मीद उगाता है। इसीलिए कहता हूँ, अब समय है हमारे श्रोताओं की बात सुनने का। अब देखिए, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग जगहों से प्रश्न करते हैं। रामपुर से स्वरूप जी कहते हैं, पानी की कमी की वजह से खेती मुश्किल हो रही है। जबकि हापुड़ से गीता देवी कहती हैं, महिलाएं भी अब खेती में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहाँ तक कि मुरादाबाद से किशन कहते हैं कि खेती तो बहुत अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। दोस्तों, खेती सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार और समाज की ताकत भी है। आप हमें बता सकते हैं क्या आपके गांव में खेती की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? किसान चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, फिर भी हर सुबह नई उम्मीद के साथ खेत में उतरता है। और यही हौसला भारत की असली ताकत है, क्योंकि वो अन्नदाता है। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोस्तों, धरती माँ हर पसीने की कीमत जरूर चुकाती है। जब खेत हरे भरे होते हैं, तभी तो देश खुशहाल होता है। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ आपका आरजे आशीष, और आप सुन रहे हैं खेती किसानी पर चर्चा। अपने खेतों से प्यार कीजिए, नई जानकारी अपनाइए और मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान। मिट्टी की खुशबू मेहनत की निशानी, देश की शान है अपनी किसानी। और इसी तरह की खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां पाने के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। और जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको अपने देश की खेती किसानी की परिपाटी और हरे भरे खेतों से जुड़े हुए इस गीत के साथ। नमस्कार।

0: अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी बॉडी एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एनी बिजनेस एंटिटी एनी कंपनी एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप एनी सब एसोसिएट्स एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए।

0: निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डेल्टा मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादो गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हो रहा है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम बात करने वाले हैं, दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास लिख जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस, और आसमान कभी किसी की मंजिल नहीं होता, वह तो बस उड़ान की शुरुआत होता है। ऐसे ही एक छोटी बेटी थी भारत की शान, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज के इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा की मिसाल कल्पना चावला जी की प्रेरणादायक कहानी।
6: और मैं आपके साथ आपकी आरजी रीना। और इस महिला मंच शो में खुशी ने बताई दिया कि हम आज बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी के बारे में। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह बात जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है उनका ही नाम है कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। परिवार में चार भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही कल्पना का नाम आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित हो जाता था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया गुड्डे या खेलों में व्यस्त रहते थे तब कल्पना आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जाऊंगी। और 8वीं कक्षा में ही उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन माँ ने बेटी के सपनों को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया। और अब हम बात करने वाले हैं उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
5: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की। लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गई। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वे सिंगल इंजीनियर मल्टी इंजीनियर ग्लाइडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलम्बिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान, पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिए हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटे शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुँच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में आपके दोस्त आरजे कृषि। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिलने वाली प्रेरणा के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जिसने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक ऐसी बेटी जिसने बचपन में आसमान को देखा और फिर एक दिन उसी आसमान के पार चली गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी की। फ्रेंड्स, किसी इंसान की असली पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती बल्कि उसके विचारों से होती है। उसके सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। कल्पना चावला भी ऐसी ही शख्सियत थी। उनके विचार आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नजर, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इस शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद से
2: संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहां हर फरमाइश बन जाती है दिल की आवाज और हर गीत ले आता है चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। चारों ओर हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और झिमझिम फुहार, क्योंकि दोस्तों कहीं जगहों पर बारिश भी हो रही है, मानो प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। सावन की पहली फुहार संग खुशियां भी आई हैं, हर दिल की सुनी राहों में नई बौछारें छाई हैं। महादेव की कृपा बनी रहे आप सभी पर यूं ही। और दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से। समय हुआ है अभी 3:03 और दिन है बहुत ही खूबसूरत गुरुवार का। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मैम, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलेंगी आप? हाँ जी, आपको भी नमस्ते, नाम बताइएगा अपना। हेलो मैम, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? हेलो आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? क्या नाम है आपका, दोबारा बताइएगा।
1: मोहिनी।
0: हाँ जी, बताइएगा मोहिनी, कैसी हैं आप? आप वही मोहिनी है ना जो मॉर्निंग में मैसेज करते हैं आप? ओके, बताइएगा मोहिनी जी, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वैसे क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: क्या स्टडी कर रहे हो आप अभी? ओके, वेरी गुड। और कैसे लगते हैं आपको एफएम मुरादाबाद के कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है। ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप? सावन का पहला दिन है आज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन मास की महीने की। बताइएगा कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज आप? जी बताइएगा। ये गाना तो आपने मॉर्निंग में भी सुना था, सुबह मैंने प्ले किया था, आपने सुना होगा शायद। हाँ जी, तो ये गाना हमने प्ले कर चुके थे, कोई दूसरा गाना बताइएगा जल्दी से, वरना मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैं प्ले कर देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए हमें। तो चलिए एवरीवन, मैं सुनवाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, सावन का पावन महीना भी है, और ये गाना सावन के महीने में ना प्ले हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, एक खूबसूरत गीत को सुनते हैं लता मंगेशकर जी और साथ में मुकेश जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में। सावन का महीना पवन करे शोर, बहुत ही प्यारा गीत है, मुझे बताया बहुत सारे श्रोताओं का पसंदीदा भी है। तो चलो, हमने सबकी पसंद को थोड़ा सा ध्यान में रखा है और इस खूबसूरत से गाने को चूज किया है, तो आप भी इस गाने का आनंद लीजिएगा। और एवरीवन, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। लेकिन एक छोटी सा आपको हमारी बात का ध्यान रखना होगा, जब भी आप कॉल करें तो अपने बैकग्राउंड में आसपास बिल्कुल भी शोर शराबा ना रखें, आप ऐसी जगह पर आ जाएं जहां कोई वॉइस ना हो, सिर्फ आपकी आवाज़ हो, ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से हम समझ पाएँ, सुन पाएँ आपकी बातों को, एंड सामने वाले भी आपकी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे ना, जब आपकी बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं होगा। तो उन चीज़ों का ख्याल रखो, बाकी मुझे कॉल करो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी।

0: दोस्तों अभी अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा गीत मुकेश कुमार साथ में मुकेश जी और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज। सावन का महीना पवन करे शोर, और सच कहूँ ना सावन आते ही हम सबके अंदर का बचपन फिर से जाग उठता है। याद है वो दिन जब बारिश की पहली बूंद गिरते ही हम घर से बाहर भाग जाते थे, कागज की छोटी सी नाव बनाकर पानी में तैराना, दोस्तों के साथ बारिश मैं भीगना, कीचड़ में उछलना और फिर घर पहुंचते ही मम्मी की डांट सुनना। लेकिन मजे की बात ये थी कि मम्मी की डांट थी फिर भी अगले दिन वही शरारत दोबारा करते थे। क्योंकि बचपन की खुशियां ना किसी डांट से छोटी नहीं होती। सावन की बूंदों ने फिर बचपन याद दिला दिया ना एवरीवन, कागज की नाव का वो सफर याद दिला दिया है। माँ की डांट भी उस वक्त कितनी प्यारी लगती थी ना, बारिश ने हर फिर वही सुनहरे मंजर दिखा दिए। सावन की कौन सी याद आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है, जरा बताइएगा जरूर। और हाँ मुझे कॉल भी कीजिए, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837 8 9 6 8 9 6। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम आकाश सिंह
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर रेडियो का वॉल्यूम ना थोड़ा सा डाउन कर दीजिएगा।
1: जी मैम।
0: जी आकाश जी बताएगा अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप ऑन द वे? ओके तो बताएगा। जी जी ओके।
1: और हमारा बिस्त में थोड़ा हमने उस दिन बर्थडे विश करने के लिए बहुत प्रयास किया पर हम विश नहीं कर पाए।
0: सॉरी सर
1: हमने कई बार लेकिन
0: ओके कोई बात नहीं, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ है।
1: और हमने मैसेज जो है रीना जी को और अखिल जी को कर लिया।
0: अच्छा
1: क्योंकि आपके बाद रीना जी मैसेज से आती है।
0: हाँ जी हाँ जी
1: रात को हम तो वापसी होते हैं तो अखिल जी ऑनलाइन होते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। थैंक यू सो मच।
1: पार्टी में भी हम मिल गए थे अक्षय जी बोले पुरीना को जो है आज खुशी जी जो है वो अपनी खुशी में व्यस्त है।
0: हाँ जी
1: तो इसलिए हम इसलिए जो है वो हमारा दिल टूट गया, हमें आज जुड़वा दो तीसरा हो या दिल आगे टूट ही जाता है।
0: ओके तो ये जो दिल आपका टूटा है कैसे जुड़ेगा बताइए हमें सर।
1: नहीं वो आपको पार्टी लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी।
0: अच्छा तो ठीक है सर आप स्टूडियो आ जाइएगा आपको पार्टी मिल जाएगी। जी आपने हमें कॉल किया धन्यवाद सर आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: जी तो सुनवाते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, और आप भी मुझे एवरीवन कॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर हमारा है 9837 8 9 6 8 9 6। देखिए हमारी जो श्रोता हैं वो इतना प्यार करते हैं फिर मुरादाबाद से और सभी प्रेजेंटर से कि वो नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें मनाना भी आता है। बट ज़्यादा नाराज़ मत होइएगा क्योंकि ज़्यादा नाराज़ जो हो जाते हैं उन्हें मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मुझे कॉल कीजिएगा और ये प्यारा से गाना अभी सुनिएगा। मैं बस वापस आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, और हाँ आप भी मुस्कुराइएगा।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: और चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: खुशी मैडम जी और सुनने वाले सब मुरादाबाद श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत
0: आपको भी सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बताइएगा कैसे हैं आप और अपना शुभ नाम भी बताइएगा।
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके आकाशवाणी एफएम परिवार और आपके घर के सदस्य।
0: जी जी जी सब बहुत अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा है। आप बताइएगा, सावन का इतना पावन महीना है, कैसा मौसम है आपके यहाँ का?
1: सावन का महीना पावन महीना है, तो सुबह अभी तो धूप निकली है, बस सुहावना है।
0: अच्छा मौसम
1: है, रात में पानी बरस रहा।
0: अच्छा अच्छा ओके, शीतलता है मौसम में ना?
1: सारा पानी जोर से नहीं बरसता है, अभी खुला है, कभी भी आ सकता है।
0: ओके तो सर मुझे आप बताएगा कि सावन जैसे ही आता है तो हमारे बचपन की कुछ बातें, कुछ ऐसी शरारतें याद आ जाती हैं जिससे हमारे चेहरे पर ना मुस्कुराहट आ जाती है, तो कोई ऐसी आपकी भी प्यारी सी याद है?
1: यही यादें आती है, बचपन में यही यादें आती थी कि सब अपने को झूला झूलने को मिलता था।
0: हाँ।
1: यानी पकड़ी या नीम के पेड़ पे जो बांधते है ना बटके, जो घास रहती है
0: जी,
1: उसका झूला मोटे मोटे कूट के बनाते थे, बहुत बड़े बड़े लंबे।
0: अच्छा।
1: पुराने नीम के पेड़ों पे डालते या पकड़ी के पेड़, बहुत पुराने पेड़ों पे,
0: पुराने
1: बैग बनाने का भी शौक था, खूब झूलते थे।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: जो रस्सियां होती उनको चीर के बनाओ, बनाओ तो पैंग बढ़ती है और मजा आता है। दो दो आदमी करके भी झूलते है।
0: जी जी जी जी सर,
1: रात को झूलती है वो, दिन में तो शर्म से जाती नहीं, मैं रात में सब निकल के झूलती।
0: हाँ सो हमारे मतलब हमारे यहाँ पर भी काफी टाइम जी
1: हरियाली थी हुआ और ये सावन के महीने रात में खूब झूलती है।
0: हाँ जी हाँ जी सर, सही कह रहे हैं आप। हमारी सोसाइटी में भी ऐसा हुआ करता था, लाइक शाम के समय सारी लेडीज फ्री हो जाती थी, तो वो सब लोग डिसाइड करते थे कि ठीक है शाम को वहाँ मिलना, झूलने आएंगे सब लोग, तो मिलकर सब झूला झूलती थी, सावन के गीत गाती थी।
1: और अपनी रस्सी का तो छोटा झूला रही नीम की पेड़ पे ऐसे चबूतरे में डाल देते थे, उसे एक पटा लगा के बैठ जाते थे, यानी खूब मना देते बैठने का।
0: हाँ जी सही कह रहे हैं आप सर। जी तो आप बताइएगा, सावन कितनी प्यारी प्यारी बातें आपने की हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
1: आई मिलन की रात, मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल। सावन का महीना आया है घटा से, वर्षा है पानी रे माइया।
0: ठीक है सर, ये प्यारा सा गीत आपको सुनवा देते हैं। धन्यवाद अशोक जी, आपने हमें कॉल किया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं अशोक सिंह जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक, सावन का महीना आया है। और अब सावन का पावन महीना तो शुरू हो चुका है, आप सभी को अगेन सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और दोस्तों, अभी आपने एक प्यारा सा ट्रैक सुना। सावन का महीना और सावन के महीने में चारों ओर कितनी हरियाली होती है ना दोस्तों। तो सावन के जो ये मंथ चल रहा है, अभी मानसून स्टार्ट हुआ है, आप इसमें ना तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। ये जो महीना होता है ना, ये जो मंथ है, मानसून अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा है पेड़ पौधों के लिए स्पेशली। तो आप लगा सकते हैं जो भी आपका फेवरेट ट्री है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अलीशा।
0: अलीशा, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइएगा कहाँ से हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हो। बताइए अलीशा, क्या करते हैं आप? ओके। और बैकग्राउंड में अभी म्यूजिक रेडियो चल ही रहा है आपके, राइट?
1: जी मैम।
0: ओके, बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं अलीशा आप?
1: मैं अपनी बेस्टी के लिए गाना सुनना चाहती।
0: ओके, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गाना सुनना चाहती है। बताइए कौन सा ट्रैक है जो आपकी बेस्टी को डेडिकेट कर रहे हैं आप?
1: मैं यार,
0: तेरा यार हूँ मैं।
1: जी।
0: ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: ओके।
0: तो चलिए एवरीवन, बाय, टेक केयर। अलीशा की पसंद पर सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक तेरा यार हूँ मैं। अमेजिंग गाना है यार, फ्रॉम द मूवी सोनू की टीटू की स्वीटी का ये गाना है। अरिजीत सिंह जी की बहुत प्यारी सी आवाज में ये गाना है। तो सुनते हैं सब मिलकर। एंड आप भी ट्राई कीजिए एवरीवन कि आपका कॉल भी जल्दी से लग जाए। उसके लिए नंबर तो मैं बता देती हूँ। ओ हो, भूल ही नहीं हूँ मैं, याद रखती हूँ नंबर यार। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 9837896896। अच्छा, मैं हिंदी में बता देती हूँ, 98-378-96-896। अब तो आपने डायल कर ही लिया होगा ना। चलो जल्दी से फोन लगाओ और फिलहाल ये गाना सुनो।

हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी. एवरीवन, अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना. अरिजीत सिंह जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली जी और लिरिक्स थे कुमार जी के.

0: दोस्तों, दोस्ती में रोज बात होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जब भी बात हो वही पुराना अपनापन महसूस हो। ऐसे दोस्तों को कभी मत खोइएगा, ठीक है एवरीवन? हैप्पी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। यस दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं रामपुर से अयूब अली बात कर रहा हूँ।
0: रामपुर से अयूब अली जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं आप सर?
1: बस बढ़िया, खुशी आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, खुशी तो हमेशा खुश रहती है। बाकी आप बताइएगा कैसा मौसम है रामपुर का?
1: बारिश हो रही है हमारे।
0: अच्छा, बारिश हो रही है आपके यहाँ पर? अरे वाह, तो बताइएगा इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
1: सुना है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बागा।
0: ओके ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये गीत आपको। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, अयूब जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। देखिए, हम तो आपसे कह रहे हैं कि जल्दी से कॉल लगा लो, आप ये कितना आलस कर रहे हैं। हाँ, अब आलस को छोड़ो, जल्दी से कॉल लगाओ। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप परेशान मत होइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 9837896896। मुझे पता है कि बहुत सारे श्रोता ना इस समय नंबर लगाने में व्यस्त हैं और कुछ अभी सोच रहे हैं कि अभी तो हमने मंडे को कॉल किया था तो मैम को आज कॉल करें या ना करें, दिल है कि मानता नहीं। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको अपने दिल को थोड़ा सा तो मनाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं नेक्स्ट वीक ही कॉल करें, ताकि और न्यू श्रोताओं को भी, न्यू लिसनर्स को भी चांस मिल जाए, वो भी अपना फेवरेट गाना सुन लें। तो सबको मौका मिलना चाहिए ना एवरीवन। अभी फिलहाल ये गाना सुनो, मैं बहुत बातों की लड़की हूँ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती है दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।

0: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
0: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

दोस्तों अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, फ्रॉम द मूवी फूल और कांटे से प्यारा सा गाना कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत प्यारी सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी और लिरिक्स थे रानी मलिक जी के। और दोस्तों आप भी मुझे इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपना कोई पसंद का गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी से कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। जब तक आप हमें कॉल करते हैं तब तक हम आपको एक प्यारा सा ट्रैक सुनवाते हैं। आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है तो मैंने सोचा चलिए हमारे इतने प्यारे प्यारे से श्रोता हैं तो उनके लिए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तो चलिए ये आप सभी को हम डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या हमारे दोस्तों, इतना प्यारा ट्रैक आपने सुन लिया है, अब तो आपको भी अपने दोस्तों की याद आ ही गई होगी। हाँ, जो दूर रहते हैं, कोई स्टडी की वजह से तो कोई करियर की वजह से, लेकिन दोस्तों आप कितने भी दूर रहें एक दूसरे से, रिश्ता जो होता है ना वो दिल से बनता है, और फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी दूर रहते हैं। आजकल तो इतना अच्छा हमारे पास माध्यम है मोबाइल। जी हाँ, हमारी चाहे दोस्त इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी जाकर हम कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और ये प्यारा सा ट्रैक अभी आपने सुना, दोस्ती, जो 2005 में आई थी, सन 2005 में आई थी। इस खूबसूरत गाने को गाया था उदित नारायण जी, साथ में सोनू निगम जी ने, लिरिक्स थे समीर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी। उनका म्यूजिक कितना खूबसूरत है ना एवरीवन। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार,
1: बोलिए।
0: अपना नाम तो बताइए।
1: ब्रजेश कुमार है।
0: हमको पता है आप ब्रजेश कुमार हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी तो बताइएगा सर।
1: जी
0: जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जौनपुर जिला से।
0: और बताइए कैसे चल रही है आपकी शॉप?
1: बढ़िया चल रही है मैम।
0: अच्छा, तो टाइम वाइम मिल जाता है खाना खाने का या नहीं मिलता है?
1: नहीं, खाना तो दोपहर 1 बजे तक खा लेते हैं, 12-1 बजे, 12 बजे तक कन्फर्म खा लेते हैं।
0: अच्छा, 12 बजे आपका लंच कम्प्लीट हो जाता है। और
1: उसके बाद 1 घंटा आराम करते हैं, तब उसके बाद आते हैं।
0: अच्छी बात है सर, काम के साथ साथ अपने बॉडी को भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हम तो सिर्फ राज का वो नया गाना सुनना चाहते हैं।
0: नहीं, हम आपको सुनवाएंगे आपका जो आपने बोला था ना हमको, मन के सवरिया बन गए।
1: हाँ,
0: तो यही वाला सुनवाते हैं आपको फिर, ठीक है?
1: सुनवाइए, वो भी मीठा गाना है।
0: हाँ जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए एवरीवन, सर की पसंद का सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उदित नारायण जी की आवाज, साथ में कल्पना जी भी दे रही है साथ, और संगीत है राजेश रजनीश जी का। एंड इस प्यारे से गाने को सुनते हैं, फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद सुनेंगे प्यारा सा ये ट्रैक। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
6: मुरादाबाद से
4: संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।

0: क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना अभी उदित नारायण जी की, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ और साथ में मैम भी दे रही थी साथ। कुछ गाने बड़े खूबसूरत होते हैं ना, कल्पना जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा गाना। और दोस्तों सावन की पहली फुहार जब धरती को छू जाती है ना, हर सुखी मतलब उम्मीद फिर से मुस्कुराने लग जाती है। ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि ये दिलों में नई उम्मीद के फूलों को भी खिला देती है। और रिमझिम बारिश हो रही है अभी बाहर, मैं बाहर का वेदर चेक करके आई हूँ। मैंने कहा चलो जरा बाहर भी देख लेते हैं कैसा मौसम है, तो देखा रिमझिम जोरों से बारिश हो रही है। और अपने कॉलर से बात कर लेते हैं अभी, क्या उनका नाम है जानते हैं उन्हीं से। हेलो फरमाइश मैम, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा फ़ोन के करीब आ जाइएगा।
1: गुड इवनिंग,
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हाल है आपके बताइएगा।
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, क्या नाम है आपका।
1: रूबी कुंदरकी से बात कर रही
0: हूँ। रूबी जी कुंदरकी से बात कर रही हैं, बताइए रूबी मैम, आपने तो बारिश करवा दी है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर का। हाँ
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, राइट, बताइएगा रूबी जी आपके परिवार में सब ठीक है। ओके बताइएगा आज कौन सी फरमाइश है आपकी, क्या सुनना चाहते हो आज आप। हेलो,
1: सोनू निगम जी के बात कर रहे थे, उन्हीं की फिल्म से पास आप हमारे होते मूवी का नाम।
0: ठीक है मैम, सुनवा देते हैं प्यारा गाना। थैंक यू रूबी जी कॉल करने के लिए, रूबी मैम दिल से शुक्रिया। एंड आपकी वॉइस क्लियर तो प्रॉपर ठीक से नहीं आ रही थी क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में नेटवर्क का इशू भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैम की पसंद का सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, आज सोनू निगम जी का बर्थडे है और उनकी मखमली आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। बस मैं आती हूँ अभी, आप कहीं मचाइए, यूँ ही मुस्कराइएगा और इस मौसम का लुत्फ़ उठाइए, कॉल लगाइए, अपना सुहाना सा कोई इस सुहाने से मौसम में गाना सुनिएगा।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सोनू निगम जी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। अगर आप भी चाहते हैं इस शो में पार्टिसिपेट करना, अपना फेवरेट कोई भी ट्रैक सुनना बारिश के मौसम में, तो कॉल लगा सकते हैं आप। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। और कुछ गाने जो ऐसे होते हैं ना, मतलब सीधा वो दिल को टच कर जाते हैं। हाँ, लगता है कि उसको दोबारा फिर से सुनना चाहिए, पर रेडियो पर एक बार जो प्ले हो जाता है वो दोबारा से चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चलो अभी फिलहाल अपनी मैम से बात करते हैं, कौन हमारे साथ जुड़ी है, हमारी डियर लिसनर्स। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाई, जय श्री राम खुशी जी।
0: आपको भी जय श्री राम मैम, क्या नाम है आपका?
1: सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लिसनरों को भी, सुनने वालों को, आपको भी।
0: थैंक यू मैम, आपको भी सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने मीठा आप बोल रही हैं, अपना नाम तो बता दीजिएगा। नीतू जी लाइन पार से बात कर रही हैं। बताइए नीतू मैम, बारिश करवा दी है हमने, कैसा लग रहा है?
1: हाँ, बारिश करवा दिया आपने, अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है ना, सुहाना सा मौसम हो गया है, खूबसूरत
1: हो गया है। सावन का पहला दिन है,
0: सावन की पहली बारिश, या सावन की पहली बारिश में नहाना बहुत शुभ माना जाता है मैम, पता है आपको?
1: अच्छा,
0: मेरे को भी मालूम हुआ था कि सावन के पहले दिन जो बारिश आती है उसमें जब नहाते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। तो बताइएगा आज आप क्या सुनेंगी मैम, इतना प्यारा सा मौसम है। ओहो हो, क्या बात है भाई, बड़ा प्यारा गाना चुना है आपने मैम। अच्छा, हमारी बातें सुनकर। ओके, अभी तो आपने देखा नहीं है बट हाँ बातें सुनी है हमारी, है ना?
1: बातें सुनी है।
0: ओके, तो चलिए सुनवाते हैं गाना आपको।
1: क्या बोला मैम?
0: मैंने कहा आपको ये गाना सुनवा देते हैं। ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए मैम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक मैम की पसंद का। एंड अभी अगर सुनना चाहते हैं कोई गाना तो कॉल लगा सकते हैं। और ये गाना आप सुनने वाले हैं हेलो ब्रदर से, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, सभी का फेवरेट भी है, तो चलो सुनते हैं।

0: हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और अभी आपने ये ट्रैक सुना हेलो ब्रदर से, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, आदाब।
0: आपको भी आदाब सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला रामपुर से मोहम्मद ताली आपसे बात कर रहा हूँ। मैं
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं ही अपनी सुनाइए। आपके और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, सभी बहुत ही अच्छे हैं सर। आप बताइएगा, रामपुर में बारिश हो रही है ना?
1: ना मैम, इधर तो बारिश नहीं हुई आज।
0: आज हुई नहीं है बारिश?
1: जी जी, आज नहीं हुई बारिश। आज बारिश की छुट्टी है आज मैम।
0: अच्छा, आज वो मुरादाबाद में बिजी है।
1: अच्छा अच्छा, आज आपके तरफ हो रही होगी, इधर नहीं हो रही मैम।
0: अच्छा ओके सर, बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: एक फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।
0: हाँ जी,
1: सावन का महीना के ऊपर ही गाना है।
0: सावन के महीना मतलब? अभी तो एक ट्रैक हमने प्ले किया था पहले सर।
1: नहीं नहीं, वो वाला सॉन्ग समझ में नहीं आ रही, ये वाला सुना देना मैम। आई मिलन की रात, सावन का महीना, माहिया बरसा पानी, इसी टाइप तो बोले मैम।
0: सर ये गाना हमने प्ले कर चुके हैं, आपने सुना होगा।
1: अच्छा, आपने प्ले कर दिया।

0: तो सुन सकते हैं कोई भी गाना, उसके लिए आपको कॉल लगाना है, कॉल लगाना मत भूल जाना, मैं बार बार आपको रिमाइंड दिलाती रहती हूँ, याद दिलाती रहती हूँ ताकि आप भूले नहीं और मुझे कॉल लगा ले। तो कॉल लगाइएगा ना, नंबर है 9837898968। आप अगर ऑन द वे कार में हैं तो स्लोली गाड़ी चलाइएगा और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि देर से सही लेकिन आराम से घर पहुँचिएगा, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी हमारी लापरवाही ना पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो इसीलिए सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए, मुस्कुराइए और इस ब्यूटीफुल कार्यक्रम का आनंद लेते रहिएगा।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: देखिए दोस्तों, म्यूजिकल ब्रेक के बाद तो हम भी वापस आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना निगाहें मूवी का, मोहम्मद अजीज जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो बेटा, बेटा खुशी बेटा, प्यार से प्यार भाई, सत श्री अकाल भाई।
0: आपको भी सत श्री अकाल जी, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: ठीक ठाक बेटा। बेटा अपने आकाशवाणी रेडियो मुरादाबाद से बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल दिन भाई।
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। जी दसो आपको कौन सा गीत सुना है आज?
1: आज बेटा पहला बेटा मैं पिक्चर दे दे दे दे दूंगा ना, मैं भूल गया।
0: वो जरूरी है बताइए।
1: मैं भूल गया बेटा, सॉरी बेटा। बेटा मैं कोई नहीं बेटा कोई नहीं, मैं पिंड माउड़ खुर्द जिला बठिंडा पंजाब तो बेटा दीजीत मट्टू बोलना भाई।
0: जी बताइएगा, पंजाब में कैसा वेदर है अभी, मौसम कैसा है?
1: मौसम बेटा गर्मी ज्यादा है, बारिश अभी हो नहीं रही।
0: उसे बारिश नहीं हो रही है?
1: नहीं बेटा, हुई है एक हफ्ता पहले आई थी, अब नहीं आई बेटा, बच्चे लोग जरूर होते हैं।
0: ओके कोई बात नहीं, बारिश भी आएगी, इंतजार कीजिएगा।
1: छोटे मुरादाबाद है तो छोटे के में मौसम
0: इतने तो बारिश होती है।
1: चल बेटा साढ़े पंजाब भेज थोड़ी जी, ठीक है ना?
0: हाँ जी हाँ जी, भेज देते हैं। वाहेगुरु जी से कहते हैं ना उनको, कहते हैं कि जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो वाहेगुरु जी जल्दी सुनते हैं।
1: क्या बात है बेटा, सही बात है बेटा, जो माँ बेटा के अपने सोई सोई देवा बात करें।
0: हाँ जी बताइएगा, आप कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गीत बेटा एक ना पुरानी फिल्म है तो हैगी
0: मोम की गुड़िया।
1: मोम की गुड़िया, हाँ जी बेटा, वो गीत आनंद बाखी साहब ने लिखा
0: है,
1: गाया भी आनंद बाखी साहब, उसे भैन दत्ता जी ने गुनगुना कर बताऊ बेटा।
0: हाँ जी हाँ जी, गुनगुनाइए
1: थोड़ा जब।
0: हाँ हाँ।
1: बागो बागो में बहार आई, बागो में बहार आई, हो तो मुस्कान आई, आजा आजा आजा।
0: ओके बहुत ही प्यारा आपने गाया है और ये गीत आपको सुनवा देते हैं सर, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: हाँ मेरे ना बेटा एक यार जो मेरे बड़े भाई है धर्मपाल जी और स्वामी जी, उन्होंने भी सुनवाई था बेटा तू गीत चंगा।
0: ठीक है सर, आपको भी सत श्री अकाल जी, और सुनिएगा ये बढ़िया सा सॉन्ग अपने फ्रेंड नाल एंड अपने ब्रांड नाल। तो चलिए देखिए, बड़े वीर जी के नाल जब गाने सुनते हैं ना बैठ के तो बड़ा ही सोना लगता है। तुसी भी अपनी फैमिली नाल बैठे हो ऐसी तो मैंने पता है जी। चलो ये गाना सुनो सोना सा।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने बहुत ही प्यारा से ट्रैक सुना. और अभी हमारे पास कॉल आया था नौशिंद्र सिंह जी का, जो कि विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं. और उनकी एक पहले से गाने की रिक्वेस्ट है, जब चली जब उठी काली घटा, जब चली ठंडी हवा जब उठी काली घटा. बहुत ही प्यारा से गाना है आशा ताई जी की आवाज़ में. तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सर की पसंद का. और एवरीवन, आप भी मुझे कॉल लगाइएगा. मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896. आप भी जल्दी से कॉल लगाइएगा, मुझे इंतज़ार है. वक्त मैं आपको बता देती हूँ, 4:41 हो गए हैं. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी. बड़ी खुशी होती है ना दोस्तों, जब रेडियो पर ऑन एयर हमारी बातचीत होती है, हमारा फेवरेट गाना प्ले हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बस पूछिए मत, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं वो खुशी. और आपके दिल का हाल तो हम जानते हैं कि आप कितना खुश हैं इस समय. चलिए सुनिएगा ये गाना.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स, वेलकम है आपका एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा से गाना सुना, जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, और इतना प्यारा सा मौसम है बाहर का, सुहाना सा, बारिश भी हो रही है। और वक्त मैं बता देती हूँ, 4:47 हो गए हैं। और ये प्यारा से गाना अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी दो बदन, जो 1966 में आई थी। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, आदाब।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं शाबरीन बात कर रही हूँ मलक से।
0: शाबरीन जी मलक से जुड़ी हैं, कैसी हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हो?
0: हाँ जी, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। आप बताइएगा क्या कर रहे हैं?
1: मैम कुछ नहीं, बस हेलो फरमाइश सुन रहे थे। मैम मेरी बहन रेडवर के बिल्कुल पास में बैठी है, वो कह रही है तेरी आवाज नहीं लग रही रेडियो में।
0: अच्छा ओके, बताइएगा आप कैसा मौसम है अभी बाहर का आपकी साइड का?
1: मैम मौसम का तो जवाब नहीं, लाजवाब मौसम हो रहा।
0: अच्छा लाजवाब है यार ये बात, तो बताइएगा इस लाजवाब मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं आज?
1: मैम अभी तो मोहब्बत का आगाज है।
0: ओके, आपके पीछे बैकग्राउंड में कुछ बोल रही है शायद आपकी बहनी।
1: मैम मेरी अम्मी है, अब्बू है, चार बहनें हैं।
0: अच्छा अच्छा ओके, सब कैसे हैं फैमिली में आपकी?
1: मैम बहुत साल में हेलो फरमाइश सुन रहे हैं, आप काम करेंगे?
0: अच्छा अच्छा

0: चलिए
1: सुबह से बहुत गर्मी थी, अभी बहुत इतनी अच्छी काली घट आकर बारिश होकर अब बहुत सुहावना मौसम हो गया।
0: अच्छा अब सुकून मिल गया है ना, गर्मी से राहत मिल गई है
1: मैम। जी मैम बहुत अच्छा मौसम, वैसे भी हमें तो बारिश की जरूरत है 2 महीने तक।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल,
1: हमारे धान भी तो हमें।
0: हाँ जी हाँ जी, उसके लिए तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
1: जी मैम मैं आपसे काफी टाइम से कांटेक्ट करना सोच रही थी, मैम कॉल लग नहीं पा रही इस टाइम।
0: ओके, लेकिन आज लग गई ये कॉल, कैसे लग रही है आपको शबरी?
1: मैम जाहिर सी बात है आपसे बात करके तो अच्छा ही लगता है, जिसको मतलब जिसको किसी से बोलना पसंद ना भी होगा ना उसको भी आपसे बोलकर अच्छा ही लगता होगा।
0: ओहो ये मुझे पता नहीं था, थैंक यू बताने के लिए यार।
1: मैम आपकी आवाज इतनी,
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत दिल से इतनी मोहब्बत के लिए, इतनी तारीफों के लिए भी। तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको, बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए शाबरीन की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, नाम भी बड़ा प्यारा है ना शाबरीन। तो सुनते हैं दोस्तों ये प्यारा सा ट्रैक, एंड आप भी कॉल लगा सकते हैं, अभी मौका है आपके पास। मोबाइल नंबर है हमारा 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। बहुत सारे श्रोता बोलते हैं कि मैम आपका नाम हमें नहीं मालूम है, तो इसीलिए बीच बीच में अपना नाम भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है।

हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। अभी ये प्यारा सा ट्रैक आपने सुना अलका याग्निक जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज फ्रॉम द मूवी हम हो गए हैं आपकी। लिरिक्स थे समीर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्वण जी, नदीम सेफी एंड साथ में नदीम शर्वण जी भी हैं और काफी प्यारा गाना था ना दोस्तों। और वक्त हो गया है 4:56। उम्मीद है आपकी शाम थोड़ी सी और ब्यूटीफुल बन गई होगी। जो इस वक्त अभी ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं आराम से ड्राइविंग कीजिएगा और घर पहुंचकर अपनों के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताइए। मैं अब आपकी अपनी आरजी खुशी आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन, कीप शाइन, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी रिवॉर्ड है। एंड फिर मुलाकात होगी इसी प्यारे से रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, देखिए सावन का इतना प्यारा सा दिन है ना, स्टार्ट हो चुका है आज से सावन और एक प्यारा सा गाना तो बनता है ना, तो ये गाना मैं आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज़ में, प्यारा गाना सुनिएगा।

0: अपने कार्यक्रम का फीडबैक yuvavani@gmail.com पर भेजना ना भूलिएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFEM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और

सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटकों से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन लीग ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई है। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। नीरज पांचवें, रोहित और यशवीर नौवें और दसवें स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मौसम भी बड़ा ही औसम है जी, यानी कि ठंडी ठंडी हवाओं के साथ रिम झिम बारिश, आए हाय क्या बात है जी, मजा ही आ जाती है जब ऐसे ऐसे मौसम होते हैं ना। इवनिंग मस्ती शो में आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 5:09 हो चुके हैं। सावन का पहला दिन, आसमान से बरसती फुहारे, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और हर तरफ गूंजता एक ही जयकारा, बोल बम हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन में श्रद्धालु कावर लेकर क्यों निकलते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको। अरे आरजू रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं, तो बस ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि सावन के महीने में ही कांवड़ लेकर क्यों जाते हैं। अभी तो मैं आप सभी के साथ 2 घंटे रहने वाली हूँ, यानी कि 7 बजे तक ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, और आज का स्पेशल डे, देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वेदर अपडेट, यानी कि सुबह का मौसम देख कर लग नहीं रहा था कि आज रिम झिम बारिश आ जाएगी, लेकिन ये जो मौसम है ना, सावन वाला जो महीना होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता कब धूप निकलती है, कब मौसम सुहाने हो जाते हैं, कब ठंडी हवाएं चलने लग जाती, कब बारिश आ जाती, इसमें आपको सतर्क रहना है। और देखिए आज सावन का पहला दिन है और इंद्रदेव प्रसन्न ना हो, उनके स्वागत में वो धरती पर प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सावन का महीना और इंद्रदेव उनका स्वागत ना करे, इम्पॉसिबल जी। सो आज से यानी कि सावन की शुरुआत हो गई है श्रोताओं, तो बस इस महीने में, इस पावन महीने में कहते हैं जो आप सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिस भी मनोकामना से आप करते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, कोई भी मनोकामना मांगने से पहले अपने मन में नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा। अगर आपने वो चीज़ पहले ही सोच ली तो डेफिनेटली वो काम नहीं होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखिए अपने आप को, जितना पॉजिटिव रखेंगे आपके सारे काम अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज सावन का शुरुआत हो गया है, तो एक गाना सुनते हैं भोले बाबा के और इसके बाद कनेक्ट होते हैं। हाय हाय,

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज फिर हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के बारे में, यानी EKCC की। अब नाम सुनकर घबराइए मत, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए खेती में धान या गन्ना बोना है, बीज खरीदना है, खाद लगानी है या दवाई डालनी है, लेकिन जेब पैसे कम है, ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC आपकी मदद कर सकता है। और EKCC उसी KCC के लिए आवेदन करने का आसान तरीका है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे पहला फायदा, बैंक के कम चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरा, खेत काम के लिए समय पर पैसा मिल सकता है। तीसरा, बीज खाद दवाई सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे काम आसानी से हो जाते हैं। अगर आप गाय भैंस पालते हैं, डेयरी चलाते हैं या मछली पालन करते हैं तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात याद रखिए, KCC से मिला पैसा शादी, मोबाइल, बाइक या दूसरे घरेलू खर्चे में मत लगाइए। यह पैसा खेती और उससे जुड़ी कामों के लिए ही है। और सबसे जरूरी बात, समय पर बैंक का पैसा वापस कर दीजिए, इससे आगे भी जरूरत पड़ने पर ऋण मिलने में आसानी रहती है और ब्याज में भी लाभ मिल सकता है। तो किसान भाइयों और बहनों, सही जानकारी लीजिए, सोच समझ कर आवेदन कीजिए और EKCC का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि मजबूत किसान तो मजबूत खेती, और मजबूत खेती तो खुशहाल परिवार।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और बारिश शायर बारिश के गाने ना हो, बिल्कुल मजा नहीं आता ना, है ना। और समय की बात करो इवनिंग मस्ती शो में, तो समय हो चुका है 5:21। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि आखिरकार सावन के महीने में ही कावड़ क्यों लेकर जाया जाता है, तो चलिए जानते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विश्व पी लिया था, तब उन्हें शीतलता देने के लिए देवताओं ने पवित्र जल अर्पित किया। उनकी आस्था को आगे बढ़ाते हुए आज भी शिव भक्त गंगा, यमुना और पवित्र नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि सावन में सच्चे मन से किया गया जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है और वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी बारिश की फुहारें पड़ रही हैं तो ये मौसम का आनंद लीजिए और दिल से बोलिए भोले बाबा का नाम लीजिए, हर हर महादेव। और देखिए कांवड़ की जो शुरुआत है आज से शुरू हो गई है, सो बहुत से सुविधाएं आप सभी के लिए अवेलेबल की गई है। और बात करूं अगर मैं हरी के द्वार यानी कि हरिद्वार, तो वहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ भी यानी कि आज से ही छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं बच्चों की। 13 से 14 तारीख तक छुट्टियाँ रहेंगी उनकी, जब तक ये कांवड़ यात्रा रहेगा तब तक उनकी छुट्टियाँ रहेंगी ताकि किसी प्रकार से उनको कोई भी परेशानी ना हो। और ये कहा जा रहा है अब की बार के जलाभिषेक के समय ना, यानी कि पहले देखा होगा कि आपने एक दूसरे के ऊपर ऐसे जल चढ़ा देते हैं, इतनी भीड़ रहती है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से बेटर किया गया है ताकि आप आसानी से जलाभिषेक कर सके। क्योंकि इतने दूर से हम जल लेकर आते हैं और मौका अच्छे से मिलना चाहिए भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए अगर आप कांवड़ लेने जा रहे हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बस याद रखना है आपने कि हमें भगवान ये नहीं कहते कि भाई जल भरो और मेरे पर जलाभिषेक करो, वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप अपने सच्चे दिल से भाव से अगर उनको जल अर्पित करा

और कभी ये मत सोचिए कल कर लेंगे, अरे कल कभी नहीं आता यार, जो शुरू करना है आज से करो, पॉजिटिव माइंड के साथ करो। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, सावन का महीना आज पहला दिन और गाना ना हो, आए है बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं। जो कि ये गाना मेरा बहुत बेहद फेवरेट वाला है और आई होप कि आपका भी ये गाना फेवरेट वाला होगा, तो आप मुझे मैसेज करके डेफिनेटली बता सकते हो। नंबर है 9823789896 और आप चाहे ट्रैफिक में हो या फिर घर पर आप रेडियो सुन रहे हो, वॉट एवर आप कहीं से भी सुन रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाइए और मैसेज ज़रूर करिए जी। चलिए जी,

0: के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
7: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
8: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 5:00 यानी कि 33 मिनट हो चुके हैं। और वेदर की बात कर लेते हैं। देखिए, वेदर की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावन का महीना है और आज है 30 जुलाई, यानी कि एक दिन बाद ये जुलाई का महीना है वो ख़त्म हो जाएगा, अगस्त शुरू हो जाएगा। और अगस्त से ना बहुत सी चीज़ें हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वेदर अपडेट यानी कि मौसम भी अपना रुख बदलने वाली है, इनफैक्ट बदल ही रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक, यानी कि यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, कोंकण पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ आंधी तूफान यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में बताया जा रहा है, बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है जगह जगह पर। इस समय आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, खुले एरिया में जाने से बचे जितना हो सके। जब आपको लगता है कि वेदर यानी कि मौसम खराब हो रहा है तो आप सुरक्षित जगह पर जाइए, मतलब आपको खुले एरिया में उस टाइम नहीं रहना है कि जब आंधी तूफान चले तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि बच जाना चाहिए हमें खुले एरिया में जाने से। और अपने साथ देखिए, अब जो मानसून का महीना है वो शुरू हो गया है, तो अब बाहर जा रहे हैं घर से तो अपने साथ रेनकोट और छाता तो जरूर रखिए। देखिए, अब छाता लटका कर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, रेनकोट तो आप उसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और आप जा सकते हैं, जिससे आप भीगेंगे नहीं, सुरक्षित आप अपने घर आएंगे। और साथ ही साथ आपने ज़्यादा देर तक गीले कपड़ों में नहीं रहना है। अगर आप ज़्यादा देर तक गीले कपड़ों में रहते हैं तो एक तो बॉडी में इचिंग होनी शुरू हो जाएगी आपको, साथ ही साथ जुखाम खांसी होएगा, वो तो अलग ही बात है। इसीलिए अगर आप गीले हो भी जाते हैं, आप बाहर समय नहीं पहुँच पा रहे, घर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप अच्छी जगह यानी कि जहाँ पे आप रुक सकते हैं, रुकिए, बारिश ख़त्म होने के बाद जाइए, या फिर आप गीले भी हो गए तो कोशिश करिए कि आप जल्दी घर पहुँचे और कपड़ा चेंज कर ले। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि ऑफिस के लिए हम जा रहे हैं और सुबह सुबह बारिश आ गई, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, तो हम कैसे करें। बारिश के मौसम में आप एक्स्ट्रा कपड़ा अपने साथ लेकर जाइए, अपने बैग में रख कर जाइए, कोई आपका बैग चेक करने नहीं आएगा, इसीलिए अपने बैग में ज़रूर रखिए, और ताकि आप भीग भी जाते हैं तो चेंज कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए, आप बारिश से बच जाएंगे और जो तबीयत ख़राब होने वाली है उससे भी आप बच रहेंगे, सेफ रहेंगे। और सावन का महीना है तो आज तो पहला दिन है भैया, मज़ा ही मज़ा आ रहा है, यानी कि जो वेदर है देख कर आए है, सुहाना मौसम हो गया है, लग नहीं रहा था कि आज बारिश आ जाएगी लेकिन एकदम आई। तो 31 जुलाई से लेकर यानी कि 4 अगस्त तक भी बारिश की पूरी पूरी संभावना है श्रोताओं, तो इस टाइम ध्यान रखिए। फिलहाल अगला गाना सुनेंगे, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कितनी नहीं जाना, जो रेडियो की सुई है ना वो बिल्कुल भी नहीं घुमानी है आपने, कनेक्ट करके रहना है आरजे रीना के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत गाना, वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे पता है कि आपका भी ये फेवरेट वाला गाना है। चलिए, 90s के जो गाने होते हैं ना भाई साहब, बड़े ही धमाल, बड़े ही कमाल वाले होते होती हैं। इनफैक्ट आज मैं 90s के गाने क्यों सुना रही हूँ आपको, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। जब मौसम अच्छा होता है ना तो 90s के अगर आप गाने सुनते हो तो और भी जो आपका मूड है वो रिफ्रेश हो जाता है, और भी अच्छी अच्छी सोच आपके अंदर आती है।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम?
5: अरे भाई, अगर कोई बोले चलो शहर 2 दिन में लाखों कमा लेंगे, रहने खाने का भी फ्री इंतजाम है, तो जरा रुकिए, कहीं ये ऑफर इतना ऑफर ना हो जाए कि वापस आने का रास्ता ही भूल जाए आप। हाय, दिस साइड आर्जेरीना, एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:48 हो चुके हैं, और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज है 31 जुलाई, और आज मनाया जाता है मानव तरक्की के खिलाफ विश्व दिवस। बस इतनी सी बात कहना चाहूंगी श्रोताओं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। मानव तरक्की यानी किसी इंसान को धोखे, लालच या जबरदस्ती से गलत कामों में फंसाना, ये नौकरी नहीं होती। नौकरी, शादी या विदेश भेजने जैसे बड़े वादों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, परिवार से बात कीजिए, दस्तावेज जरूर जांचिए, और याद रखिए, सपने पूरे कीजिए लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। और मुझे लगता है कि सही फैसला लिया गया आपके लिए, आपके जिंदगी के लिए बहुत बेटर होगा। कभी कभी हम ना लालच में आ जाते हैं कि यार पैसे तो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि बहुत से ऐसे होंगे कि इस धोखाधड़ी में फंस भी गए होंगे, उनसे ये बोला गया होगा कि अरे भाई चल विदेश चलते हैं, वहाँ पे विदेश या कहीं पे भी मैं तेरे को नौकरी दिला दूंगी, लेकिन उससे पहले ना तुझे इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको नौकरी मिल सकेगी। लेकिन यहाँ पर शख्स आप यानी कि स्कैमर के कनेक्ट में आ रहे हो, यानी कि आपको फंसाया जा रहा है। तो इसीलिए समझदारी के साथ आपने काम लेना है। अगर कोई आपको सामने से आके ऐसा बोल रहा है कि मैं तेरे को इतना पैसा दिला दूंगा नौकरी के लिए, ये वो,

तो उसको बोलो पहले तू अप्लाई कर फिर मैं करूँगा। तब देखना आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है आपका। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी माहौल के साथ एक बहुत ही शानदार गाना सुनते हैं और अपने सफ़र को बनाते हैं और भी आसान, ज़बरदस्त। आई नो, मुझे पता है कि आप ट्रैफिक में हैं और घर के लिए रवाना हो चुके ऑफिस से, तो आपने क्या करना, अपना फ़ोन उठाना है और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9837896896, ताकि उस रूट से जो भी जाने वाले हैं ट्रैफिक में, भीड़ में फंसने से बच सके। चलिए जी, गाना सुनते हैं, बात ही फैंटास्टिक वाला।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और अब देखिए हमारा टाइम हो गया है, यानी कि न्यूज़ का टाइम हो गया है। उसके बाद मैं कनेक्ट होंगी आप सभी के साथ श्रोताओं और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: भारत की रुद्रा सिंह को चार्लेट स्लेज के हाथों 6-11, 4-11 और 8-11 से हार मिली। वहीं अनिका दुबे को लिली बोरेल ने 13-11, 11-8 और 11-6 से हराया। इन दो हार के साथ ही भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। और चलते चलते कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस की बात कर लें, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और वहां पे भारतीय महिला टीम से एक अच्छी खबर मिली है कि मलेशिया को 3-0 से हराकर भारतीय टीम चैंपियन हो गई है। तो ये तो हुई बात कॉमनवेल्थ गेम्स की, और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई और हिम्मत कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस की बात हुई। और फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अतुल को और मेरे साथी हिम्मत को और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
6: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
5: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
7: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
8: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
7: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
5: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34-34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि वेदर यानी कि 4 तारीख तक बहुत ही खराब रहने वाला है। तो अपना ध्यान रखिएगा, समय समय पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और पानी पीना भी देखिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बारिश हो जाती है ना, थोड़ी प्यास कम लगती है तो सोचते हैं कि यार प्यास तो लगी नहीं रही है तो पानी नहीं पियेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पानी टाइम टाइम टू टाइम पीते रहना है। चलिए फिलहाल कुछ मैसेज है उनको भी शामिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। क्या हाल है रीना जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हूँ आप। मुरादाबाद का मौसम भी बहुत ही सुहाना हो रहा है और आप गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। सभी FM मुरादाबाद सुनने वालों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और इनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है आपके ऊपर हमेशा यूं ही बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा है, वो हमेशा बनी रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे पास मैसेज आता है, यानी कि ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं। सावन की हर बूंद कहे एक ही बात, क्या बात है, सावन की हर एक बूंद कहे एक ही बात, भोले बाबा सदा रहे आपके साथ। रीना मैम आपका जीवन महके हर पल, खुशियों से भर जाए हर दिन और हर रात। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, सेम टू यू मैम, आपके भी जिंदगी में भोलेनाथ की कृपा है, यूं यूं ही बरसती रहे। और आगे कहती है ये, गुड इवनिंग, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हैं? गाने बिंदास प्ले कर रही हो। नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहने कि आज सावन की शुरुआत हो चुकी है और सभी सुनने वालों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आपको भी मैम, थैंक यू जी, आपको भी। और इनका कहना है कि आज सोनू निगम जी का बर्थडे है तो हैप्पी वाला बर्थडे, उन्हीं का गाना सुनवाइएगा। अरे बिल्कुल जी, इनके बारे में तो हम बोलने वाले ही थे लेकिन आपने पहले ही बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं जी, हम इनका गाना आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। और मैम चाय पी लीजिए, बिल्कुल आज भिजवा दीजिए, थोड़ा सा बट ओनियन नहीं बोल सकते। इनका कहना है कि मैम बारिश बहुत तेज हुई है। हाँ बिल्कुल जी, सही कहा आपने, बारिश बहुत तेज हुई है क्योंकि घटाएं भी बहुत बहुत बहुत तेज हो रही थी। आज मैं थोड़ा लाउड में नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा सर में, यानी कि सर है वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक्टिव रहूंगा। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो दीपक जी हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका हम इंतजार करते रहते हैं 5 बजे शो का, और जब आप आती है तो क्या ही बताए, छा जाती हैं आप। बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट होना और आपकी बातें बड़ी अटपटी चटपटी होती है जो सुनकर मजा आ जाता है। जो इंसान ना भी हंसना चाहे ना, आपकी बातें सुनकर वो डेफिनेटली हंसेगा। थैंक यू सो मच जी। राहुल जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इनका कहना है कि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, मोहल्ले वाला।

0: Hey, you're tuned to FM Moradabad 89.6 FM.
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:21 हो चुके हैं और बाहर का वेदर है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही औसम वाला हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि रामायण मूवी की जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गई है, तो आप देखना चाहते हैं भैया इसका ट्रेलर, तो आपको आप देख लीजिएगा क्योंकि रीना ने आपको बता दिया है, क्योंकि रामायण मूवी की ट्रेलर है वो आज रिलीज हो गई है और ये मूवी रिलीज होने वाली है दिवाली के मौके पर। सो आपसे देखिए आज मेरा क्वेश्चन होगा कि आपको यानी कि रामानंद सागर की जो रामानंद सागर द्वारा लिखी गई रामायण मूवी वो आपको अच्छी लगती है, या फिर जो और भी बहुत सारे रामायण बने हैं, रामायण मूवीज बनी हैं आपको वो अच्छी लगती है, या रामानंद सागर वाली रामायण अच्छी लगती है आपको, बेस्ट कौन सा लगती है महसूस करके आपने बताने। नंबर है 9837896896 की आपको कौन सी रामायण सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। चलिए जी, मिलते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद, कड़क सवाल लेकर आएंगे आप सभी के बीच। अभी के लिए उड़न छू नहीं जी, गाना उड़न छू करते हैं। और मैसेज की बात करूं तो विक्की सागर जी कनेक्ट हो गई हैं, गुड वाली इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, थोड़ी बारिश नहीं, अब तो बारिश ही बारिश होगी, आप देखते जाइए। फिलहाल आपने बताने महसूस करके आपको कौन सी रामायण अच्छी लगती है, रामानंद सागर वाली रामायण अच्छी लगती है या फिर जो और रामायण बनी है वो वाली आपको बेस्ट लगती है, कौन सी आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है।

हवा हवा ए हवा आए हाय। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है ये श्रोताओं, घट वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूं तो 6:29 हो चुके हैं और आज आपके लिए सवाल नहीं लेकर आई हूं, लेकिन आज आपके लिए म्यूजिक जरूर लेकर आई हूं। यानी कि म्यूजिक आपने सुनना है और बताना है कि ये भजन का नाम आपने बताना है कि कौन सा भजन है ये, बहुत ही शानदार वाला। अगर आप बताते हैं राइट आंसर तो ये गाना डेफिनेटली आपके लिए डेडिकेट करेंगे लास्ट में। फिलहाल तो आपको इसी यही गाना सुनना है जो म्यूजिक मैं प्ले करूंगी, और आपने बताना है कि भजन का नाम बताना है, भोले बाबा का ही है। मैं ये भी बता देती हूँ आपको, अक्सर जब कावर लेकर जाते हैं ना तो ये वाला जो गाना है डेफिनेटली सुना ही जाता है। चलिए

हाँ, सोचिए सोचिए, आखिरकार भजन का नाम आपने बताना है कि आखिरकार जो मैंने प्ले किया है म्यूजिक वो कौन से भजन का है, आपने नाम बताना है। नंबर है 9837896896। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि मैंने म्यूजिक सुना है ना आपको, जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो अगर सुना दिया मैंने आपको तो फिर तो कड़क सवाल यानी कि म्यूजिक कौन सा रह जाएगा। चलिए एक बार और मैं प्ले करती हूँ आप सभी के बीच ये म्यूजिक, और आपने बताना है भजन का नाम।

0: हाय हाय, बड़ा ही फैंटास्टिक वाला भैया भोलेनाथ का ये गाना बहुत ही शानदार वाला है, एकदम फैंटास्टिक वाला है। सोचिए, फिलहाल के लिए अगला गाना भी रेडी है मेरी जान। सो पहले गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: हे, यू आर ट्यून इन टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
0: क्या बात है श्रोताओं, मैसेज आने शुरू हो गए लेकिन राइट आंसर भी आ रहे हैं और थोड़ा मुद्दे से भटकते हुए आंसर भी आ रहे हैं। तो चलिए वंस अगेन बस एक बार और रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा, यानी कि म्यूजिक सुनकर ही आप समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये गाना कौन सा है।

क्या बात है जी, शानदार आपने गाना एंजॉय किया है कमली कमली ओए होए। सो चलिए और अगले मैसेज यानी कि आगे बढ़ते हैं अपने शो में। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:37 हो चुके हैं और एक बहुत ही शानदार यानी कि कहते हैं श्रवण कुमार सिर्फ इतिहास में थे, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो उनकी कहानी को अपने कर्मों से जिंदा रखते हैं। आज के दौर में जहां कई लोग अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वहीं मेरठ की एक बहू ने अपनी सास को कंधे पर पालकी में बैठाकर हरिद्वार से गंगा जल लाकर कांवड़ यात्रा पूरे करेंगी। और सच में ये रिश्ते खून से नहीं होते, यानी कि ये निभाने पड़ते हैं। चाहे खून के रिश्ते हो ना हो, लेकिन आप उसको शिद्दत से निभाते हैं ना, तो भगवान भी आपके कर्मों को जरूर देखते हैं। यानी कि जहां आज के समय वृद्धाश्रम जब छोड़ देते हैं बुजुर्गों को, इन्होंने ठाना कि अपनी सास को पालकी में बैठा के और हरिद्वार लेकर जाएंगी, स्नान करा कर लेकर आएंगी उनको, तो ये बहुत प्रेरणादायक होता है। भोले बाबा भी शायद यही भक्तों पर सबसे ज्यादा कृपया बरसाते होंगे। अगर घर के बड़े खुश हैं तो समझिए भगवान भी खुश है। अगर घर के बड़े खुश नहीं है तो भगवान की आप कितने भी पूजा क्यों ना कर लीजिए, चाहे तीर्थ यात्रा आप कितने भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन आप जो चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। जब तक घर के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जब तक कुछ नहीं हो सकता। 23 खूबसूरत सोच को सलाम करते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गाना और उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। फिलहाल आज का कड़क म्यूजिक मैंने आप सभी से पूछ लिया है। आज कड़क सवाल की जगह पर कड़क म्यूजिक है जो आपने सुनना है और आपने बताना है कि भोलेनाथ का गाना है, तो सोच के सुनकर बताना है आपने कि आखिरकार क्या नाम है। चलिए आपको सुनाते हैं। रेडी है श्रोताओं? आप देखिए वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या है। हाय हाय, फैंटास्टिक गाने भैया। बस थोड़ा थोड़ा सोचिए, थोड़ा ज्यादा सोचिए। आपने ये गाना मुझे पता है डेफिनेटली सुना होगा। अगर सुना है आपने तो आपको चुटकियों में आप बता देंगे भैया कि कौन सा भजन है, कौन सा गाना है भोलेनाथ जी का। चलिए वन सेकेंड एक बार सुनाते हैं आपको। ओए हाय, झूम उठे भैया हर जब भी

0: चलिए चलिए चलिए, बस इतना ही इनफ है जी। सोचिए और मैसेज करिए, एक और गाना आप सभी के बीच रेडी है और उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं आप सभी के साथ। देखिए आप सभी के मैसेज भी शामिल करेंगे और एक और कड़क अपडेट के साथ कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। देखिए अर्जेंटीना जब आती है तो कड़क अपडेट तो भाई साहब लेके रही आती है, बिंदास वाला, झकास वाला। चलिए जी,
1: जी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
2: हेलो हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे, है ना। और आरजू रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूं तो 6:45 हो चुके हैं और जर्सी बदलेगी लेकिन तेवर जॉस वही रहेंगे, यानी कि तेवर और जोश वही रहने वाले हैं। आखिरकार जर्सी बदलने वाली है, कौन सी टीम की जर्सी बदलने वाली है, चलिए मैं बताती हूँ। यानी कि अब हॉकी की अब तक आने वाली भारतीय हॉकी टीम को आपने अभी तक नीली जर्सी में देखा होगा, है ना। हर किसी ने नीली जर्सी में देखा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे इंडिया टीम है जो नीली जर्सी में ही खेलते हैं। चाहे हॉकी की बात कर लीजिए, चाहे क्रिकेट की बात कर लीजिए, हर खेल में नीली जर्सी में ही देखते हैं। लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग होने वाला है। हाँ जी, अगले महीने होने वाली है आई यानी कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम आपको नीले जर्सी में नहीं दिखेंगी, वो आपको दिखने वाली है यानी कि भगवा रंग की नई जर्सी में मैदान पर उतरने वाली है। हॉकी इंडिया का कहना है कि यह रंग साहस, बलिदान और जीत का प्रतीक है, तो देखते हैं क्या नई जर्सी टीम इंडिया के लिए नई जीत लेकर आती है या फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन भगवा रंग है, भगवान का रंग होता है ये, और ये रंग बड़ा ही शुभ होता है, इसीलिए अब भारतीय टीम को आप नीली जर्सी में नहीं देखेंगे, यानी कि हॉकी खेलने वाली टीम को आप नीली जर्सी में नहीं देखेंगे बल्कि भगवा कलर के रंग जर्सी में आप उनको देखने वाले हैं। ये अगले महीने से चेंज होने वाला है। चलिए जी, फिलहाल एक म्यूजिक में आप सभी के साथ, यानी कि जो मैंने भजन आपके बीच प्ले किया है, म्यूजिक आपने सुनना था और बताना था कि आखिरकार गाने का राइट नेम क्या है, क्योंकि अगली बारी आपके मैसेज की ही है। तो चलिए सुनते हैं श्रोताओं और आते हैं लौटकर आप सभी के मैसेज शामिल करने के लिए।

क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। साबुन में लग गई आग की दिल। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज शामिल करने का वक्त आ गया है, यानी कि समय आ गया है। समय की अगर मैं बात, 6:51 हो चुके हैं आर्जेरीना के कनेक्टेड श्रोताओं। सो आज का बहुत ही प्यारा कड़क यानी कि म्यूजिक प्ले किया था आपके बीच, जो आपने पहचानना था और नाम बताना था कि आखिरकार इस गाने का, इस भजन का क्या नाम है। वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ।

सो हमारे पास मैसेज आता है, ये कनेक्ट होते हैं रणवीर मुरादाबाद से, रणवीर सिंह जेठालाल, और इनका कहना है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल है। थैंक यू जी। ये टीना कनेक्ट होती है फ्रॉम कुंदनपुर लाइन पर मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि गाने का जो अभी मैंने म्यूजिक प्ले किया है वो है हरिद्वार घुमा देने भोले। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और इनका कहना है कि ओ गणपति की मम्मी एक लोटा भांग पिला देना। थोड़ा सा मुद्दे से आप भटक गए सर। और इनका कहना है कि रामानंद वाली जो रामायण है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ललिता कश्यप जी का कहना है। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने गाना बताया है, नीलकंठ पर जाऊंगी गंगा नहाने। ओके, और अगले मैसेज की बात करूं तो गंगा नहावन आई हूं मैं यहाँ, क्या बात है जी। हरिद्वार मेले में ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और ये राइट आंसर पहुंचाते हैं गौरव टेलर जी, और आप बनते हैं यानी कि शो के विनर, आपने राइट आंसर दिया है। तो चलिए अगले मैसेज को शामिल करते हैं। इनका कहना है कि मैम प्लीज हमारा गाना प्ले कर दीजिए शेकी शेकी, लेकिन शेकी शेकी तो हम तभी प्ले करेंगे सर जब आप राइट आंसर पहुंचाएंगे। ये वाला गाना है श्रोताओ, बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष जी, इनका कहना है कि हम आपके शो में कनेक्ट हैं। और सवाल एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैंने बहुत बार रिपीट करा है मैम। फिलहाल यानी कि आज के शो में विनर बन चुके हैं गौरव टेलर जी।

चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मिली थी यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें। और ये वाला शानदार भजन सुनिए और आप ही एंजॉय करिए। बाय बाय।

चलिए एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का मैसेज आ गया है। इनके दोस्त हैं शैयद शारिक अली जी, गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग सर, और इनका कहना है कि इवनिंग मस्ती शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय जी।

0: हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना माझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ के गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है।
2: सुनो

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में से देसी स्वाद मिला, इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें सारी चीजें सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाय डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू छाया जी।
0: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक

0: एपेक्स में हूँ और साथ ही मैं एपेक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं जीटीबी अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
1: वैसे मैम, अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए, स्तनपान सप्ताह है क्या?
0: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
1: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए?
0: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती।
1: ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
0: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
1: जी,
0: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सबसे भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है, आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम, बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
0: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं?
0: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूता है, दिन में 6 से 8 बार यानी कि 24 घंटे में 6 से 8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
1: जी, अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
0: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती है। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी। इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
1: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
0: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
0: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
1: जी
0: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
1: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
0: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शंस से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
1: जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोट
2: छतों का रूप
1: अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: लगवा रहे हैं आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान का शुभारम्भ करेंगी। दिल्ली नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेहखंड तथा ओखला में प्रतिदिन 800 टन क्षमता के कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। दिल्ली के गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यदि इन मामलों में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उनकी शीघ्र समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस विषय को भविष्य में किसी अतिरिक्त कार्रवाई के बिना समाप्त माना जाएगा। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने इस संबंध में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।
7: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
6: दिल्ली पुलिस ने आज सोशल मीडिया पर फैल रही उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील कर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जंतर मंतर शांतिपूर्ण और अधिकृत प्रदर्शनों के लिए सक्रिय और अधिकृत स्थल बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
8: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये दावे पूरी तरीके से झूठे, भ्रामक और तथ्यों से रहित हैं। पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और अपने द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसके अंतर्गत इस स्थल पर अधिकतम 1,000 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, जो निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन के अधीन होती है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करने या उसे न फैलाने और सही जानकारी के लिए मात्र आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
6: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पंजाब में बार बार पेपर लीक के कारण 30 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। श्री मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया पंजाब के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है।
2: केजरीवाल की ढकोसलेबाजी, उसके डबल स्टैंडर्ड्स, उसकी हिपोक्रेसी, अराजक बिहेवियर, ये सब पंजाब के छात्रों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। पंजाब के छात्रों को न्याय तब मिलेगा जब पंजाब में जिस फार्मास्यूटिकल की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है वो दोबारा होनी चाहिए।
6: नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है।
9: पंजाब में भी जब पेपर कॉम्प्रोमाइज हुआ, छात्रों का भविष्य दांव पर लगा पंजाब में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुई है? ये जो उन्होंने दोहरे मापदंड रखे हुए हैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये नहीं चलेंगे।
6: भाजपा का आरोप है कि पंजाब में कथित पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद पूरी दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति के लिए विशिष्ट प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार आधार कार्ड ने प्रत्येक नागरिक की पहचान को एक विश्वसनीय स्वरूप प्रदान किया है, उसी प्रकार अब दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति की भी प्रमाणिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार कल से छात्राओं के लिए विद्या वाहिनी साइकिल वितरण अभियान शुरू करेगी। इस दौरान कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की जाएंगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
10: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रथम चरण में 3000 छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें प्रदान करेंगी। इसके बाद अगले एक महीने के भीतर दिल्ली की कुल 1,40,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल वितरित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाना, उनकी नियमित

0: रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रथम चरण में 3,000 छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें प्रदान करेंगी। इसके बाद अगले एक महीने के भीतर दिल्ली की कुल 1,40,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल वितरित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाना, उनकी नियमित
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के उन 9 महिला अधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने समुद्र प्रदक्षिणा नाम के पहले ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री सिंह ने 4 महासागरों में लगभग 25,500 नॉटिकल मील की दूरी तय करने के लिए टीम को बधाई दी। उन्होंने इस अभियान को नारी शक्ति और तीनों सेनाओं के आपसी सहयोग का शानदार उदाहरण बताया।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी कि हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि लगभग 17,000 लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वायुसेना और भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वदेशीकरण विषय पर आधारित संकल्प नामक एक कार्यशाला के बाद श्री सेठ ने कहा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
3: 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए, तो लक्ष्य है हमारा एकेडमिया, हमारा साइंटिस्ट, और कहते हैं ना कि जितना ज्यादा पसीना हम अब कारखानों में बहाएंगे उतनी सीमा पर बैठे जवान है उसको मदद होगी। तो अब तो इनोवेशन का जमाना है, वो जुड़ रहा है और भारत की जो डिफेंस सेक्टर बहुत ताकतवर होंगे।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में हथकरघा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अत्याधुनिक अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत करना है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम में 5 प्रमुख पहल का भी शुभारंभ होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने आज राजा गार्डन स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 1,000 से अधिक लंबित मामले पाए गए। उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर सभी लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा मोटर वाहनों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म हटाने की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 34 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 400 क्वार्टर शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद किया है। मामले की जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद 1 अगस्त को अपना मासिक सुविधा शिविर आयोजित करेगी। ये शिविर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जयसिंह रोड स्थित परिषद के कन्वेंशन सेंटर में लगेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने स्पष्ट किया कि अनुबंध पर कार्यरत गैर शिक्षण कर्मचारियों को हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। महापौर प्रवेश वाही ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बाधित की। श्रावण का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली सरकार के कई अन्य मंत्रियों ने भी श्रावण मास के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कल से 30 अगस्त तक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला सेंट्रल दिल्ली किंग्स और पुरानी दिल्ली 6 के बीच होगा। इस T20 टूर्नामेंट का आयोजन दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीम खेलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद या सील करने की अफवाहों को खारिज किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विद्यावाहिनी साइकिल वितरण अभियान का शुभारंभ करेंगी। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
5: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है आरजे आनंद, एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं, और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
6: तुमने बुलाया ही नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
5: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम के हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
6: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
5: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करिए भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
6: तभी बार बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
5: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल कैसे हाल चाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के?
6: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल,
5: बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
6: युवा
5: शायर, हमने बुलाया है, सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
7: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
5: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो, तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
7: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
5: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है, क्यों अखिल भाई?
6: बिल्कुल सही कह रहे हो।
5: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
7: थोड़ा नर्वस,
5: नर्वसनेस हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
7: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
5: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
7: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
5: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
7: एक दो बार ट्राई करी थी।
5: अच्छा,
7: मैंने
5: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
7: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
5: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
7: मैं मुराद में एक्चुअली प्रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमकपुल के पास है।
5: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
7: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
5: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
7: आगे मेरा एमबीए करने का प्लान है।
5: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
7: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
6: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
5: यार, मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए हैं भाई।
6: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
5: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
7: नहीं,
5: फिर
7: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
5: अच्छा
7: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
5: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
7: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
5: अच्छा
7: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
5: ऑलराइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
6: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार सच दिल तोड़ोगे?
5: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
7: ओम अग्रवाल।
5: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहाँ अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
7: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
5: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
7: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
2: ऑलराइट, मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद। हाँ। है ना,
7: कोई शब्द ही नहीं है।
2: नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं इनका क्या नाम है?
7: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
2: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ है?
7: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर। तो
2: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
7: दोस्ती में
2: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त और टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती
6: मेरे
2: है।
6: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई। मेरे हाँ एक बहुत ही हाँ अच्छे फास्ट फ्रेंड है।
2: अच्छा।
6: राहुल जैन करके।
2: अरे वाह।
6: तो मैं 9th क्लास में था उस समय और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी।
2: ऑलराइट।
6: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई जाती है, हाँ भी तू चल, तुझे तो कल देख लूंगा। मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों। तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं। ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स।
2: मतलब दोस्ती वाला।
6: तो वो एक कार्ड लेके आया, तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा,
2: आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कि कुछ और ही मामला होगा। तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों, आपको क्या लगता है?
7: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
2: एब्सोल्युटली,
7: इंसान सब अच्छे होते हैं।
2: करेक्ट।
7: तो ढूंढना होता है बस।
2: अच्छा, कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है।
7: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, बस सीखा हूँ।
2: अरे वाह,
7: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की।
2: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप।
7: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी।
2: ओके।
7: तो मैंने उसे
2: एक होता है ना, जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म। वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो।
7: हाँ कह सकते हैं।
2: अच्छा ये जो ओम जी है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होगी यार आज की शाम। सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए। वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अखिल अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अखिल जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं।
1: हाँ, मजा तो आ रहा है। हाँ, और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं।
1: बिल्कुल सही, मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है, इसे टकराना तुम
0: ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की।
1: दोनों बनिए सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं? एक मेरी भी दोस्त है, वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं में हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसी ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे
0: ये हमेशा अपनी शायरी में ना मेरी कुछ चप्पले पढ़वाते हैं। गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह,
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए।
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, देखो किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ।
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो।
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है। तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो।
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश। तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो। तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छू, क्या बात है, शानदार। शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
0: अरे वाह,
2: थोड़ा लिखना आ गया।
0: आपके फेवरेट शायर कोई, जिनको आप याद, यू नो आज भी?
2: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था।
0: हाँ।
2: एक मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था।
0: हाँ।
2: उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट नहीं था, रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
0: वाह।
2: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
0: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बात है
2: जी,
0: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी कि फिर आपको मजा आ गया पढ़ने। हाँ। में बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना होना तब तक आप अपनी 100% नहीं दे पाओगे
2: जी।
0: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अब आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
2: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी।
0: अच्छा,
2: वो एंड में ही लिखा जाएगा, मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को। तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के। कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपकी बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचें, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया, तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
2: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
2: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा, अभी लिखा है शुरू शुरू में। मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में।
0: Okay.
2: तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा। जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा। काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोचकर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
1: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
0: यार। मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा। पर अच्छा यार, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
2: देखो वही कहता ना, जब कोई चला जाता है उसकी इमेज ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार।
0: लेकिन यार तो सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना। फिर तो
2: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: ओके, मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
1: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ।
0: नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। खैर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उमदा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक

0: जाती है तो मैं ब्लॉक करेगी, तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
1: अट्रैक्शन कह सकते हो पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज है।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है, मतलब एक जैसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, या अभी भी है जिंदा?
1: जिंदा है तभी तो हम जितना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक, और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
1: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से, आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा,
0: ठीक है,
1: तो उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को देगी अपने, उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह,
1: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो,
0: वाह
1: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो, मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो, मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
2: शुक्रिया
0: ओम जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में गाइस, आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं, आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आपने अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना, इसके बाद स्वागत अभिनंदन आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेर व शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं अखिल जी, आपको मजा आ रहा है यानी ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है और मैं तो यही कहूंगा मजे मजे में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात वाँ है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। अखिल जी की शेर व शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए जी। ओम जी,
2: गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह,
2: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले
0: तो
2: उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे
1: थी। कैसी तस्वीर, कैसी थी ओम जी, कुछ तो बताएं तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ।
0: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता होता वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है।
0: आजकल मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना, होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी बातें पता लगती है। इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पे ही भरोसा करें।
1: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते हैं ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूं।
0: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आरजे से .com पे बिलीव करता हूँ, मैं शादी.com पे बिलीव नहीं करता अखिल जी, सच बात तो यह है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो ये .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊं तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहाँ जिसका काम बने वो बेस्ट है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
1: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
0: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
2: आगे का शेर भी है वैसे।
0: हाँ जी प्लीज बताएं।
2: पढ़ना चाहूंगा कि
0: श्योर,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: वाह,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: क्या बात है,
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं।
0: अरे
1: क्या बात है,
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं। जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं। ओम क्या फिर नहीं देखा, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं।
1: ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
0: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है।
1: और
0: मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हो ही जाएंगे हम तो यार।
1: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं,
0: डेफिनेटली,
1: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि भाई पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी हैं, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में, और जैसे ही वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
2: नहीं ऐसा जेन्युइनली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है, तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता
0: हूँ। दैट्स वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज करनी है ना, वो वाली चीज है। बट वो ये कि जिस चीज से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से, तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
1: मैं तो निकाल ही लेता हूं,
0: बस वही वाली बात है, जिस चीज से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर व शायरी होती है, जब आपको पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा, कि तुम्हारे बाल सुंदर है, तुम्हारे गाल सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ यार, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ, आप नहीं, तो कुछ अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो,
1: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंटरव्यू में टिप्स ले रहे हैं, तो यार टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना है।
0: अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई।
2: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
2: मिल गया है वैसे।
0: अच्छा
1: ढूंढ लिया,
2: मिल भी गया,
0: क्या बात है, मेरा लक अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया,
2: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
0: हाँ जी,
2: तो बहुत सारे ख्याल आते हैं यार, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
0: वाह।
2: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहाऊंगा वो मोहब्बत पढ़ती रही।
0: क्या बात है।
2: मैं अपना नाम लिख रहाऊंगा वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं लकीरें लिखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है, वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पर, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
0: अरे वाह।
2: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही। आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, वो सच में हुआ था।
0: अच्छा।
2: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
0: क्या बात है, क्या बात।
2: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही। और एक हम थॉट सोचते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया, तो उससे कहते भी हैं, तो उस बात पर गुस्सा हो जाती है, तो उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो ओम, फुरकत की बात मत किया करो ओम, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही। चुप करा देती है।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ये तो है, ये
0: एक
1: तो
0: पल में प्यार हो रहा है, वहीं दूसरे पल में शिकायतें भी हो रही है।
1: ये अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा।
0: ये बात तो आपने
1: सही, ओम जी जो है बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं, इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया, मुझे उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत।
1: अरे
0: फिल्म देखी थी, बहुत ही कमाल की।
1: आप मुझे बचला, आप ये वर्ड कहाँ से पकड़ लेते हो।
0: तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली बार प्यार हुआ, तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उससे रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं। हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में, ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं, लिख के इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं, और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं, लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं, ये मजे की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है,
0: फिल्टर है ये,
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज।
0: अच्छा ओके, बल कोई बात नहीं, अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है।
2: ये, आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना, आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते राह चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे।
0: नहीं भाई नगमा नहीं ढूंढना, मुझे तरन्नुम ढूंढना है।
1: अरे
0: ढूंढनी है, सॉरी गड़बड़ हो गया है, सॉरी। बिल्कुल कोई बात नहीं, इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना। मेरा मेन मोटिव यही होता है, मेरा मेन टिप होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराए और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें। बैक टू पॉइंट, अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं। जी ओम जी,
1: आपको कभी जैसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल, मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है, हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है, और इसके लिए मैं जितना सोचूं जितना लिखूं वो कम है।
1: उससे तो होनी भी चाहिए। जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है, उसकी खुशी होती है।
0: करेक्ट।
1: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपनी होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था, तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो, उस घड़ी को संभाल के रखूंगा। तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक, रुक जाता है वक्त, रुक जाता है वक्त,
2: ले लेंगे लाइन,
1: रुक जाता है वक्त, जब भी तुम्हें देखा है मैंने, आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने।
0: वाह।
1: यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मोहब्बत का वादा, यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मांग भर के तो वक्त भी रोक दिया है मैंने।
2: क्या बात है।
1: कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूँ सामने, कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने।
0: वाह,
1: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने।
0: बहुत ही बढ़िया। तो कितनी बार कहा है आपने खुद से?
1: अभी तो निकाह
0: की बात तो पूछ ली जरा मैं। क्यों अखिल भाई,
2: नहीं,
0: ये शायरी है, ये सच्चे दिल की बात है या हमसे छुपाया जा रहा है?
1: अरे अभी तो नहीं है कोई।
0: अच्छा अच्छा, अभी मतलब सिर्फ जितना भी हमारी शेरो शायरी तक ही सीमित है।
1: हाँ शेरो शायरी तक ही सीमित है।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
8: I'll be taking note of it.
9: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
10: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
9: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
11: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
12: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
9: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
13: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
9: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
14: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
9: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
15: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
9: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
16: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
9: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
17: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.
18: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
19: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: れソール。
1: ババ抜かれショール。
0: あれ、ババショールね、ソール、ソール、ソール。

नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। सवाल जो आज की शाम से ही शुरू कर देते हैं साहब, क्या कभी आपका मन आपको ऐसी जगह ले गया जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे? कभी गुस्सा आया और हमने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका बाद में अफसोस हुआ? कभी मन ने कहा बस आज काम नहीं करना यार, आज हो गया बहुत, ज्यादा तो अब एक पेन भी नहीं लाना है मेरे को, और हम उसे घंटों उसी के बारे में सोचते रहे। तो आखिर ये मन है क्या? मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, और अगर हमने इसे समझा नहीं ना तो यही मन हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे मन पर काबू कैसे करें और कैसे किया जाता है। कुछ बातें आपको बताऊंगी, कुछ हमारी बातें होंगी, करेंगे दिल से बात और करेंगे शेयर। तो कोई ना कोई ऐसी बात जो आपके मन से भी जुड़ी हुई हो, और जो कहते हैं ना कि मैंने इस बात को ऐसे काबू में किया, तो ज़रूर मुझे कॉल करके बताएं 9837896896 पे, या फिर मैसेज भी कर सकते हैं आपके अपने इसी फेवरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM 89.6 पे। तब तक सुनते हैं गाना, उसके बाद आते हैं इस गाने के बाद। रखिए अपने सवाल तैयार और कॉल करें 9837896896 पर।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने से पहले मन को ना समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो मन है अक्सर तीन चीजों में उलझा रहता है, बीता हुआ कल, आज की चिंता और आने वाले कल का डर, और इसी बीच हमारा आज कहीं पीछे छूट जाता है। एक शायरी प्यारी सी इसी के ऊपर, मन को समझना आसान नहीं होता, हर ख्वाहिश का पूरा होना आसान नहीं होता, थोड़ा ठहरिए, खुद से भी बात कीजिए, हर जवाब किसी और से मिलना ज़रूरी नहीं होता। तो आप आज अपने आप से मुझे बताइए, पूछ के, कि जब आपका मन परेशान होता है तो आप उसे शांत कैसे करते हैं। कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर मैसेज करके बताएं 9837896896 पे। थोड़ा सा तो मन तब भी अशांत हो जाता है जब पीछे वाला हॉर्न लगातार बजाता रहता है। थोड़ा सा तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मन के ऊपर। भाई साहब, हॉर्न नहीं बजाना है, बिना हॉर्न की भी गाड़ी चल सकती है, हॉर्न फ्री हो के भी। स्टेशन के पास होता है जाम, कभी कभी लग जाता है किसी पुल पे, मतलब कहता ना हल्की सी साइड अगर दी नहीं तो भाई साहब सिसक खिसक के गाड़ी चल रही होती है। तो थोड़ा सा गाड़ी पे अपना ध्यान रखें, साइड वाले को आराम से जगा दें कि भैया लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले लें, यहाँ पे ना जाम मतलब हुआ, तो गुस्सा जो है अपना आप ही कम हो जाता है। तो ज़रूर हमें बताएं अगर कहीं ट्रैफिक है, कहीं भी पानी ऐसा भर गया है जहाँ पे थोड़ा सा संभल के निकलना है, तो वो भी बताएं। MDA हो, लाजपत नगर हो या हो दिल्ली रोड, सारी जगह की खबर आती रहनी चाहिए। 9837896896 आपका ही अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। चलिए आते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, तब तक सुनते हैं बढ़िया से गाना। निशांत जी की कॉल आई थी, प्रेम नगर में हैं, अभी स्टूडेंट हैं, फोर्थ क्लास में हैं, और कहते हैं कि भैया कोई भी एक गाना पसंद का लगा दिएगा। तो मैंने कहा चलिए निशांत जी, आपके लिए गाना हम लगा देते हैं पसंद का।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर। अगर सच में मन पर काबू पाना है ना, तो सबसे पहला तरीका है स्टॉप हो जाओ बिल्कुल और सोचो। गुस्सा आया तुरंत रिप्लाई मत करो, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत रिएक्शन मत दो। मन कह रहा है कि सब छोड़ दो तो थोड़ा रुकिए, अपने आप से पूछिए क्या मैं जो कर रहा हूँ उसको मुझे कहीं कल जाके अफसोस तो नहीं होगा। बस ये एक सवाल जो है ना आपकी कई गलतियों को रोक सकता है। हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने हमें भी मैसेज किया और कहा कि अखिल जी जब मैं गुस्से में होती हूँ तो किसी से बात नहीं करती हूँ। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब गुस्से में ना अगर कोई है इंसान वो बात ही नहीं करता। पहला ही जो ऑब्जेक्टिव तभी पता चल जाता है सामने वाला बात नहीं कर रहा, इसका मतलब भाई वो कहीं ना कहीं गुस्से में है। थोड़ा टाइम लेती हूँ और फिर बात करती हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी साइलेंस कमज़ोरी नहीं सेल्फ कंट्रोल भी होता है। हमारे पास अदनान जी ने एक शायरी लिख के भेजी है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात को दिल से लगाना ज़रूरी नहीं, कुछ बातें वक्त पे छोड़ दीजिए, हर जंग को जीतना ज़रूरी नहीं। क्या बात है अदनान जी, संभल से हैं और बहुत ही बढ़िया आपने इतनी

0: कि आप क्या करते हो अभी, और अपने हमारे मतलब श्रोताओं को पता ही है कि भैया धैर्य जो है अभी पढ़ाई कर रहा है। स्कूल का नाम एक बार फिर से बता दो, और आज क्या क्या मस्ती करी थोड़ा सा ये भी बता देना।
1: आज मेरा स्कूल का नाम है सेंट बेला एकेडमी, मैं पढ़ता
0: हूँ
1: और मैं
0: सिक्स्थ
1: में हूँ।
0: ओके,
1: आज हमने मस्ती करी अपनी ज्योग्राफी की टिकट
0: में। क्या किया था?
1: ज्योग्राफी की टिकट में हमने हिस्ट्री पढ़ी।
0: ज्योग्राफी के पीरियड में हिस्ट्री पढ़ ली?
1: बोला हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सर दोनों सेम ही
0: है। अच्छा,
1: चलने वाले जब हिस्ट्री बढ़ाते हैं तो चलने वाले चाइनीज सिविलाइजेशन के ऊपर इतनी मजेदार वाले बातें बताई और इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई, मतलब
0: चलो साहब बहुत बढ़िया। मगर एक बात का ध्यान रखना, ज्योग्राफी के पेपर में हिस्ट्री मत लिखाना और ना हिस्ट्री के पेपर में ज्योग्राफी लिखाना। हाँ, वो अलग ही रहना चाहिए मामला। ऐसा हो जाता है जब एक ही टीचर जो है, अगर मास्टर जी दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इसका फायदा भी है। कभी कभी वो एक सब्जेक्ट को ही दोनों पीरियड में पढ़ा देते हैं तो ये है कि सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो आप जब अपने मन पे कंट्रोल करते हैं, एक बार आपसे हमारी बात हुई थी धैर्य पहले, कि आप अपने मन पे जो कंट्रोल करते हैं गाना सुन के कर लेते हैं, तो आज वो गाना बताइए कौन सा है, उसी गाने को सुन के हम सब भी अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे।
1: मेरा सबसे पहले गाना था बैरन, जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करता है।
0: तो चलिए आज उसी को सुनेंगे और उससे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। अब एक पहेली है तुम्हारे लिए भी और सभी श्रोताओं के लिए भी, वो क्या है जिसे जितना दबाओ वो उतना ही बाहर आता है। सोचना सोचना, आराम से मेरे को मैसेज करके बता देना 9837896896 पे, ठीक है धैर्य?
1: हाँ।
0: तो ये था धैर्य साहब जो बता रहे हैं कि वो आज खूब मस्ती करी और आज उन्होंने एक ही जो हमारे उनके फेवरेट टीचर हैं जो उनको पढ़ाते हैं, उन्होंने उस हिस्ट्री के पीरियड में ज्योग्राफी पढ़ ली। तो सही है साहब, बहुत बढ़िया करा। बस पढ़ाई पे ही इतना कंसंट्रेट हो जाए कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रॉपर तरीका पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। तो आज हम सुनेंगे धैर्य के पसंद का सॉन्ग। हमारे पास नरेंद्र जी की जो कॉल आई थी वो हो गई थी डिस्कनेक्ट। कोई बात नहीं नरेंद्र जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम आपके मन की बात को पढ़ चुके हैं और ज़रूर आपकी से बात करेंगे जब भी आपकी कॉल लगेगी दोबारा से। तब तक के लिए आते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 9837896 पे आप कॉल करते रहिए और मैसेज करते रहिए, बताते रहिए अपने मन की भी बात।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, अब आपके शहर में फ्यूजन एंड फैशन लेके आया है 9 अगस्त को तीज एंड रक्षाबंधन एग्जीबिशन कम सेल। तो आप लोग जाएं और वहां पे एंजॉय करें। जगह है मिगलानी सेलिब्रेशन कांट रोड पे और टाइमिंग्स हैं सुबह के 11:30 बजे से। तो 9 अगस्त का दिन है, संडे का, और एंट्री भी बिल्कुल फ्री है। तो तीज और रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा। और कहते हैं ना, थोड़ी सी तो मस्ती होगी होगी, क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम ट्रूप वालों की होगी। तो करिएगा एंजॉय और फ्यूजन एंड फैशन को खूब मस्ती से। कहते हैं ना, इतने तरह के स्टॉल्स होंगे वहाँ पे कि कुछ ना कुछ तो लेके ही जाओगे साहब। तो अभी हम बात कर रहे थे थोड़े से मन की, थोड़े से, कहते हैं ना, जहाँ मन की आपने बात पकड़ ली, आपने अपने मन को पकड़ लिया तो सब पे काबू कर लिया भाई। हर थॉट फैक्ट नहीं होता, कई बार हमारा दिमाग हमें ऐसी कहानी सुनाता है जिसका रियलिटी से कोई लेने देना नहीं होता। एक शायरी हमारे पास आई है, अंकित जी रामपुर से लिखते हैं, ख्यालों की भीड़ में खुद को खो मत देना, हर बात को सोच कर रो मत देना, जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है उसे वक्त पे छोड़ दीजिए। क्या बात है अंकित जी, और इतनी पास रह के, रामपुर में रह के, इतनी बढ़िया, कहते हैं ना, बहुत मुद्दे वाली बात करिए, टॉपिक के टॉपिक बात करिए कि भाई साहब अपने को ना इस ख्यालों की भीड़ में कहीं खो मत देना। तो चलिए, हम भी कहीं नहीं खोएंगे अपने। हमारे एक लिसनर हमारे साथ कॉल पे हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं आज वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं सरदार सिंह जी?
1: जी सर।
0: सर, आप कहाँ रहते हैं मुरादाबाद में?
1: मुरादाबाद में हम रहते हैं सर, काशीराम में।
0: काशीराम में रहते हैं। तो आज जो आपको पता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उस पे कोई ऐसी बात बताइए जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ।
1: जी, मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी जो टॉपिक चल रहा था ना कि धैर्य कैसे रखें,
0: हाँ,
1: इस तरह कुछ चल रहा था,
0: हाँ, तो
1: जैसे मान लीजिए धैर्य मतलब ये होता है जैसे कि हमें कोई चीज चाहिए होती है और हमें उसका इंतजार नहीं हो रहा कि हमें ये कब मिलेगी, तो हम ये सोचते हैं कि सर कि चलो कोई बात नहीं, आज ही कल ले लेंगे, कोई बात तो धैर्य रख लेते हैं, कल ही परसों ले लेंगे, ये भी धैर्य होता है एक तरीके का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और दूसरा ये जैसे मान लीजिए किसी को गलती हो गई, गाड़ी किसी को ठुक जाती है, लग जाती है, तो हमें गुस्सा आता है एकदम, सोचते हैं तो लेकिन सोचते चले यार गलती हमसे ही हो सकती है, कभी भी ठीक हो जाता है ना, तो हमें थोड़ा ये सोचे थोड़ा किसी को थोड़ा छोड़ देना चाहिए।
0: एकदम मतलब किसी से एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। गाड़ी ठुक गई है तो ये नहीं कि सब सामने वाले पे चढ़ जाएं एकदम कि भाई साहब कैसे ठुक गई गाड़ी, प्यार से आराम से, पता चला इसके चक्कर में लग जाता है जाम, तो आराम से रुक के करिए बात, मगर हो जाता है।
1: परसों की बात है, परसों में जा रहा था तो ये बात बारिश पड़ी है ना कल सुबह,
0: हाँ जी,
1: इंटीरियर में इतना पानी भर गया था, मेरे स्कूटी मतलब आधा पहिया डूब गया समझो।
0: हाँ सर, पूरा ही डूब गया होगा उधर, तो बहुत पानी था,
1: छोटा होता पूरा डूब गया, बहुत दिक्कत हुई, गाड़ियों बंद नहीं हुई, बंद हो जाती, बहुत दिक्कत हो जाती है।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप पूरा भीग गए थे परसों? नहीं भीगे,
1: नहीं बारिश नहीं हो रही थी उस समय।
0: अच्छा,
1: बारिश करके नहीं भर चुकी, पानी भर होता इंटीरियर भर जाता है, हिंदू कॉलेज के सामने,
0: हाँ,
1: वहाँ पे बहुत पानी भर जाता
0: है। चलिए, उसका भी कुछ ना कुछ निकास निकलेगा, थोड़ा सा संभल के निकलना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पानी मिले आराम से, बहुत गाड़ी स्पीड में हल्की कर ले, क्योंकि पानी में जब भर जाता है तो ये नहीं पता चलता चाहे कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ, चाहे आपको कितना भी ध्यान क्यों ना हो।
1: बिल्कुल सही बात है, रोज निकलते कभी भूल जाते
0: हैं। हाँ, रोज निकलते हैं, तब भी मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है, मैं रोज एक रोड से निकलता हूँ मगर पता ही नहीं उस दिन कहाँ से वो गड्ढा आ गया और मैं भी झपाक से झटका खा गया। ये MDA की बात है साहब, अब MDA में बता नहीं सकता कहाँ कहाँ पे है, मगर है एक रोड पे। चलिए साहब, तो आपको कौन सा गाना सुनाया जाए आज? आपने अपने इतनी अच्छी मन की बात रखी है, आपने कंट्रोल करना ही बताया कि किस तरीके से धैर्य रखना चाहिए।
1: कुछ वो तो खैर बात हुई, मैं ये थोड़ी बात सुनना चाह रहा था कि जैसे अपने मुरादाबाद में ये अपना अभी शुरू हुआ है, कितना टाइम हो गया
0: सर इसे? 3 साल से हुए।
1: 3 साल हो गए तो लगा लीजिए मैं कम से कम, मेरा जो वो है क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ है ना वो 25/6/90 का है, तो उसके बाद में 10-12 साल की उम्र से रेडियो सुन रहा हूँ अभी तक।
0: सर ये तो बहुत अच्छी बात है और एक एक बहुत अच्छी आदत भी है, मतलब रेडियो से सुन, मतलब रेडियो जो एक ऐसी चीज़ है ना कि हर किसी ने मतलब बचपन में तो सुना ही सुना है। आज के हम लोग जनरेशन की बात करें तो वो भी अगर एफएम गाड़ी में सुनते हैं तो वो ज़रूर पूछते हैं कि ये पापा रेडियो वाला ऑप्शन क्यों है और कैसा है, तो बताने में अच्छा लगता है कि हाँ हमने एफएम सुना है, हमने वो रेडियो सुना है और आज भी हम उससे जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सिंह जी, आपका आज आपकी इस कॉल से बहुत सारी चीज़ें आज पता चली और बहुत सारी बातें आपसे हुई।
1: अच्छा सर, मैं जैसे
0: बुझ गए,
1: हम रोज कॉल कर सकते हैं?
0: हाँ आप रोज कॉल कर सकते हैं, आप जब जब आपको मौका मिले आप कॉल कर सकते हैं शो में उस समय।
1: जी जी
0: ठीक है सर।
1: ओके सर, गाना प्ले कर दीजिए।
0: गाना सर जरूर प्ले करेंगे सर, गाना प्ले ही तो करना है हमें सबसे पहले। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ सरदार सिंह जी, जो कह रहे थे सर मेरा गाना ज़रूर प्ले कर देना। हाँ जी सर, गाना ही प्ले करेंगे और आप भी ऐसी ही मुस्कुराते रहें, ऐसी ही अपने आप को प्ले करते रहें। बहुत अच्छे से आपने आज बातें बोली कि कैसे मन पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और कैसे अगर कहीं गाड़ी ठुक जाती है यार तो एकदम एकदम कहते हैं ना तू तड़ाक और बहस ना करने के बजाय पहले आराम से समझें कि कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई है। जो गलती हुई है वो हमेशा मानता ही है, ऐसा नहीं है जब नहीं मानता है तो उसके लिए प्रशासन और ये सब है, मगर आराम से वहाँ भी अपना गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए। गुस्से में हम अक्सर को अक्सर वो बोल देते हैं जो शांत होने के बाद वापस लेना चाहते हैं लेकिन शब्द वापस नहीं आते, इसलिए अगली बार गुस्सा आए तो क्या करना है, दस्तक तो गिनना ही है। पानी पी लीजिए, थोड़ी देर जगह बदल लीजिए और फिर बातचीत कीजिए। हमारे पास मैसेज आए, पहेली के जवाब आए और जो जो जिस जिसने उसे टूथपेस्ट बोला है ना वो बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है भाई साहब, दूसरा जवाब लिख के भेजिए कि कौन सी वो उसकी उसका जवाब हो सकता है, तो वो टूथपेस्ट तो नहीं है जिन जिनके टूथपेस्ट ने जवाब भेजा है। तो चलिए हम सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना, उसके बाद आते हैं म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करते हैं खूब सारी बात।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। शोर बहुत है दुनिया में, थोड़ा खुद के अंदर भी उतरना है। सबको समझते समझते उम्र गुजर गई, अब थोड़ा खुद को भी समझना है। तो बिल्कुल सही लिखा है ये कि अब तो भाई साहब थोड़ा खुद को भी समझना है। सबको समझते समझते उम्र गुजर गई, पूरे परिवार को समझा समझा के और समझ समझ के जब उम्र गुजर जाती है तो थोड़ा वक्त तो अपने लिए भी निकलना चाहिए। मन को कंट्रोल करना या समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मन को हमेशा दबाना नहीं है, मन को समझाना है। अगर दुख है तो समझिए कि दुख है, अगर गुस्सा है तो समझिए कि गुस्सा क्यों आया है, अगर डर है तो पूछिए मुझे डर किस बात का है। इमोशन को समझेंगे तो रेस्पॉन्स भी बेहतर होगा। और याद रखिए, रिएक्शन और रेस्पॉन्स में फ़र्क होता है। रिएक्शन तुरंत होता है, रेस्पॉन्स सोच समझ कर दिया जाता है, यही सेल्फ कंट्रोल है। हमारे पास हमारे एक लिसनर का मैसेज आया है, अखिल जी पहले मैं तुरंत रिप्लाई कर देता था, अब किसी सीरियस मैसेज का जवाब देने से पहले सोचता हूँ। रिश्तों में बहुत फ़र्क आया है। सागर लाजपत नगर। तो सागर जी क्या बात कहिए, ये तो आज की बात है। मन पर काबू का मतलब मन को मानना नहीं, मन को सही दिशा देना है। हमारे पास अमित ऋतु नारायण की नमन का भी एक मैसेज आया है, हमारी दोस्ती हमेशा याद आएगी, कभी चेहरे पर हंसी कभी आंसू लाएगी, भुलाना चाहोगे तो कैसे भूलोगे, हमारी कोई भी बात होगी जो हमेशा याद आएगी। सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया आपने शायरी भेजी है। तो आज दोस्तों याद है आपको हमारी पहेली, वो क्या है जिसे जितना दबाओ वो उतना ही बाहर आता है। तो हमारे पास मैसेजेस बहुत आए हैं, उसमें से एक मैसेज आया है हमारे पास सुमित महेश्वरी जी का, MDA रामगंगा विहार से, कि स्पंज नहीं सर, स्पंज तो इसका जवाब नहीं है। ललिता यादव जी ने भी हमारे पास मैसेज भेजा है नवीन नगर से, ललिता कश्यप जी ने, कि नींबू भी इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है गुस्सा। हाँ, जितना गुस्सा दबाते जाएंगे ना उतना ही किसी और समय ज़्यादा ज़ोर से बाहर निकल के आ सकता है। तो इसलिए इमोशंस को समझिए, हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, और हाँ गुस्से में मैसेज लिख कर तुरंत सेंड मत कर दीजिएगा। हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हैं, चलिए बहुत देर से वो अपना गुस्सा कंट्रोल करे बैठे, तो बात करते हैं उनसे कि क्या कहना चाहते हैं आज। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? जेठालाल जी कैसे हैं आप? हम ही को सुन रहे हैं आप स्टेशन पे, रेडियो पे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपकी आवाज बड़ी हल्की हो गई है, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: तेज आ रही है?
0: हाँ सर तेज आ रही है।
1: अरे सर आप तो जो जो आपको माना है गुरु वो अमीर बनना हो जाएगा गुरु।
0: तो आज कोई शायरी सुनाइए पहले जेठालाल जी, उसके बाद आगे की गुफ्तगू करेंगे आपके साथ।
1: अच्छा जी, शायरी कुछ ऐसे है सर, ये आरजू नहीं कि किसी को बुलाएं हम, ये आरजू नहीं कि किसी को बुलाएं हम, ना तमन्ना है किसी को रुलाएं हम, पर दुआ है उस रब से बस एक ही, जिसको जितना याद करते हैं उसको उतना याद आए हम।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे जेठालाल जी, सबके नाम भी बोल दीजिए।
1: अरे सर ये बात आप जरा कुछ ऐसी बातें करके थोड़ा हमारा दिल दुखा देते हैं।
0: क्यों दिल क्यों दुखा दिया, किसी को तो डेडिकेट करिए शायरी, कम से कम नाम ही बोल दीजिए।
1: अरे सर अब आप जब आपने हमारा नाम समझ लिया है तो आप खुद ही समझ, आप खुद ही आइडिया लगा लेना, फिर आप हमें खुद बताना।
0: ठीक है सर, हम खुद ही लगाएंगे। और
1: बहुत जल्दी आइडिया
0: मैं लगा लूंगा सर, बिल्कुल लगाऊंगा। अभी आज हमारी बातें चल रही थी मन पे काबू पाने की, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कभी आपने अपने मन पे काबू पाया हो तो कैसे पाया है?
1: मन पे काबू क्या है भाई, हम मान लो कोई चीज चाहते हैं वो नहीं मिली हमें, तो हम उसके लिए जबरदस्ती नहीं करें,
0: बिल्कुल सही बात।
1: और सुकून रखे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी जिंदगी में जो है ना वो शांति है, सुकून है। अगर जिसकी जिसकी जिंदगी में शांति नहीं है उसकी लाइफ में मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात कही आप।
1: हम मान लो हम करोड़ों रुपए कमा लें, लाखों कमा लें, कितने कमा लें और मन में सुकून नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं। अभी अखिल सर से बात हो रही है, अरे सर बस एक मिनट रुको जरा मैं, अरे भाई पहले बात, बाद में कुछ और होगा काम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने जेठालाल जी, बहुत ही बढ़िया बात कही आज आपने। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप जाते जाते, कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप सभी श्रोताओं को?
1: प्रेम रोग फिल्म का गाना है, ये प्यार था या कुछ और था, ना उन्हें पता ना मुझे पता, ये तो निगाहों का ही कसूर था।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना चुनाया आपने इस शो के, कहते हैं ना अंत में इतना अच्छा गाना प्ले होगा, बहुत ही बढ़िया।
1: हम तो जब भी हमारा नंबर होता है तो आगे हो जाता है, लग रहा है हम तो कितने जब हमारा नंबर आ गया, बोले क्या हुआ, बोले थे
0: नहीं नहीं साहब ऐसा नंबर नहीं आएगा जेठालाल जी, बस आप यहाँ का 9837896 पे मिलाते रहिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल है सर, ये तो हमारे दिल पे लिखा हुआ है।
0: सही है सही है सही है। चलिए साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जेठालाल जी, जिन्होंने अपने दिल की बात कही और कहा कि शांति बनाए रखें, जब भी मन में कोई उथल पुथल मचे तो शांति थोड़ी सी होनी चाहिए। और इसी शांति से बात याद आई कि एक बार एक मियाँ बीवी लड़ रहे थे और कह रहे थे कि भैया, मियाँ साहब अपनी बीवी से कि थोड़ी शांति बना के रख लिया करो, थोड़ी शांति से रह लिया करो। तो बीवी जी कहती, भैया शांति जो है मेरी दादी का नाम था, अब तो चली गई हैं ऊपर, तो अब वो तो हो नहीं सकता, वो तो वापस आ नहीं सकती, तो भैया जो भी हो उसी से बैलेंस करो। तो चलिए ना, शांति तो बनानी है। और दोस्तों आज की जो पूरी बातचीत है ना, उससे अगर एक बात आप अपने साथ लेकर जाना चाहें तो वो क्या होगी, वो यही होनी चाहिए कि आपके मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपने साथी बनाइए, उसको अपना दोस्त बनाइए। मन परेशान हो तो खुद से बात कीजिए, दो मिनट थोड़ा सा कहते हैं ना हल्का फुल्का इधर उधर हो के थोड़े से उसकी भी बात सुन लीजिए साहब, अपने मन की भी बात। गुस्सा आए तो रुकिए, ओवरथिंकिंग हो तो प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाइए, और सबसे ज़रूरी खुद के साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए। स्माइल हल्की सी ना चेहरे पे आती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे आप FM सुन रहे हो, चाहे अपनी बीवी की सुन रहे हो, मगर स्माइल चेहरे पे हल्की सी रहनी चाहिए। इसी के साथ हम करेंगे क्लोजिंग, बढ़िया सी शायरी आपको सुनाई जाए। मन को थोड़ा सुकून दिया करो, खुद से भी कभी जुनून से मिला करो, दुनिया को बदलना मुश्किल है दोस्त, पहले अपने अंदर का शोर शांत किया करो। तो मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और ये था शो आपका अपना दिल से दिल तक अखिल संग, जहाँ बातें होती हैं दिल की, आपके साथ और सिर्फ आपके लिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई शायरी और एक नई पहेली के साथ। और इस बार जो जवाब है ना, एक बार में दे देना साहब, भले ही गूगल कर लेना। तो ढेर सारी फरमाइशें भी चलेंगी आपकी, आपके पसंदीदा गाने और आपकी पसंदीदा बातें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मन को प्यार से संभाल के रखिए साहब। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, दिल साफ रखिए, मन हल्का रखिए और ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।

0: ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है। मेरी इबादत तुम्हारी इबादत,
0: तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत।

0: का मकबरा।
1: हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,
0: ना नफा ना नुकसान, ना गुनाह ना सवाब, बस बेशुमार मोहब्बत। मुझसे शादी कर लो, फिर हर साल अपनी शादी की सालगिरह यही ताज पे मनाएंगे।
1: हर साल ताज?
0: वाकई?
1: तो फिर कबूल।

डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।